सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है

वह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें। योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई
जानकारी एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि योग पाठशाला में सवेरे नित प्रतिदिन आकर के आप हमेशा की तरह योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास की ओर और साथ में हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है क्या। यहाँ नाड़ी शोधन का तात्पर्य नाड़ियों के शुद्धिकरण से है। शरीर की तंत्रिका प्रणाली में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने से तरह तरह के शारीरिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं। योग से संबंधित हमारे कई ग्रंथों में नाड़ियों में शुद्धिकरण हेतु प्राणायाम का वर्णन किया गया है, जैसे शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता आदि। वैसे तो प्राणायाम की पूरी क्रिया का सफलता पूर्वक करने से ही हमें उसका लाभ मिलता है, परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम का विशेष ख्याल रखा जाए तो बाकी के प्राणायामों से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। प्राणायाम का लाभ तो हमें शुरू से ही मिलने लगता है, तब भी इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इसकी ऊर्जाओं को संवेदनशीलता, एकाग्रता और सूक्ष्मता के साथ श्वास प्रश्वास को स्थिरता प्रदान करने का, अनुशासित करने के लिए प्रभावित करना होता है, ताकि श्वास, प्राण और मस्तिष्क को आध्यात्मिक बनाया जा सके। आत्मा के शुद्धिकरण की यह छोटी परंतु महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी प्राणायामों में नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे अधिक संवेदनशील, जटिल और सूक्ष्म है। जब नाड़ी को सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है तो यह आत्मभूपति की तरह ले जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले आप अपनी उंगलियों की दक्षता बढ़ाएं और दूसरा नासिका झिल्लियों में संवेदनशीलता का विकास करें। तो आइए दोस्तों, नाड़ी शोधन में सबसे पहला प्राणायाम जो है वह है अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अनुलोम विलोम अभ्यास एक। आइए हम विधि में चलते हैं और सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको यह प्राणायाम कैसे करना है। सुखासन के किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन और ध्यान योग की मुद्रा में, जिसमें कम से कम कुछ देर आराम से बैठ सके। मेरुदंड, गर्दन व सिर एक सीध में रखें। प्राणायाम के लिए तैयार रहें। बायां हाथ घुटने पर रखिए, दाएं हाथ की उंगलियों को दोनों भवों यानी मस्तक के बीचों बीच रखें। दोनों कंधे समांतर होने चाहिए। अब दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा के बीच यानी कि मस्तिष्क के बीच में रखें एवं नासिका के दाहिनी तरफ अंगूठे व बाएं तरफ के नासिका रंध्र के बाहरी भाग पर अनामिका उंगली को रखें। दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे के दबाव से डालकर बंद करें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास पूरक लीजिए और उसी नासिका छिद्र से रेचक करें यानी कि श्वास को छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास की तरफ रखें। पूरक एवं रेचक मिलाकर एक चक्र पूरा हुआ, यानी कि श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार 10 से 15 बार यह चक्र आपको करना है। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका छिद्र बंद करें और दाहिनी तरफ से उपरोक्त जो की क्रिया अभी हमने बताई
वह 10 से 12 बार आपको करनी है। आइए दोस्तों, अब हम सावधानियां बता देते हैं। श्वास क्रिया ध्वनि रहित होनी चाहिए, यानी कि आवाज जो है नहीं होनी चाहिए। जब हम श्वास लेते हैं तब भी, श्वास छोड़ते हैं तब भी आपको आवाज नहीं आनी चाहिए। श्वास लेते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। दोनों नासिका छिद्रों से बराबर लय बनाते हुए ही श्वास लें। सीना कम ज्यादा न फैलाएं, सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधे, हाथ और नासिका के मध्य 80 सेंटीमीटर का आपको बनाना है एक वर्गाकार। समय 10 से 15 मिनट तक रोजाना दोहराएं। थकान महसूस होने पर श्वासन कर लें, यानी कि विश्राम कर लें। इस प्राणायाम से उंगलियां और नासिका नलिका का अभ्यास हो जाता है, ताकि वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति कर सकें। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, यानी पहला अभ्यास अनुलोम विलोम। द्वितीय अभ्यास भी हम करेंगे, जो कि है कपालभाति। कपालभाति दोस्तों वैसे तो बहुत ही सरल और बहुत ही एक उपयुक्त प्राणायाम है। नाड़ी शोधन का यह दूसरा प्राणायाम कपालभाति। आइए दोस्तों हम विधि जान लेते हैं। कपालभाति करने से पहले सबसे पहले आप सुखासन या फिर किसी भी एक आसन में, यानी पद्मासन, सिद्धासन या फिर ध्यान योग की मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी। जब आप सिंहासन पर बैठ जाएंगे, आंखें बंद, तत्पश्चात आपको श्वास जो है वो ले करके अंदर की तरफ लेते हुए बाहर की तरफ नौसिका से श्वास को बार बार लगातार छोड़ना है। उसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे यदि हम किसी मोमबत्ती को बुझाते हैं तो हम सामान्यतः फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझाते हैं। आप ये सोचें कि यह मोमबत्ती को नाक से, यानी नौसिका की श्वास से आपको बुझानी है, तो स्वतः ही श्वास बाहर निकलेगी। बस वही प्रक्रिया कपालभाति की प्रक्रिया होती है, यानी एक मोमबत्ती को नौसिका की श्वास से बुझाना है। आप यह अभ्यास करके देखें, यह उदाहरण अपना के देखें। कपालभाति जो लोग नहीं कर पाते हैं स्वतः ही करने लगेंगे। इस प्रक्रिया को आराम से करना है। कंधे अपने स्थान पर ही रहेंगे, यानी कंधों को हमें गोल गोल घुमाना नहीं है, ना ही हिलाना डुलाना है। एक स्थिति में बैठ करके कंधे बिल्कुल सामान्य रहेंगे, आंखें बंद और हाथों की मुद्रा पर बैठ करके सुखासन में बैठ कर

यानी कि ये नहीं होगा कि एक नासिका से श्वास हम लेंगे और हम जब छोड़ेंगे तो पेट से पीछे की तरफ धक्का देने के बाद में एक ही नासिका से श्वास निकले। नहीं, श्वास की लय बराबर होनी चाहिए। सीना कम या ज्यादा न फैलाए, बिल्कुल सीधे एक ही सीट पर बैठना है। समय 5 से 10 बार आपको दिन प्रतिदिन यह करना है। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो एक बार शवासन में बैठ जाएं और आराम से श्वास को लेते हुए मध्यम गति से श्वास लें और मध्यम गति से श्वास को छोड़ना है। तत्पश्चात आप देखेंगे कि यह प्राणायाम या आसन यानी नाड़ी शोधन आसन किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। जो साधक ब्रह्मचर्य को धारण कर प्राणायाम की क्रियाएं करता है उसकी कुंडली जागरण की क्रिया स्वतः होने लगती है। इसलिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं योग की योग पाठशाला में समता आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आम तौर पर सभी को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप सबसे पहले आप उनका नाम जान लें। नाम सुनने में तो आपको लगेगा कि ये कोई सांप से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोबरा आसन, और इसका जो रियल नेम है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन को ही कोबरा आसन कहा जाता है और देखा जाए तो यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारी और सारी मांसपेशियों के लिए, और खासकर जहाँ पर हमारे धड़ से नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे। तो आइए हम आज की जो कि एक्सरसाइज की सीजन में हम करवाने जा रहे हैं आपको कोबरा आसन। भुजंग आसन दो शब्द यानी कि भुजंग और आसन से मिलकर बना हुआ है और इंग्लिश में इस आसन को कोबरा पोज भी कहते हैं। इस योग में सांप की तरह अपने धड़ को आगे की दिशा में उठाकर रखना होता है। अगर आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या है तो आप इसे रोज कर सकते हैं। आइए हम आपको बताएंगे कि कोबरा पोज कैसे किया जाता है। कोबरा पोज करने की शुरुआत करें, अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखें, आपकी कोहनी मुड़ी हुई होनी चाहिए, पेट के नीचे का हिस्सा जमीन पर लगा होना चाहिए और हाथों को शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। यह हो गया कोबरा यानी भुजंग आसन। अब हम जान लेते हैं कि भुजंग आसन को करने से क्या लाभ मिलता है। इस आसन के अभ्यास से पेट से संबंधित सभी समस्याएं तो दूर होती ही हैं। साथ में यदि आपको गैस की समस्या होती है, आपको एसिड बनता है, तो भी यह बहुत आवश्यक होता है और बहुत ही लाभप्रद होता है। भुजंग आसन या कोबरा पोज का अभ्यास करने से स्पाइन, ग्लूटियंस, मसल्स, आर्म्स, कंधे और जांघें मजबूत होती हैं। यह शारीरिक संतुलन बनाता है। भुजंग आसन करने से कमर के दर्द को भी ठीक करने में काफी राहत और मदद मिलती है। तो ये था दोस्तों भुजंग आसन करने के आपको लाभ बताए और इसको करने के क्या फायदे होते हैं वो। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि भुजंग आसन को करने से कौन सा रोग ठीक होता है। भुजंग आसन यानी कि कोबरा आसन करने से पित्ताशय की पथरी, यानी आपकी अगर पित्ताशय में पथरी है और जिसके कारण से सूजन होती रहती है, दर्द बना रहता है, तो यह आसन लगातार नियमित रूप से करने से यह सारी समस्याएं दूर होती हैं और दर्द को काफी आराम मिलता है यह व्यायाम करने से। इसमें पेट पर गहरा खिंचाव पड़ता है और आपके कमर और ऊपरी हिस्से को मजबूती प्राप्त होती है। पेट के बल लेट फिर कंधों के बल और हाथों को जमीन पर रखें, जिसकी वजह से जब हमारे कंधों पर बल पड़ता है, हमारे पेट के निचले हिस्से पर बल पड़ता है, तो यह आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण आसनों में से एक बन जाता है। कोबरा आसन वैसे तो सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि यह एक सांप का नाम है, जी हाँ, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो भी इसका जो देखने में साफ आपको लगेगा कि वाकई में

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भोरी भोरी की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूं आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, कारण आज है सीता नवमी, यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वहीं जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनके भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है। राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषता रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना? लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: क्या बात है भाई। और एक बार वापस से आपका मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। दिन सोमवार हो गया आज और तारीख 27 जुलाई। मॉर्निंग वाला शो विद योर मॉर्निंग चौक आरजे अदनान, स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और साथ ही साथ चूंकि अब वक्त हो चला है ये बताने का कि भाई आज का आसमां कैसा है, सो आज बदलियों वाला आसमान है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मुझे लगता है उठ करके देखने की पूरी पूरी ज़रूरत है आपको। और आज का आसमां इसलिए भी ख़ास है क्योंकि कल तक जहां लगा था कि भाई आज फिर से धूप निकलने वाली है, लेकिन धूप ना निकल करके सीधे सीधे जो है बदली हुई। न सिर्फ बदली हुई बल्कि कहीं ना कहीं ये मौसम भी खुशनुमा हो गया। लेकिन बस थोड़ी सी अगर हम एक बात कहें तो अगर हवा चल जाती तो सच में मज़ा ही आ जाता। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अब चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। थॉट ऑफ द डे वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जब बात आती है मंडे की तो ये थॉट कुछ ज़्यादा ही और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सारे वीक की शुरुआत यहीं से होती है, सारी गलत फहमियाँ सारी बातें यहीं से ही शुरू होती है। सो चलिए आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ रुख करते हैं और बता देते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग भी हो रही है आपके अपने फेवरेट आरजे अदनान के साथ।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

बड़ी प्यारी बात कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। क्या कह रहा है आज का थॉट? कह रहा है कि गलत जगह है, कैद रहने से बेहतर है उम्र भर भटकते रहना। गलत जगह कैद रहने से बेहतर है उम्र भर भटकते रहना। बहुत बड़ी बात, बहुत प्यारी बात, बहुत शानदार बात। किसी भी ऐसी जगह कैद रहना जो आपके लिए गलत है, ये बहुत बड़ी बात है कि उससे बेहतर हो कि हम उम्र भर भटकते रहें। कहते हैं ना कि जो चाहिए वो मिल जाए भले ही थोड़ा सा तो बात बने, और जिसकी सरोकार नहीं, जिसकी दरकार नहीं, वो भरा पड़ा हो तो क्या मतलब है। सो ये एक अदद जो आपकी चाहते हैं, ख्वाहिशात हैं, उन पे ज़रा गौर करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि गलत जगह रहने से कितना बड़ा फ़र्क होता है। यानी कई बार पिंजरे जो होते हैं वो सच में इतने करीनों से, इतने नगीनों से जड़े हुए होते हैं कि कहीं ना कहीं उसको सही और सच मान लिया जाता, हालांकि ऐसा नहीं होता है। कैद खाना आपके लिए कैद खाना है, फिर वो चाहे हीरे जवाहरात से क्यों ना जड़ा हो। यहाँ पर हीरे जवाहरात का मतलब हीरे और जवाहरात से नहीं है, यानी उन फैसिलिटीज़ से है, उन चीज़ों से है जो कहीं ना कहीं कॉमनली जिसको सक्सेसफुल होने की संज्ञा दी गई है या जिसको बहुत ऊंचा माना गया है। दरअसल वो आपके लिए मैटर करता ही नहीं है। आपके लिए मैटर करता है कि आपको क्या मैटर करता है, आप किन चीज़ों में महसूस कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास, हमारी लाइफ में हमारे पास रिश्ते भी बहुत हैं, हमारे मिलने जुलने वाले भी बहुत हैं, हमारे पास काम भी बहुत है, लेकिन क्या हम हर चीज़ फील कर पाते हैं? क्या हर किसी से वैसा रिश्ता है जैसे किसी से एक ख़ास इंसान से होता है? क्या हर शख्स उसी तरह खासियत से मिलता है? क्या हर काम को उसी बेबाकी से, उसी अपनेपन से और उसी लगन से कर पाते हैं? नहीं। इसीलिए उम्र भर भटकते रहना फिर भी सही है, लेकिन ऐसी जगह कैद रहना जो गलत है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम भटकते रहें, अपनी चीज़ों को ढूंढते रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसका एग्जांपल कई बार ऐसा समझा जाता है कि हम कई बार उस काम को करके बैठ जाते हैं जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता है और उसको करते ही रहते हैं, क्योंकि काम चल रहा है बस इसलिए कर रहे हैं और हमको लगता है ये सेफ है, हालांकि मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंग बहुत ज़्यादा है और कुछ ख़ास भी नहीं है, कुछ नयापन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं। वजह बहुत साफ़ है कि हमको लगता है कि शायद ये सस्टेनेबल है, ये रुकी हुई चीज़ है, इस पे हम डिपेंडेंट हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप उन चीज़ों को तलाशें जो आपके जैसी है, जो आपके लिए है, जो आप फील कर पाते हैं, जिसको करते वक्त, ऐसी चीज़ें आपके लिए, और ये ढूंढना हमारा फ़र्ज है, इसको खोजना हमारा काम है और यही करना है। गौर करिए, बड़ा मुश्किल होता है, कहना आसान है लेकिन सच में मुश्किल होता है उस कैद से निकल पाना जिसको आपने बहुत लंबे वक्त तक रहा हो, जिसमें आपका एक अरसा गुजर गया हो। इसीलिए उस पिंजरे से, उस कैद खाने से आज़ाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा सोचने से ही हम क्रिटिकल चीज़ें बना लेते हैं। अगर उन चीज़ों को बहुत इजीली देखा जाए, किसी भी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव, नज़रिया अगर आसान बना लिया जाए तो चीज़ें आसान होंगी। लेकिन कहा भी यही जाता है कि सरल होना ही तो कठिन है, आसान होना ही तो मुश्किल है। अगर आसान हो गए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फ़िलहाल आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लग रहा है आपको, ये आप हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के थॉट ने बहुत ही प्यारी बात कही है। और अगर हम मंडे को देखें तो मंडे के अकॉर्डिंगली तो क्या बात है, जच गई है बात सारी। सो आप बताइए कि भाई आज का जो थॉट ऑफ द डे है कि उम्र भर कैद
रहने से, यानी गलत जगह कैद रहने से बेहतर है उम्र भर भटकते रहना। सो इस बात को लेकर के आपका क्या है मानना, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपके खुद के अपने विचार क्या कहते हैं, ये आप हमको ज़रूर बता दें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको अपनी कैद को तलाशना है कि कहीं ये आपकी कैद तो नहीं है, और आपको ख़ुद को रेडी भी करना है ताकि आप अपने राहों पे निकल सके, ताकि आप अपनी चीज़ों को ढूंढ सके, आगे जा सके। सो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, और यही कहना है मेरा। सो क्या समझ में आया और क्या लगता है आपको, आप ज़रूर फील करिएगा। फ़िलहाल जिस तरह का मौसम है, जैसा बादल है, जैसा समय है, वैसा ही अब सॉन्ग आ रहा है आपको पूरी तरह जगा देने के लिए, पूरी तरह एनर्जी सौंप देने के लिए आपके मॉर्निंग वाले शो में, विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: चढ़ गया भैया खुमार इस गाने का और इस मॉर्निंग वाले शो का ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन एंड नाउ यू आर लिसनिंग
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान

अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदला बदला सा मौसम है। क्यों? क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा अच्छा हो गया था मौसम, जब बारिश हो रही थी कुछ कुछ ठंड सी लगने लगी थी, लेकिन वापस से हमें लगता है कि वोल्टेज जो है वो लो कर दिया है नेचर ने, और एक बार वापस से गजब की उमस जो है वो पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात ये है कि उस तरह की भी धूप नहीं है जिसमें धूप को देखने का ही बेहोश होने का मन करता था, उसकी एक्टिंग करता था कि भाई बेहोश होने की एक्टिंग कर लिया जाए। सो फाइनली अभी आज बेहतर है काफ़ी। चलिए, हमने आज का थॉट ऑफ द डे आपसे शेयर कर लिया, साझा कर लिया। क्या कुछ कहना है आपका और क्या लिखा है आपने, हम ये फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले जो कमेंट आया है आज के मॉर्निंग शो में वो आशु मिश्र जी का आया है लखनऊ से। सुप्रभात सर जी, ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा, वैसे होता क्या है हद से ज़्यादा अच्छा होना? खैर, एक बार आपको वापस से सुप्रभात। एंड सोनिया तिवारी जी भी मौजूद हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है सोनिया मॉर्निंग के स्पेशल शो में। साथ ही साथ हमारी प्रीति जी ने भी लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। एंड यस, आशु जी ने कहा है सर जी कल लखनऊ में धूप निकली थी, बहुत गर्मी थी और आज मौसम सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे डायरेक्शन में मौजूद हैं जहां पे आपको हवाएं लग रही है और ये बहुत अच्छी बात है। उस्मान खान मौजूद हैं, आप लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, रूबी विश्वकर्मा जी हैं, रूबी जी आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जो का। आरजे अदनान, धर्मेश त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत है धर्मेश मॉर्निंग के स्पेशल शो में, गुड मॉर्निंग। नगेश्वर गुड मॉर्निंग लिखते हैं आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग नगेश्वर, आपका भी हम वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड साथ ही साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं का जो फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनते हैं। सो चलिए भाई, इसी के साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ रिएक्शंस दिए हैं आज के थॉट को लेकर, क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्रीति जी लिखती हैं हमारी बहराइच से कि फॉलो करने योग्य थॉट। वाह, अच्छा लगा, फॉलो करने योग्य है। एंड डेफिनेटली अगर आप इसको खुद करके देखने वाले हैं तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट जो है वो आपको खुद ही जाने वाला है। उस्मान जी लिखते हैं वेरी नाइस थॉट सर, थैंक यू सो मच कि आपको भी उस्मान ये थॉट पसंद आया है। एंड आई होप कि आप भी कहीं ना कहीं इसको लाइफ में एटलीस्ट जो रिफ्लेक्ट होता है उसको देखने की कोशिश हम सभी लोग करने वाले हैं, थैंक यू। एंड यस, आशु जी लिखती हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी को संवारना, क्योंकि कौन क्या और क्यों कर रहा है इससे दूर रहोगे तो मन शांत और खुश रहेगा। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के कामों और फैसलों पर ध्यान देने की बजाय अपनी राह पर चलना जो है वो सीख लेते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस थॉट लिखा है, थैंक यू सो मच। सुविचार के लिए लेट हो गए नगेश्वर, ऑल राइट, कोई बात नहीं, हम एक बार दोहरा देंगे, दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो ये था कि गलत जगह कैद रहने से बेहतर है उम्र भर भटकते रहना। तो चलिए, हर उस शख्स ने सुन लिया है जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है गुड मॉर्निंग गोंडा को। एंड यस, इसी के साथ ही साथ अब आपको ले चलते हैं ज़बरदस्त शुरुआत की तरफ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत जो गाने होते हैं उनसे ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। सो अभी कौन सा सॉन्ग आ रहा है, चलिए सुनिए, एंजॉय करिए और वापस से आते हैं तो आज आपको हम सिटी अपडेट्स से भी रूबरू कराने वाले हैं।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: न जाने कब कौन सी बात दिल के और जहन के किस हिस्से को छू ले, ये कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन पता ये होता है कि हम अक्सर आपसे सवाल जो है वो जरूर करते रहते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota.

सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछेंगे नहीं तो भाई हमारा बीपी जो है वो बढ़ा रहेगा। और अगर खुद को अच्छा करना है, शांत करना है, तो आपसे ये सवाल करना है, और सवाल का जवाब आप दीजिएगा चैट बॉक्स पर आकर के। सवाल ये कि अगर आने वाले कल से दुनिया की सारी सोशल मीडिया ऐप्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आपको किस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होगी और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी खलेगी? अगर आने वाले कल से, ऐसा फ़र्ज़ कर लीजिए कि आने वाले कल से दुनिया की सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स हमेशा के लिए बंद कर दिए जाए तो सबसे ज़्यादा किस बात की खुशी होगी और किस बात की सबसे ज़्यादा कमी खलेगी? ये दो चीज़ आप ज़रा बताने का कष्ट करें 89.6 FM की एप्लीकेशन के चैट पर आकर के, क्योंकि सवाल बड़ा ही अहम है। तो ज़रा सोचिए कि भाई आज हम एक पल भी बिना फ़ोन के नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अगर कल सुबह अचानक ऐसा हो कि इंटरनेट गायब हो जाए, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाए, स्मार्टफोन सिर्फ एक डब्बा बनकर रह जाए, तो क्या ये हमारे लिए किसी आज़ादी से कम नहीं होगा या फिर एक डर का माहौल बनेगा? आपको किस चीज़ से सबसे बड़ी राहत मिलेगी और किसकी कमी सबसे ज़्यादा खलेगी, जो कि आपको बताना है। और बताना कैसे? चैट बॉक्स पर आ करके, ऑफ कोर्स। सो चैट बॉक्स पे आप बता सकते हैं कि अगर हमेशा के लिए सोशल मीडिया ऐप्स, इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स हटा दिए जाए तो सबसे बेहतरीन कौन सी बात होगी और सबसे ज़्यादा कमी आखिर किस बात की खलने वाली है? सो फिलहाल रेलगाड़ी चलने वाली है, इस तरह की जो राइमिंग वाली कविताएं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते थे। तो चलिए भाई आप बताइए, आपके बताए जाने का इंतज़ार है, और जब ये आप आंसर दे देंगे तो उसके बाद जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है आपके अपने शहर गोंडा में, यानी कि आपके स्पेशल बातचीत सिटी अपडेट में।

0: ये इश्क है बैठे बिठाए, जन्नत का तो नहीं पता लेकिन समय जरूर बताए। फिलहाल समय हो रहा है 9:19 आपके 99.6 एफएम के स्टूडियो में, और सवाल का जवाब जानने के लिए आरजे अदनान वापस से आ गए हैं और देखने वाले हैं कि भाई क्या कुछ लिख भेजा है आपने इस सवाल के एवज में और क्या बताने वाले हैं। आखिर इंटरनेट एप्लीकेशन सोशल मीडिया की बंद हो जाने के बाद आपकी जीवन पर क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ सबसे बेहतर मिलेगी और किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी खलेगी।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: इस सवाल का जो जवाब दिया है वो सबसे पहले नगेश्वर ने दिया है। लिखते हैं कि अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो मुझे दुख इस बात का होगा कि मैं ज्ञानस्थली नहीं सुन पाऊंगा, खुशी इस बात की होगी कि मैं ज़्यादा वक्त तक कामों पर ध्यान दे पाऊंगा, ये जो फ़ोन की लत लगी हुई है ये दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मगर मुझे लगा था कि अगर दीवानगी है आपकी ज्ञानस्थली की तो आप मध्य प्रदेश छोड़कर गोंडा बस जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो बंद होगी नहीं, इंटरनेट बंद होगा, फ्रिक्वेंसी आपको गोंडा में मिल जाएगी। ऑलराइट, बहुत ही प्यारा आंसर, थैंक यू सो मच नागेश्वर। एंड हमारी गीता श्रीवास्तव जी लिखती हैं कि खुशी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, दुख ज़रूर होगा क्योंकि मैं अपने बेटे से जो समय US में है उससे व्हाट्सएप पर ही वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पर बात होती है। वाह, कितनी सही बात है भाई, आज रिश्तों को भी जो निभा रहा है इंटरनेट, कहीं कहीं ऐसा उसका इस्तेमाल देखो कि लगता है वाह, सच में हमारे जीवन का अभिन्न और अहम हिस्सा बन गया है। थैंक यू सो मच आपके इस जवाब के लिए। इसके अलावा हमारी सविता जी लिखती है, बहुत अच्छा होगा इंटरनेट बंद हो जाएगा तो मेरा वैसे भी फ़ोन डब्बा हो गया है। अच्छा, अब आपका ख़राब है तो दुनिया का बंद हो जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है। वेरी नाइस, थैंक यू। और हमारी आशु जी लिखती हैं लखनऊ से, सबसे ज़्यादा दुख होगा कि रेडियो ज्ञानस्थली से संपर्क टूट जाएगा, सारे दोस्तों से संपर्क टूट जाएगा, खुशी सबसे ज़्यादा ये कि हम अपने परिवार को सबसे ज़्यादा वक्त देंगे। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मुझे लगा था आप भी बस जाएंगे गोंडा। ऑलराइट, सो धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास से लिखते हैं कि अदनान सर जी सुहाने मौसम की सुबह का गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। ओके, सामने ही हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। क्या बात है, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। एंड नगेश्वर लिखते हैं फिर तो मेरा घर बार छोड़ कर आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। वही मैंने कहा ना कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, एप्लीकेशंस बंद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन्स अगर मान लीजिए डब्बा हो जाए तो ऐसे हालात में आप गोंडा बस सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी से सीधे ट्रांजिस्टर से सुनने का अलग मज़ा होता है FM को, तो भाई वो भी आप आकर के यहाँ रहते हुए सुन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियसली यहाँ पे ज़मीन तलाशने लगें, आप जहाँ पे भी हों खुश रहें, और अच्छी बात यह है कि संपर्क न टूटा है और न टूटेगा, है ना, ये सबसे प्यारी बात है। सुबह बहुत स्मार्ट आंसर्स आपकी तरफ से आए, बड़े ही इमोशनल आंसर्स आपकी तरफ से आए, दैट्स वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा लगा जान करके कि भाई आप क्या सोचते हैं और क्या आपके जहन में है। और इसी के साथ चूंकि हमने वादा किया है आपको बताने का आपके सिटी की अपडेट, यानी क्या कुछ चल रहा है गोंडा में, वो भी हम बताने वाले, लेकिन उससे पहले आइए सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं फिर बताते हैं कि आज आपके सिटी अपडेट यानी गोंडा शहर की अपडेट्स में क्या है जो आप तक हम पहुंचाने वाले हैं आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, जो कि आता है आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और आइए अब शान की आवाज़ में एक रोमांटिक सा सॉन्ग आप तक हम पहुंचाए ही देते हैं।
1: जब हम मिले
0: हाय हाय हा हा, जब हम चले, क्या बात है, ऐसे कुछ सॉन्ग्स एक दौर ले आते हैं, एक ऐसा दौर जो गुजर चुका है लेकिन इन लाइंस में, इन म्यूजिक्स में कहीं बसा होता है।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: हाँ जी, तो फिलहाल चलिए चलते हैं बताने आपको कि भाई आज सिटी अपडेट में आपके लिए क्या अपडेट लेकर के आए हैं आपके अपने मॉर्निंग जॉकर जो है नान, और क्या कुछ है जो आपके शहर में बदल रहा है।
4: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि भाई सबसे पहली जो बड़ी अपडेट आ रही है आज फिलहाल गोंडा से, वो है अयोध्या से गोंडा तक बनने वाली 6 लेन हाईवे के बारे में। जी हाँ, सो देवी पाटन मंडल की सड़क परियोजना का जो रूट है वो बदल गया है। जिस 6 लेन हाईवे को बलरामपुर तक ले जाने की चर्चा थी वो फिलहाल अभी गोंडा पर आकर रुक गया है। सो कहीं ना कहीं सेंट्रल से अब गोंडा से अयोध्या तक 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और गोंडा बाईपास के जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। करीब 34 अरब रुपए की इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH खंड अयोध्या ने अलाइनमेंट, तकनीकी सर्वे और भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू कर दी है। परियोजना के लिए 425 हेक्टेयर जो है वो ज़मीन अधिग्रहित भी की जाएगी। इस परियोजना के तहत कुल 55 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। इसमें 9 किलोमीटर अयोध्या रिंग रोड का हिस्सा शामिल होगा, जबकि 46 किलोमीटर नई 6 लेन सड़क अयोध्या रिंग रोड से निकल करके सीधे गोंडा तक पहुंचेगी। सो इस परियोजना का जो फिलहाल फॉर्मेट है वो तैयार करके केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। सबसे अहम बदलाव ये है कि नई सड़क मौजूदा गोंडा अयोध्या यानी नवाबगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के बजाय उत्तर दिशा में नए अलाइनमेंट से खेतों के बीच होकर प्रस्तावित गोंडा रिंग रोड से जुड़ेगी और सड़क की चौड़ाई तकरीबन 30 मीटर होगी, जबकि निर्माण के लिए 60 से 90 मीटर तक चौड़ी भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए लगभग 380 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इस परियोजना के साथ ही गोंडा शहर को जाम से राहत दिलाने की तैयारी भी की गई है। शहर के बाहरी हिस्से में 9 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास बनाया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन 45 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित होगी और इस तरह 6 लेन हाईवे जो है बाईपास निर्माण के लिए कुल 425 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सो लगातार कहीं ना कहीं इस बात पर आप समझ लीजिए कि भाई अब 6 लेन हाईवे जो है वो मिलने वाली है गोंडा को। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलते हैं तो हम बता दें आपको कि आज है 27 तारीख, कल है 28 और परसों यानी वेंसडे को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 29

इस जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होगा। जिला सेवा योजन अधिकारी गुलाब चंद्र मौर्य ने बताया कि रोजगार संगम पोर्टल के जरिए कई सारी कंपनीज को मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पहले रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपनी योग्यता के हिसाब से कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं। सो अभ्यर्थियों को 29 जुलाई को सुबह 10:30 बजे जो है वो शैक्षिक अंक पत्र और प्रमाण पत्रों की जो छाया प्रति है, आधार कार्ड की छाया प्रति और पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो के साथ में जिस प्लेस पर बताया गया है उस पर वहाँ पहुँचना होगा। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो आ रही है वो 30 घंटे बाद वापस से महनौन उपकेंद्र की बिजली को लेकर के आ रही है। सो ज़िले में चूंकि रोस्टिंग और लोकल फॉल्ट जो है और बिना बताए जो अघोषित बिजली कटौती, उससे कंज्यूमर्स की परेशानी लगातार चूंकि बढ़ती जा रही है। महनौन की बात करें तो वहाँ पर विद्युत उपकेंद्र की जो आपूर्ति है 30 घंटे बाद वापस हो सकी है, जबकि तरबगंज, खरगुपुर, इटिया, थोक, मस्कनवा, करनैलगंज और परसपुर में ट्रिपिंग और ख़राब ट्रांसफार्मर्स के वजह से लोग उमस से काफ़ी ज़्यादा बेहाल होते जा रहे हैं। सो इसलिए कहीं ना कहीं इस बात का ये ऑफकोर्स बताया गया कि 30 घंटे बाद फ़िलहाल महनौन उपकेंद्र जो है वहाँ पर बिजली वापस आ पाई है। इसके बाद चलते हैं आपके लिए अगली अपडेट को लेकर के। और अगली अपडेट जो आ रही है वो दरअसल आ रही है फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर के। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंडलीय फुटबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल कराया जा रहा है 10:00 बजे से, जो कि होने वाला है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद गोंडा के सभागार में जन सुनवाई भी हो रही है 10:00 बजे से ही। जी हाँ, 10:00 बजे से ही किया जा रहा है। एंड इसके अलावा जो ज़िले में मेडिकल कॉलेज से आ रही है खबर वो ये है कि भाई मौसम का जो उतार चढ़ाव है, यानी सीज़न जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सर्दी ज़ुकाम के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए भी इस बात का ख्याल रखें आप कि भाई मौसम बदल रहा है तो उसमें ख़ुद को और अपने परिवार को कैसे आप बेहतर रख सकते हैं, किस तरह से इस मौसम को आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं कि भाई आप भी बीमार इसमें ना हो, वायरल जैसी कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना आए। इसके अलावा आपको अब हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट है वो मनकापुर से आ रही है। सो नगर पंचायत में पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना के तहत मेन जो रास्ते हैं उस पर अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट्स का लोकार्पण जो है वो भी किया गया है और वो लोकल MLA के ज़रिए किया गया है। सो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो नगर पंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और विधायक ने कहा भी कि नगर को सुंदर और सुरक्षित बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सो अध्यक्ष ने बताया कि पहले फेज़ में मुख्य मार्ग पर 120 लाइटें लगाई गई, दूसरे चरण के लिए जो है वो सार्वजनिक रखने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी अपील की गई है। सो इसके अलावा फ़िलहाल इन सारी अपडेट्स के बीच में बता दें कि बड़े खेल मैदानों से चमके हैं कई सितारे। जी हाँ, सो PM श्री GIC में जो है वहाँ पर अभ्यास भी कराया गया, यानी प्रैक्टिस कराई गई। सो ज़िले के कई माध्यमिक स्कूल्स में खेल मैदान सिर्फ खेलकूद का जगह नहीं होती है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को निखारने वाली नर्सरी भी साबित होती है। सो इन्हीं मैदानों में पसीना बहा करके खिलाड़ियों ने अपनी जो पहचान है, देश की पहचान है, वो विदेश तक बनाई हुई है। उसी में से एक जगह है गोंडा का GIC जहां पर फिलहाल अभी खेल को लेकर के बच्चों का अभ्यास कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 98 लोगों की ग्राहक सेवा केंद्र में ठगी की शिकायत की बात सामने आ रही है। सो ये मामला खरगुपुर का है। सो वहाँ पर मौजूदा ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSP में ठगी को लेकर अब तक 98 लोगों ने तहरीर दी है और पुलिस जांच में ठगी की रकम लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान भी है। सो कल यानी संडे में से जस्ट पहले सैटरडे में परसों में 2 लोगों की तहरीर पर गबन का जो है
वो आरोप लगा था संचालक और उसके सहायक के विरुद्ध। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और कहीं ना कहीं ठगों की तलाश की जा रही है। सो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि अपने ही शहर गोंडा से थी। एंड यस, फिलहाल आपको अब हमने बता दी है गोंडा की सारी अपडेट। आई होप कि ये आप तक पहुंच गई होगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके काम की भी ये बातें ज़रूर रही होंगी। सो फिलहाल वक्त है चलने का, आगे बढ़ने का, अगले सॉन्ग को सुनने का आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं।

कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
8: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे झब्बू।
1: हाँ सर।
0: अरे एक सवाल का जवाब दो।
1: बताइए सर।
0: ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है?
1: अरे जमीन पर सर।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो एक बड़ी अपडेट मुझे लगा शायद आप तक पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद प्रोटेस्टर्स की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद अब जो है वो अगले जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो भी बनाए गए हैं। सो क्या आपको पता है कि अब जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको चूंकि हम बता देते हैं कि भाई नीट का जो विवाद हुआ उसके बीच में प्रोटेस्ट किया गया और इतने दिन तक लगातार चलने के बाद प्रोटेस्ट फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफे के बाद जो है उस इस्तीफे को राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। अब प्रहलाद जोशी अपनी जो वर्तमान जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय के कामकाज को भी संभालने वाले हैं। सो फिलहाल जो है जो नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। आई होप कि आप तक ये जानकारी अगर नहीं पहुंची थी सो मैंने नाम बता दिया है कि प्रहलाद जोशी जो हैं वो बनाए गए हैं नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सो फिलहाल ये सवाल हो सकता हो, पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में भी या कॉमनली हमको पता होना चाहिए कि भाई अभी क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ चल रहा है। सो चलिए भाई, ये थी अपडेट। वापस से हाजिर हो रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की तरफ।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: दिल आजकल मेरी सुनता कहाँ है यार, दिल तो बस अपनी करता है। और आज दिल क्या कर रहा है? आज तो मंडे का टाइम है, सो मुझे लगता है दिल कर रहा है इस वक्त बेहतरीन सी अदरक वाली चाय पीने का। मौसम देख करके यार, बाहर का मौसम अंदर का मौसम बना देता है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। वैसे आपको क्या लगता है, जब कभी कभी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कहीं निकले हो और अचानक से कोई आपका ऐसा मिल जाए, इतना खास बंदा जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, क्या रिएक्शन था, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में?
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अकान।

ओ माय गॉड भाई तुम हो, मतलब ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है। ओ अरे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहीं आप रास्ते में जा रहे हो या कहीं पे भी आ गए हो या आपके डोरबेल की आवाज़ आपको सुनाई पड़े आपके घर में और अचानक से देखे तो ओ माय गॉड आपके बचपन का फ्रेंड जो है वो खड़ा है। और कितना बुरा लगता है जब कोई डोरबेल बजे, आपका बचपन का कोई फ्रेंड हो, अचानक से कोई सामने आए लेकिन आप उस वक्त उस घर में अपने मौजूद ना हो। बड़ा ही बदनसीबी वाली बात है। सो ये कल मेरे साथ हो गया था। हमारे एक बहुत ही ख़ास मित्र आए थे लेकिन हम कहीं अलग गए हुए थे, लेकिन जब सुना कि भाई वो आए हुए हैं तो बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि यार सच में लाइफ में कुछ लोग इतने इम्पॉर्टेंट हैं ना कि भले ही आपकी बात हो ना हो, आपकी मुलाकातें हो ना हो, लेकिन अगर कोई वो मिलने चले आए तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि अरे यार क्या मिल गया, मतलब आप अलग ही ट्रैक पे चले आते हो, मतलब क्या कर रहे थे कोई मतलब नहीं है, अभी ये बंदा है, अभी ये सारी चीज़ें। सो आई होप कि भाई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो और आप भी इतने लकी हों जितना फ़िलहाल मैं हूँ, एंड डेफिनेटली आप हैं। बट आपको अब ये सोच ज़रूर लेना है कि ऐसा कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में कभी आता है तो यार प्लीज़ यार एक बार मिल करके उससे हग ज़रूर कर लेना, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो जुबान से नहीं कही जा सकती, बहुत छोटे पड़ जाते हैं लफ्ज़, और करना होता है कोई हरकत, और कहते हैं हरकत में हो जाती है बरकत। सो फिलहाल चलिए गले से लगा लीजिए अगर ऐसा कोई दोस्त आपका बहुत वक्त बाद मिल रहा है। फिलहाल मैं इन बातों के काबिल हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप ज़रूर इस काबिल सॉन्ग को सुनने के बामुकम्मल काबिल है। सुनते रहिए अपना मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग गुंडा वीडियो मॉर्निंग शॉक आरजे अरमान।

0: कैन यू इमेजिन कि अगर किसी की पत्नी के हस्बैंड को कोई मार दे जान से, उसके बाद भी वो पत्नी जो है उस मारने वाले को बचाए, और ये कोई एक किस्सा ना हो, मतलब ऐसे कई किस्से हों, ऐसी कई पत्नियां हो जिनके पति को मारा गया हो और मारने वाले को बचाया हो उनकी पत्नियों ने, सोच के थोड़ा सा ऑड सा लगता है। चलिए पूरी बात क्या है बिना सुने आप कोई जजमेंट तैयार अपने मन में मत कीजिएगा, क्योंकि हम बताते हैं दरअसल माजरा क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

दरअसल ये जो हम मारने की बात कर रहे हैं, ये कातिल कोई आम नहीं खास है। अब आप सोच रहे हैं कातिल को मैं आम नहीं खास बता रहा हूं, दरअसल हम बात कर रहे हैं किसी इंसान की नहीं बल्कि जानवरों में बाघ की। जी हाँ, सो जिनके पति बाघ के हमले में मारे गए, आज वही महिलाएं, वही उनकी पत्नियां बाघों को बचा रही हैं, उनका घर बचा रही हैं। जी हाँ, सो टाइगर विधवाएं कैसे बनी मैंग्रोव की रक्षक, आइए बताते हैं आपको। दरअसल सुंदरबन का नाम आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, जानते हैं। सो सुंदरबन में कई सारी ऐसी महिलाओं की पहचान

पुरुष जो है वो बाघों के हमले का शिकार हो जाते हैं। और साल 2000 से अगर अभी तक के हम हमलों की बात करें, उसका आपको एक डेटा बताएं, तो 300 लोगों की जान जा चुकी है पिछले लगभग 27 सालों में। जी हाँ, बाघ हमलों में। और आज पति की मौत के बाद उन महिलाओं को स्वामी खेजोस यानी कि पति को खाने वाली कहकर उनका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। उन्हें जंगल में जाने की इजाज़त नहीं होती और अगर पति बिना परमिट जंगल गए हों तो सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलता है। सो मालती मंडल ही एक ऐसी महिला है। करीब 10 साल पहले इनके पति की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि भाई जो अपने पति पर निर्भर हों उनके लिए परिवार चलाना पड़े और परिवार चलाना अचानक से कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी कहानी ऐसी सैकड़ों औरतों के लिए उम्मीद बन चुकी है। इसी दौरान एक सामाजिक संस्था है जिसका नाम है आई बिहाइंड द इंक यानी IBTI और कॉन्वर्जेशनल इंटरनेशनल्स ने मिल करके अनोखी पहल शुरू की है और महिलाओं को जंगल बचाने की मुहिम का हिस्सा बनाया है। सो आज मालती जैसी महिलाएं जो है वो मैंग्रोव के पौधे तैयार करती हैं और उन्हें महीनों तक नर्सरी में संभालती हैं और फिर समुद्र के किनारे लगाती हैं। सो 2025 से 59 महिलाओं को इस पहल से जोड़ा गया और इनकी मदद से 1,00,000 से ज़्यादा मैंग्रोव के पौधे उगाने और 100 हेक्टेयर क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। सो मैंग्रोव जो है वो सिर्फ बाघों के जो प्राकृतिक आवास हो उसको ही मजबूत नहीं करते बल्कि समुद्री तूफानों से गांव की मदद करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और मछलियों के लिए सुरक्षित प्रजनन की जगह बनाते हैं। सो मजबूत जंगल का मतलब है इंसानों और बाघों के बीच के टकराव को कम होने की उम्मीद। आज इस काम में महिलाओं को रोजगार भी मिलता है। सो जिन टाइगर विधवाओं को कभी समाज ने ठुकरा दिया था आज वही अपने गांव में बदलाव की पहचान बन गई हैं। कभी जिस जंगल ने इन महिलाओं से इनका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया था आज वही जंगल इनके आत्मसम्मान, इनके रोजगार और इनकी नई पहचान की वजह बन रहा है। और शायद बदलाव की सबसे खूबसूरत कहानी वही होती है जहां दर्द हो किसी नई उम्मीद की शुरुआत बन जाए। जी हाँ, सो ये स्टोरी रियल लाइफ की आपको सुन करके कैसी लगी, वो भी एक नहीं 59 वेमेन्स हैं जो ऐसा फिलहाल कर रही हैं जिनको इस मुहिम से जोड़ा गया। अब आपको इस मुहिम के बारे में जान करके कैसे एहसास आ रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं अपने 89.6 FM वाले स्टूडियो पर और आ सकते हैं आप एप्लीकेशन की चैट बॉक्स पर और लिख सकते हैं जो भी जज्बात आप फील कर रहे हैं, जो भी जज्बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30 आपके 89.6 FM के स्टूडियो में।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर

0: क्या अरिजीत की आवाज? भाई अरिजीत तो फिलहाल संन्यास ले चुके हैं प्लेबैक सिंगिंग से, यानी अब किसी मूवीज के लिए नहीं गाएंगे, ऐसा सुनने में आया था। सो फिर ये इसी महीने आ रही, यानी जस्ट जुलाई के बाद अगस्त में आ रही आवारापन 2 में आखिर ये गाना कैसे गाया? ये सवाल दरअसल कई अरिजीत के चाहने वाले करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो चलिए भाई, इस खलबली को भी हम आपके दूर कर देते हैं कि अरिजीत ने जब मना किया कि हमें प्लेबैक सिंगिंग अब नहीं करनी है, संन्यास ले लिया, तो फिर उसके बाद ये जो सॉन्ग आ रहा उसमें अरिजीत की वॉइस कैसे?
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो सवाल ये आता है क्या आवारापन 2 के गाने से अरिजीत ने कमबैक किया है? क्योंकि भाई कई लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि अरिजीत तो जब संन्यास ले चुके हैं और प्लेबैक सिंगिंग में अब वो नहीं आने वाले हैं, तो फिर ये आवारापन 2 का सॉन्ग अरिजीत की वॉइस में कैसे है? तो आइए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी जरा हम बता देते हैं। दरअसल फिल्म आवारापन 2 के जो नए टाइटल ट्रैक है, इसमें अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनने के बाद जो है फैंस के बीच में फिलहाल अभी चर्चा शुरू हो गई थी कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया है। सो आपको बता दें कि मैनेजर ने क्या बोला है, यानी अरिजीत के मैनेजर ने क्या बोला है इस बात को लेकर के। सो अरिजीत के मैनेजर ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए साफ किया कि वो प्लेबैक सिंगिंग में वापसी नहीं कर रहे हैं। फिर ये नया गाना कैसे? भाई ये भी तो सवाल उठता है, चलिए हम बताते हैं। दरअसल पुराना कमिटमेंट है ये, गाना जरूर नया है लेकिन कमिटमेंट इनका पुराना है। सो मैनेजर ने बताया कि ये गाना अरिजीत के जरिए रिटायरमेंट की घोषणा करने से पहले ही तय और रिकॉर्ड किया जा चुका था। सो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट्स का ये हिस्सा है, यानी बाद में ऐसा कुछ नहीं किया अरिजीत ने कि वापसी कर ली हो और रिटायरमेंट जो है वापस ले ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरिजीत ने मना कर दिया, रिटायरमेंट ले ली मतलब ले ली। और ये जो आवारापन 2 का गाना आप सुन रहे हैं टाइटल ट्रैक अरिजीत की वॉइस में, वो दरअसल इसलिए है क्योंकि ये कमिटमेंट पहले ही की जा चुकी थी। सो फिलहाल अब बात आती है कि ये सॉन्ग कौन सा है, अभी आपने शायद ना सुना हो, तो चलिए अगर नहीं भी सुना तो भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको सुना देता हूँ अरिजीत की वॉइस में आवारापन 2 का आया ये टाइटल ट्रैक। आई होप कि आपको पसंद आएगा, जरा सुनिए और फिर बताइए आपको कैसा लग रहा है।

0: आवारापन,
1: ये आवारापन। सो भाई ये जो सॉन्ग गाया गया है ये अरिजीत की चुकी वॉइस में है, और बात ये भी आई थी कि अरिजीत ने रिटायरमेंट ले लिया, ऑफ कोर्स ले लिया है और वापसी भी नहीं की है, चूंकि ये पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका गाना है और पहले ही इसका कमिटमेंट किया जा चुका था, तो बस ये गाना रिलीज अब हुआ है। सो आई होप कि अब आप भी जान गए होंगे कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, इतनी हड़बड़ी की कोई फिलहाल बात नहीं है, और बात बहुत ही सीधी सी है, चूंकि ये गाना पहले ही बताया जा चुका था, इस वजह से अब इस गाने को आप लोगों ने सुन लिया। फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का और आपको सुनाने का नेक्स्ट सॉन्ग, साथ ही साथ आपको ये भी बताने का कि भैया अभी फिलहाल के लिए हम कहीं ना कहीं एक कंटेंट को लेने वाले हैं जो कि हमारे पास में आ चुका है। सो ये कंटेंट आपकी ही तरफ से आते हैं और जाहिर है कि भैया ये हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सो कंटेंट में क्या है और बाद में कौन कौन लोग हैं जो आ चुके हैं चैट बॉक्स पर, ये भी हम आपको बताने वाले, लेकिन उससे पहले आइए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद इस पर चर्चा करते हैं कि भाई आज आपकी तरफ से क्या आया है और किसने भेजा है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

ये सॉन्ग तो भाई मस्त कर देता है। सो फिलहाल इसी कड़ी में अब हम चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, और किन किन हमारे श्रोताओं के मैसेजेस आगे हैं जो कि चैट बॉक्स यानी सुन रहे हैं 89.6 एफएम को उसकी एप्लीकेशन से और चैट पर लिख भेजा है। सो हम बता दें बहुत सारे मैसेजेस में हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद किसका मैसेज आया है और क्या लिखा है। सविता दुबे जी ने सुप्रभात मित्रों लिखा है, सुप्रभात आपको भी। इसके बाद जो है नेक्स्ट मैसेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स नेक्स्ट मैसेज जो आया है वो नायला अंसारी का आया है, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू। मुस्तफ़ा सऊदी का आया है, गुड मॉर्निंग टू यू। अनोखी का आया है, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड साथ ही साथ धर्मेंद्र जी लिखते हैं, सर जी गाने में शब्द सही है लेकिन आवारापन शब्द नहीं सही है। दरअसल मुझे लगता है धर्मेंद्र जी की हर शब्द के मायने अपने हिसाब से आप अपने निकाल सकते हैं। आवारापन किसी को लगेगा आवारा नाकारा, लेकिन आवारापन हो सकता है किसी के लिए आज़ादी हो और हर बंधनों से मुक्त हो सकता है। प्रीति जी लिखती हैं 59 वुमेन्स की रियल स्टोरी, वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच कि आपको बहुत पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब फिलहाल आपको ले चलते हैं प्रीति जी के कंटेंट की तरफ जो कि भेजती हैं बहराइच से अपने गोंडा एफएम पर। सो लिखती हैं आप सुंदर सपना घर अपना, क्या लिखती हैं, अरमा यही था होता एक घर अपना, हंसी खुमार भरा जन्नत सा घर अपना, ज्यादा कुछ पाने की चाह नहीं थी, जो मिल जाता उसी में हम खुश होके झूम जाते, घबरा जाता मन जब हमें अपने ही घरों में बंदी जैसे कैद करते अपने ही, और जबरन जिम्मेदारियों का बोझ थोप देते, कई बार कैद से बाहर निकली भी और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया, लेकिन फिर समाज के डर से अपनों की खुशियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर पुनः कैद हो गई अपने घर के पिंजड़े में। उफ क्या बात है। जो भी थॉट ऑफ द डे होता है उससे जुड़ी आपकी बात, उससे जुड़े आपके इमोशंस आप जाहिर करते हैं वो भी अपने शब्दों से, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने न सिर्फ लिखा बल्कि हम तक पहुंचाया भी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। वैसे आज का मंडे स्पेशल शो कैसा रहा चैट बॉक्स पर आकर के आप बता सकते हैं। और जाते जाते ये सॉन्ग आपके लिए, मिलते हैं ना कल ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर के एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं। इस बार का एपिसोड हमारा मनकापुर से संबंधित है। उसमें बहुत सारे मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उनका साथ दे रही है जिमी, श्वेता, हरिओम। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे भाई, सब तैयार हो? जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। अरे मनकापुर चलना है।
1: पर किरण दी कहाँ है? उनका तो कुछ पता ही नहीं है और जिम्मी भी अभी तक नहीं आई है, क्या करें?
0: अरे किरण दी को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है, चलना है कि नहीं। कही थी 10 बजे तक निकल लेना और 11 बज रहे हैं, अभी तक उनका पता ही नहीं।
1: अरे बाबा, लगा रही हूँ फोन।
2: हाँ श्वेता, बस आ रही हूँ। मैं ना रात ही में अपने मायके चली आई थी, बस आ रही हूँ, तुम लोग तैयार मिलो।
3: किरण दीदी अपने नैहरे गई हैं, देखो कितनी देर में आवती।

0: चलो दीदी, बहुत देर होती है, हमका लौटे के समझाता।
1: किरण दी, आपको पता है कि गांव निकलना है, फिर भी इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप?
2: अरे देर हो गई, पर चलो जल्दी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है, रामनिवास को एक कप चाय पिला दो, बहुत ठंडी है।
3: देखो कुछ भी हो जाए, पर हम लोग अपने गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कितना मजा आता है जब गांव में बगीचे में चारपाई डालकर हम लोग आराम से धूप सेकते हैं।
1: हाँ सच में श्वेता दी, ना कोई प्रदूषण ना कोई शोरगुल, कितना सुकून मिलता है ना गांव में। किरण दी आइए, हम लोग गाड़ी में बैठ गए।
2: अरे आज मैं साड़ी पहनकर चल रही हूँ, मेरी सास जू आ रही है, पर ये पेटीकोट में गांठ लग गई जो खुली नहीं रही। जिम्मी जरा तुम ही देखो।
1: देखती हूँ दी, एक मिनट।

0: अरे भाई मेरी सांस बहुत तेज है, जरा बच के रहना, और बड़ी फैशन में रहती हैं।
1: हम लोग चाची को खूब सजा देंगे।
2: अरे नहीं संता दी, वो खुद ही इतनी सजी संवरी रहेंगी। मैं एक बार उनसे मिली हूँ, बहुत तेज हैं वो।
3: राम निवास भैया, जरा यही गाड़ी रोकिए, अमरूद बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ले लूं चाची के लिए।
4: अच्छा दीदी, रोकता हूँ।
1: आ गए हम लोग। किरण दी, आपके सासू जी कहाँ हैं?
0: वो रही धूप में बैठी हैं चारपाई पर, जो सबसे ज्यादा सजी धजी है, लाल साड़ी में, वही हमारी सासू जी हैं।

0: अच्छा, दिखने में ही बड़ी तेज लग रही है।
1: चलो चलो आओ, सब लोग चाची जी को राम राम कहते हैं भाई। चाची जी राम राम।
2: चाची राम राम।
3: राम राम बहनी, के हो तुहरे लोग?
4: चाची, हम सभी आपके पतोहिया के साथ थे, मैं काम करी थे।
3: अच्छा अच्छा, आओ बहनी, बैठा बैठा सभी। हे दुल्हन।

0: गांव में आज भी कितना अच्छा लगता है। मैं तो कहीं भी रहूंगी पर अपने गांव बराबर आती रहूंगी।
1: अरे किरण दीदी है ना हम लोग को गांव-गांव घुमाने के लिए।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, चाहे जहाँ रहो पर अपने गांव अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ी रहो।
3: जब अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी रहोगी तो अपने माता पिता सास ससुर या पूरे परिवार से जुड़ी रहोगी और यही होना चाहिए।
1: बिल्कुल, अब देखो किरण दीदी के पड़ोस वाली अम्मा कहा बना कर लाई हैं हम लोग के लिए, वो भी एकदम गर्मा गर्म।
0: गांव में यही तो अच्छा लगता है, कितना प्रेम है एक दूसरे से। अरे वो देखो चाची अलाव जला रही हैं। अरे ठंडी भी तो बहुत पड़ रही है।
3: चलो चलो तापते हैं और यही बैठकर चाची जी के साथ खाना भी खाते हैं।
1: वाह, सरसों का साग और जनरी की रोटी। अरे भाई मक्के की रोटी, मजा आ गया खाने में।

0: अरे तुम लोगों ने खाना खाया? ये खाना हमारी बड़की अम्मा ने बनाया है।
1: पर किरण दी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या हुआ, भैया से कुछ कहा सुनी कर ली क्या?
0: अरे समता, ये जरा जल्दी ही नाराज हो जाते हैं।
2: अरे कोई बात नहीं, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है।
3: कोई बात नहीं, आप जाकर भैया जी को मना लीजिए, रूठना मनाना तो लगा ही रहता है।
0: अरे भाई, ये इनकी आदत है रोज रोज नाराज होने की, तनिक सी बात पर बस गुस्सा हो जाते हैं। अरे तो हार

0: अरे किरण दी, जाने दीजिए, भैया की बात को इतना दिल से न लगाइए। चलिए चलिए खाना खा लीजिए।
1: खाने में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, खूब लड़िए और जमकर खाना खाइए। क्यों समता दीदी?
2: भाई गांव में अभी भी बड़ों का सम्मान, प्यार और दुलार है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब देखो हम लोग आए तो किरण दी की बड़की अम्मा खाना बना कर ले आई ना, कितना अच्छा लगता है। ये प्यार देखकर कोई बाहर से आया तो पूरा परिवार आकर स्वागत में खड़ा हो जाता है।
3: हाँ ये बात तो है, गांव में अपनापन है, इसीलिए कहती हूँ कहीं भी रहो पर अपना गांव, अपना घर, अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहना चाहिए।
0: और हाँ, अपने लोगों से आप तभी जुड़ कर रह पाओगे जब आप उनके बीच आते जाते रहोगे। और देखो कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, पर किरण दी हम लोगों को गांव की सैर करवा ही देती हैं।
3: बहनी सभी जाती हो का? अरे तनी यहाँ सब यहाँ जाओ, ई लौकी होए, ई कद्दू होए, आओ ई बड़के झोलवा में ना साग होए, हमारे खेतवा खोए दादा। और सुनो, सरसों के साग है और बथुआ के साग है और मुरई है बहनी, सभे आपस में थोड़े थोड़े बांट ली हो।
1: अच्छा चाची ले लियो बहन।
0: राम निवास भैया कहाँ है? चलिए
2: किरण दी कहाँ है? चलिए राम निवास भैया, ये बोरी और ये झूला गाड़ी में रख लीजिए।
0: सब लोग गाड़ी में बैठिए, मैं देखती हूँ किरण दी कहाँ है। किरण दी कहाँ है आप? अरे चलिए वरना रात हो जाएगी। अरे ये क्या फिर नाराजगी, अभी भी आप भैया से नाराज हैं?
3: चलो चलो चलते हैं, ये झगड़ा हमारा और इनका हमेशा रहेगा। और इनको जब किसी भी बात की सनक सवार हो जाती है तब ये किसी की नहीं सुनते।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: बहुत टफ पेपर था यार, पता नहीं क्या होगा मेरे रिजल्ट का।
1: पेपर तो एकदम इजी था, अपना रिजल्ट तो सेट है।
0: एक्सक्यूज मी, ऐसा क्यों?
1: कॉज ऑफ करियर पार, आ यूनिट ऑफ अड्डा 24/7, जहां होती है SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPPSC, CUET, यूपी पुलिस और अन्य राज्य परीक्षाओं की तैयारी।
0: तो क्या ये अपने गोंडा में भी?
1: जी हाँ, अब अपने शहर में भी आ गया है करियर पार, आ यूनिट ऑफ अड्डा 24/7, जिन्होंने किया है लाखों बच्चों के सपनों को सच। अब आप भी विजिट करें करियर पार, ITI चौराहा नियर LBS डिग्री कॉलेज गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91-98-300-345, 9198-300-345। अब बारी है आपके जुड़ने की और अपने सपनों को सच करने की।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घड़ी में वक्त हो चला है 12:17 बाय स्टूडियो क्लॉक, और टाइम होता है आपके अपने आज के वेंसडे स्पेशल शो स्वास्थ्य संगनी का। तो आप सभी लिसनर्स का हम स्वागत करते हैं स्वास्थ्य संगनी प्रेजेंट सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े कई पहलुओं और बातचीत करते हैं। और आज उनमें से ही हम एक पहलू पर बात करने वाले हैं, जिस पर होंगी किडनी स्टोन के बारे में चर्चा। किडनी स्टोन, जिसे आए दिन बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मैं आपको बता दें भाई, जो किडनी स्टोन होती है ना, उसमें से मतलब लगभग 10 में से एक व्यक्ति अपने पूरे ज़िंदगी में कभी ना कभी गुर्दे की पथरी और उसके दर्द से परेशान होता है। हालांकि मुझे कभी ये दर्द हुआ नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, जिस तरह से मैंने लोगों को तड़पते देखा है, ज़मीन पर लोटपोट होते देखा है दर्द में, बस यही सोच रहे होते हैं वो कि या तो इस दर्द को कोई शांत कर दे, या फिर भाई मुझे इससे राहत मिल जाए, किसी भी तरह से बस राहत मिल जाए। हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, चल फिरने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना, रोना, गाना। एंड ऑफकोर्स वो दर्द शायद कोई भी महसूस करना नहीं चाहता है, लेकिन लेकिन लेकिन पड़ जाती है। ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ ऐसे कारनामे आए दिन किया करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ जाता है। गुर्दे की पथरी, इसके कई कारण होते हैं, लक्षण भी होते हैं, सिम्टम्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम्स मिल ही नहीं रहे होते हैं कि आपको कहीं छोटा सा भी स्टोन है, क्योंकि जो आपके किडनी का स्टोन होता है वो एक रेत के कण से लेकर एक गोल्फ की जो बॉल होती है उसके बराबर तक हो सकता है, या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। अब जब ये छोटी सी होती है तो आपके पेशाब की नली से बाहर निकल जाना बहुत आम सी बात हो जाती है, बट जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है और ये नहीं निकल पाती, फिर ये कहीं जाकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा दर्द देती है, जिससे आपको गुजरना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कब आपको चाहिए कि आप अपनी किडनी का जाकर बढ़िया से KFT करवाएं, या अपनी किडनी चेक करवाएं। किडनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है भाई, KFT कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी किडनी में या फिर आपके यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको यूरिन में कहीं भी बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, या फिर आपके यूरिन का कलर कुछ नॉर्मल नहीं है, तो आपको KFT कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम इस पर बात करते भी रहते हैं कि KFT क्या होता है, बट आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन के बारे में, इसके कारण, लक्षण, इसके उपचार क्या होने वाले, यानी कि इसकी दवाइयाँ किस तरह से आपके ऊपर काम करती हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से ये बाहर निकल सकती है, अगर पानी पीना है तो कितना पीना है, सारी बातों को आज हम जानेंगे आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, और ज़रूर बताइएगा कि भाई आपने तो आज अच्छा खासा 2-3 लीटर पानी पी लिया है, मतलब 2-3 ग्लास पानी पी लिया है कि नहीं पिया। अगर नहीं पिया है तो जब तक हम एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक लेते हैं, तब तक आप पानी पीकर आइए और अपनी किडनी को ऐसे ही भैया हंसते खेलते स्वस्थ बनाकर रखिए, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम जब होती है तो भाई पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और वो तकलीफ असहनी होती है, झेलने की ताकत तो उसको नहीं होती। तो भाई जाओ पानी पीकर आओ, भले ही बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन आपके अंदर बारिश होना, यानी कि पानी की बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ग्लास पानी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के दौरान आप पीकर आइए, तब तक हम लेते हैं आपसे इस गाने से छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और ये प्यारा सा गाना आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के आज का बहुत ही वाला स्पेशल वाला टॉपिक, बहुत ही स्पेशल वाली जानकारी। तो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो वापस लौट आइए क्योंकि वक्त हो गया है फिर से आप सभी के अपने वाले शो ज्ञान असली लाइफ का। आप गए थे पानी पीने, मुझे याद है, इसीलिए हमने आपको वापस बुलाने के लिए इस प्यारे से गाने को लगाया था। तो अगर आप वापस आ चुके हैं तो जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के स्वास्थ्य संगनी प्रेजेंट से है सही लाभ के इस प्रोग्राम में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर शे उन्नति, आपके साथ मौजूद हूँ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के आज का बेहद ही स्पेशल वाला टॉपिक। एंड ऑफकोर्स आपने ट्यून किया है आपका अपना FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और इस धड़कन का ख्याल रखना भैया हमारी है जिम्मेदारी। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे इस धड़कन के किडनी की, ऑफ कोर्स क्योंकि ये किडनी स्टोन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा एकदम कॉमन सी बीमारी हो गई है। आए दिन हर कोई किसी के सुनने को मिल जाता है। मेरे ही घर में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके आसपास मुझे ये सुनने को मिला है कि भाई किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन है। आई वॉज लाइक सबको किडनी स्टोन हो रहा है, भाई ऐसा भी क्या हो गया है आजकल कि हर किसी को किडनी स्टोन हो रहा है। मेरे घर में ही दो तीन लोगों को है, मेरे रिलेटिव्स में लोगों को है, मेरे पड़ोस में लोगों को है, मैं जिस घर में रहकर आई हूँ वहाँ पर है। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, इससे हर कोई परेशान है। और जब भी किसी को किडनी के स्टोन का दर्द उठता है वो दो दिन के लिए तो हॉस्पिटल पहुँच ही जाता है आराम से। अब डॉक्टर्स हमेशा दो चीज़ की सलाह देते हैं, या तो अगर आपकी किडनी स्टोन छोटी है उन्हें लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो वो आपसे कहते हैं आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने डाइट का ख्याल रखिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, पानी बहुत सारा पीजिए और कुछ ये मेडिसिन हम आपको देते हैं इसको खाइए और ऑफ कोर्स आपकी किडनी आपके पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। बट वहीं पर कुछ किडनी स्टोन्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि डॉक्टर्स भैया हाथ खड़े कर देते हैं और कह देते हैं कि अगर आपको बचना है इस दर्द से और अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो भाई आपको करानी पड़ेगी सर्जरी। और सर्जरी का नाम सुनते ही 50% ऑफ जनता यानी कि भारतीय जनता वो पहले ही डर जाती है कि भाई सर्जरी में कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, हम किडनी का सर्जरी कराने जा रहे हैं पता चले हमारी कुछ और ही गायब हो जाए। तो इस तरह के ख्याल भी लोगों के दिमाग में आते हैं। बट जो दिमाग में नहीं आता है वो ये नहीं आता है कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे किडनी में स्टोन हो ही ना। अब देखो ये बात की तो 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खाना पीना भी अच्छा ले रहे हैं, आप दिन में 6 लीटर 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन कभी हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, बाहर का बहुत कम खा रहे हैं, आपको पता है कि क्या चीज़ खाने से कहाँ पर जाके नुकसान होता है, यानी कि अगर पालक और टमाटर को मिक्स करेंगे तो कहाँ पर जाकर ये स्टोन बनाने वाला है, तब आप कहीं ना कहीं 90% खुद को इन बीमारियों से बचा लेते हैं, इन तरह के दर्द से बचा लेते हैं। तो आज उन चीज़ों को जानते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं कि आपको सर्जरी तक की नौबत ही ना आए। तो भाई गुर्दे की पथरी एक क्रिस्टल के समूह होते हैं जो आपके यूरिन, आपका जो पेशाब की नली होती है, आपका जो मूत्र मार्ग होता है उसके खनिजों या फिर अन्य पदार्थों से बने होते हैं। ज़्यादातर पथरी आपके पेशाब के साथ ही आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब ये बाहर नहीं निकलती है तो बहुत ज़्यादा वाला दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। अगर पथरी अपने आप बाहर नहीं निकल पा रही है या रुकावट पैदा करती है, तब उसे तोड़ने के लिए या तो भाई आपको दवा दे दी है डॉक्टर्स या फिर आपकी सर्जरी करवानी पड़ जाती है। तो इसके कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे प्रोसेस होते हैं, बट आपको उन प्रोसेस से बचना भी तो है। अब हमेशा थोड़ी ना है कि भैया हमें सर्जरी ही करवानी है, अब हमारा तो हो गया, हमें तो किडनी स्टोन हो गया, हमको तो पता चल गया है, बट पता कैसे चला ये भी तो जानने वाली बात है। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भाई ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनका सिम्टम्स आपको कभी मिलता ही नहीं है। पिछली बार जब हम संडे में बात कर रहे थे तो हमको पता चला था कि भाई जब किडनी फेलियर होता है तो भी कई बार हमें सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। जब तक हमको सिम्टम्स मिलते हैं कि हमारी एक किडनी फेल हो चुकी है, तब तक वक्त पता चलता है कि हमारी दूसरी भी हो चुकी है और हमको सिम्टम्स मिल ही नहीं रहे थे। तो इसके पीछे भी कई सारे रीज़न होते हैं। तो इसीलिए भैया गुर्दे की जो पथरी होती है ना, वो एक ठोस द्रव्यमान या क्रिस्टल की तरह होती है जो गुर्दे के पदार्थों जैसे खनिज, एसिड या लवण से बनती हैं। वे रेत के दाने जितने छोटे हो सकते हैं या फिर कभी कभी गोल्फ की गेंदों से बड़े भी हो सकते हैं। अब गोल्फ की गेंद अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि गोल्फ की गेंद मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ी है। अगर आपके बॉडी के अंदर वो इतनी बड़ी गेंद है और उससे बड़ी भी हो सकती है भाई, तो कितना ज़्यादा दर्द आपको झेलना पड़ सकता है ये आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने गोल्फ की गेंद कभी भी कहीं भी किसी भी मूवी में देखी होगी। गुर्दे की पथरी को रेनल कैलकुली या कैलकुली भी कहा जाता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं।
आपके गुर्दे की पथरी, या फिर जिसको हम कई कबार, पहले मुझे बचपन में लगता था कि गुर्दे की पथरी यानी कि गुर्दे के अंदर पत्थर, और पत्थर का साइज होता होगा बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने रेलवे स्टोर जब रेलवे पर गई थी, रेलवे लाइन पर जब मैं पत्थर देखती थी मुझे वही नज़र आते थे। बट ऐसा नहीं होता है भाई। जब मैंने रियल एक बार देखा था, एक बार ऑपरेशन हो रहा था और डॉक्टर ने उसको निकाल के एक वीडियो बनाया था, और मुझे कहीं से तो वो वीडियो मिल गई थी, और मैंने देखा था, मुझे लगा था कि नहीं कुछ तो अलग है, कुछ अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। इसीलिए गुर्दे की पथरी को कई लोग पत्थरों भी कहते हैं कि आकार के आधार पर आपको शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि आपके पास एक छोटा सा पथरी है या नहीं है। छोटी पथरी जो होती है वो आपके टॉयलेट के जरिए, आप जब यूरिनेट करने जाते हैं तब उसके जरिए बिना किसी लक्षण के आपके पेशाब से बाहर निकल जाती है। बड़े जो बड़े गुर्दे की पथरी होती है वो नहीं निकल पाती है, वो वहीं पर अटक जाती है, फंस जाती है। इससे पेशाब वापस आ सकता है और आपके गुर्दे, आपके शरीर का जितनी भी गंदगी है वो आपकी जो किडनी होती है उसको छानने में, उसको डिटॉक्स करने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर कभी कभार ये होता है कि भाई वो उसके लिए कर ही नहीं पाती, उतना काम ही नहीं कर पाती है। और उसके बाद क्योंकि आपके पेशाब से वो इतनी बड़ी गुर्दे की पथरी बाहर नहीं निकली है तो उसका दर्द होना लाजमी होता है। गुर्दे की पथरी को आपने अपने आप निकलने में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का समय लग जाता है। यहाँ तक कि कुछ छोटी पथरी जो होती है वो मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर के बाहर निकलते समय बहुत ज़्यादा दर्द दे सकती है। आपके ऐसे पथरी को तोड़ के निकालने के लिए कई बार डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कभी यह लगता है कि आप सिर्फ यूरिन करने गए हैं, आप टॉयलेट करने गए हैं और आपके बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, वो दर्द जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके किडनी में छोटा सा स्टोन हो जो आपके टॉयलेट के जरिए अभी अभी बाहर निकल कर गया हो, जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा दर्द हुआ है। अगर आपकी बॉडी में कोई और इन्फेक्शन नहीं है, तो अगर कोई और इन्फेक्शन है जैसे आपको यूटीआई है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो चुका है आपके ब्लैडर के अंदर, तो भाई अलग बात है, उसका दर्द होना अलग ही चीज़ होती है, वो लाजमी होता है। बट आपको करना क्या है, अगर आपके दर्द हो रहा है तो भाई आपको जाना है डॉक्टर्स के पास, अपना जाँच करवाना है कि हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हमको किडनी स्टोन तो नहीं है, क्या चीज़ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट में दर्द तो होता है, हमको समझ में तो आ रहा होता है कि ये दर्द बहुत ज़्यादा है, इसको हम सहन नहीं कर सकते, बट हम क्या करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं और हमारा काम हो जाता है कि भैया पेन किलर खा लिए हैं, अब हो ही जाएगा, अब क्या ही करना है इसको खा के, अब हम ठीक हैं। तो ऐसा होता है किडनी के साथ भी, यानी कि किडनी स्टोन हो सकता है कि आपको 2 दिन बहुत ज़्यादा दर्द दे, फिर 3रे दिन बिल्कुल दर्द ना दे, 1 हफ्ते तक आपका दर्द एकदम नॉर्मल रहे, फिर 2रे दिन दोबारा से दर्द शुरू हो जाए। तो ये जो किस्से कहानियाँ आपके साथ चलती रहती है ना, ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। आपको 1 महीने कोई दर्द नहीं होगी, फिर अचानक से बहुत तेज़ दर्द होगा, फिर आपको 1 महीने कोई दर्द नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन किलर खा लें और अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करें कि भाई पेट का दर्द है, हो सकता है ये दर्द इसकी वजह से हो रहा है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। अगर आपको बार बार ये गैस की प्रॉब्लम भी हो रही है तो भी आपको जाके चेक कराने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये सब झेलने की ज़रूरत पड़ रही है। बट फिर भी अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर किडनी स्टोन हो गया है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, तो भाई हम आपको बता दें, जब किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके भी कई तरह के लक्षण होते हैं। एक तो भाई तेज़ दर्द तो होता ही होता है, यानी कि आपके पीठ के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा ही बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं जो आपको ये पहचानने में मदद करते हैं कि आपकी किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं है, आपके गुर्दे के अंदर कोई पथरी तो नहीं बन रही है जिसको आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो या फिर ज़रूरत हो उसकी सर्जरी की। तो वो सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि पेशाब करते समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको जलन होती है यानी कि बर्निंग सेंसेशन आपको फील होती है, बुखार भी आता है, आपको ठंड लगती है, आपको उल्टी

ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपके किडनी में कहीं ना कहीं स्टोन है। वैसे हम आपको बता दें कि अगर आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कई बार ये सिम्टम्स इन्फेक्शन के भी होते हैं। बट दोनों केसेस में आपको डॉक्टर्स के पास जाकर अपना टेस्ट करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि भाई आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैंने कहा था ना पिछली बार, जब भी मैं बायोलॉजी पढ़ने बैठती थी, किसी बीमारी के बारे में पढ़ने बैठती थी, तो मुझे लगता था कि हर बीमारी का सेम ही सिम्टम्स हैं, और सेम सिम्टम्स के चक्कर में कई बार हमें ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है, हम समझ कुछ और लेते हैं और वो इतनी सीरियस नहीं होती है। बट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई ये तो बहुत सीरियस था और हमने बहुत लेट कर दिया है आते आते। तो अगर आपको कभी भी आपको बार बार यूरिनेट करने का मन करे, आपको पेशाब बहुत कम आ रही हो, आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, आपकी पसलियों के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है यानी कि खून आ रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाके दिखाना चाहिए कि कहीं ये किडनी स्टोन है, यूटीआई है, या फिर किसी और तरह का इन्फेक्शन आपके बॉडी में बन चुका है। तो भाई ये सिम्टम्स और इन चीज़ों का रखिए ख्याल, और लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, हम आपको बताते हैं कि भाई गुर्दे की पथरी को पता लगाने के लिए डॉक्टर्स आपके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, और इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, आपको क्या कुछ अपने खाने में खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर आपको किडनी स्टोन है तो किस चीज़ को अवॉइड करना है। वैसे डॉक्टर्स आपको बताते ही हैं, बट एक बार फिर भी मैं आपको रिमाइंडर ज़रूर देने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। और अगर अभी तक आपको किडनी स्टोन नहीं हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे ना हो इसके लिए आपको क्या कुछ करना है। तो बने रहिए मेरे साथ स्वास्थ्य संगिनी में, लेते छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, करते हैं आपसे बहुत सारी बातें, तब तक के लिए चैट बॉक्स में आप अपनी बातें मुझसे, आप अपने थॉट्स ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको भाई अपने बारे में कुछ बताना है, या फिर आपने कभी इस किडनी के दर्द को महसूस किया है, आपने कभी सर्जरी या फिर इस तरह की कोई भी टेस्ट करवाए हैं, तो मुझे कॉल करके ज़रूर से बताइएगा। मेरा कॉलिंग नंबर है 6393316429, यानी कि 6393316429। इस पर कॉल कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपकी कहानी एक्चुअली क्या रही थी किडनी स्टोन को लेकर, क्या आपको कभी ये पेन फील हुआ है, क्या आपको कभी ऐसे सिम्टम्स आए हैं और इस सिम्टम्स को चेक करवाने के बाद पता चला कि किडनी स्टोन नहीं, कुछ और ही प्रॉब्लम है। एंड इसी के साथ इस गाने को इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

ना ना, अब चोर नहीं बल्कि कैमरा बचाएगा शोर। जी हाँ, हाई क्वालिटी डिजिटल आईपी सीसीटीवी कैमरा और 5000 से ज्यादा खुश ग्राहकों के भरोसे के साथ सविता सिक्योरिटी सिस्टम आपको दे रहे हैं सुरक्षा की गारंटी। अब 4 कैमरे का सेटअप सिर्फ 9499 से शुरू। यहाँ आपके लिए सीसीटीवी कैमरा, स्कूल बस कैमरा, जीपीएस बायोमेट्रिक मशीन, सॉफ्टवेयर और बहुत कुछ। साथ ही पुराने कस्टमर्स के लिए सर्विस में 50% की विशेष छूट का फायदा। आज ही विजिट करें। हमारा पता है, 3rd फ्लोर अवध कॉम्प्लेक्स, पुरानी हनुमान।

हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगनी प्रेजेंट सेहत सही लाभ के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजे उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ अपने वाले स्टूडियो में लेकर के आज का बहुत ही ज्यादा स्पेशल वाला टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स आपने ट्यून किया है आपका अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की। भाई किडनी स्टोन क्या होता है ये हमने समझ लिया, किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया, बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई किडनी स्टोन एक्चुअली हो क्यों जाता है? मतलब ऐसी हमारी कौन सी हरकतें हैं जो हम कर रहे हैं आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। तो अगर आपने नहीं सोचा है तो हम आपको बता दें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा ही था कि इस ब्रेक पे जाने से पहले आप पानी पी के आइएगा। अगर आपने नहीं पिया है तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भाई आप पानी नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते भाई? पानी की कमी हो रही है क्या? घर में पानी नहीं।

रहा है या फिर पानी के ग्लास खत्म हो चुके हैं। अगर नहीं हुआ है, पानी खत्म नहीं हुआ है, घर में अच्छा खासा पानी आ रहा है, तो भाई पानी पीना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, आवश्यकता से बहुत कम पानी को अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं, अपने गले के नीचे उतार रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको किडनी स्टोन होने के 90% चांसेस तो यहीं से हो जाते हैं। अगर आपका वज़न यानी कि आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, पिछली बार हमने कहा था कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है तो आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, क्योंकि हमारे गॉल ब्लैडर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होती रहती हैं। अगर हम क्रैश डाइट पे जाते हैं तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट अगर किडनी स्टोन के लिए, अगर आपका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, आपका वज़न हर दिन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये दूसरा कारण होता है आपके किडनी स्टोन होने का। तीसरा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। आई नो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम वाले भैया रोज़ आके गेट पर चिल्लाते हैं, हमारे जब भी फीड पर आते हैं चिल्लाते रहते हैं कि भाई प्रोटीन लो प्रोटीन लो प्रोटीन लो प्रोटीन लो। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही आपको नहीं है, तो मुबारक हो, आपको किडनी स्टोन होने के और भी कई चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि पानी कम पीना, आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना और आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं जितनी शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर इतनी सारी प्रोटीन लेने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि आप फिट फाइन हेल्थी वेल्थी रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई साहब, क्योंकि हमारी किडनी बहुत काम करती है और किडनी को काम पर लगाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो किडनी के लिए आप प्रोटीन लीजिए, आप अपनी बॉडी बनाइए, मसल्स गेन कीजिए, आप प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत कम है इंडियन की डाइट में, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो ये आपके किडनी स्टोन की सबसे बड़ी चांसेस बन जाते हैं, यानी कि किडनी में स्टोन बनने के सबसे बड़े चांसेस में से एक ये भी आता है कि आप हद से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर किडनी स्टोन का आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है, भैया मैं तो आए दिन कहती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखने को मिलता है, हर दिन नया जानने को मिलता है, और जानने को जब मुझे मिलता है तो मैं यही सोचती हूँ कि आजकल हर बीमारी जेनेटिक्स हो रही है। अगर मेरे घर में किसी को कैंसर है तो उसके भी चांसेस बढ़ रहे हैं, मेरे घर में किसी को डायबिटिक है तो उसके भी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अब लीजिए भाई, अगर आपके घर में किसी को किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है तो इसके चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो भाई इसको बच के रहिएगा ज़रा, अगर आपके घर में किसी को किडनी स्टोन है तो ज़रा कुछ चीज़ों को दूर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, यानी कि बहुत कम पानी पीना इसको ख़त्म कर दीजिए, पानी अच्छा खासा पिया करें, और ऑफ कोर्स वज़न भी अपना ख्याल रखें हमेशा। कपड़ों में फ़िट आना ही ज़रूरी नहीं होता है कि भाई हम कपड़ों में फ़िट आ रहे हैं तब तक हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपका वज़न बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, आप पिछले महीने तक सिर्फ 60 के थे और आप एक ही महीने में 10 किलो आपने गेन कर लिया है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो ये भी किडनी स्टोन बनने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। हम आपको बता दें कि अगर आपकी बॉडी में शुगर या सोडियम बहुत ज़्यादा आप लेते हैं तो भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कैल्शियम की दवा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैल्शियम की दवा खाना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स 30 साल की उम्र के बाद कैल्शियम की दवा हर किसी को खानी चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भाई ये तो एक रीज़न हो जाता है आपकी किडनी स्टोन का। तो ये सारी वो कारण हैं जो आप आए दिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, कहीं ना कहीं से देख कर, हो सकता है आपने इंटरनेट पर कहीं पढ़ लिया हो कि भाई ये कैल्शियम की दवा तो बड़ी सस्ती आ रही है, हम खा सकते हैं, हमारी तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, और आप उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे ले रहे हैं, आप दवाई भी ले रहे हैं और उतनी आपको शायद ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये किडनी स्टोन तो बनेगा ही। अगर आपने प्रोटीन को बहुत ले रखा है, आपने देख लिया कि जिम वाले भैया आपको रोज़ रोज़ प्रोटीन का बोल रहे हैं और आपने सोचा नहीं भाई अब हो गया हम भी प्रोटीन लेंगे, एंड इसकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी जितनी आप ले रहे हैं, तो फिर आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं, और उस पर आप पानी भी नहीं पी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारे कहीं सेल्स डैमेज ना हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो ऐसा भी बताते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जो कि हालांकि 50% सही और 50% गलत चीज़ है। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपकी किडनी को ज़रूरत है, तो ये सारे कारण होते हैं आपको किडनी स्टोन की तरफ ले जाने के। अब भैया किडनी स्टोन तो आपको हो चुका है और आपको पता करना है कि किडनी स्टोन हुआ कैसे, मतलब हो तो चुका है ना, तो आपको पता करना है कि किडनी स्टोन है या नहीं है, कितनी बड़ी है, तो इसके लिए डॉक्टर साहब से क्या क्या कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका यूरिन टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपका यूरिन टेस्ट की वह प्रक्रिया जिसमें एक स्वास्थ्य सेवा आपके पेशावर जो होते हैं वो आपसे आपका यूरिन मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई उसका थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और मुझसे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में एक्चुअल में किडनी स्टोन बनने जैसा कुछ है या नहीं है। दूसरा आता है आपका ब्लड टेस्ट। भाई मुझे खून निकलवाने से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं पानी वानी टाइम से पिया करती हूँ, क्योंकि पानी पीना

मेरे लिए अच्छा है, मुझे खून नहीं निकलवाना, पता नहीं एक सिरिंज खून में मुझे कहीं चक्कर वक्कर आ गए तो। बट हाँ, अगर आपको खून निकलवाने से डर नहीं लगता है और आपको सिरिंज देखने से डर नहीं लगता है, आपको आदत पड़ चुकी है इन सब की, तो ये एक दूसरा तरीका होता है, रक्त परीक्षण, यानी कि आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं या नहीं है, आपके ब्लड में कितना ज़्यादा यूरिक एसिड है, कितना ज़्यादा कैल्शियम है। ऑफकोर्स अगर ये बहुत ज़्यादा है तब आपको चांसेस हैं, और नहीं है तो उसकी अलग ही बात है। तो फिर डॉक्टर साहब के कंग्रेचुलेशंस, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको दूसरी बीमारी है। बट हाँ, है ज़रूर, क्योंकि आपने सिम्टम्स कुछ ना कुछ तो मैच किए ही होंगे, तभी तो आप डॉक्टर के पास पहुँचे हैं। एंड इसी के साथ होता है कि भाई किडनी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उससे भी पता चल जाता है। इसी के बाद होता है किडनी का सीटी स्कैन और किडनी का एक्सरे। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें होती हैं, यानी कि वो टेस्ट्स होते हैं जिनसे आपके किडनी में कितने स्टोन्स हैं भी या नहीं है, आपके सिम्टम्स जो मैच हो रहे हैं वो किडनी स्टोन के हैं, यूटीआई के हैं, इन्फेक्शन के हैं, किस चीज़ के हैं, ये सारे टेस्ट उन्हें आसानी से बता देते हैं। तो अगर आप में कोई भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में वही हरकतें कर रहे हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया है बोल बोल के, कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप ये हरकतें कर रहे हैं तो ज़रा होशियार हो जाइए, अपने दिमाग को खोलिए, अपनी आँखों को खोलिए, अपने कानों को खोलिए, और ऑफकोर्स जाइए एक बार फिर से पानी पी कर आइए। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम भी पीकर आते हैं। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगिनी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे उन्नति के साथ, और एक ग्लास पानी ऑफकोर्स अभी पीकर आएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के दौरान। मैं मिलती हूँ उस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

जी, गली गली और कली कली, मतलब गली गली एक ही बात चल रही है कि भाई आपको अगर किडनी स्टोन है तो कौन सी वाली है और कौन सी वाले में आपको क्या कुछ नहीं खाना है, ये कौन बताएगा? ऑफ कोर्स हम बताएंगे आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगनी प्रेजेंट सेहत सही लाभ कई में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति। आपने ट्यून किया हुआ है आपका अपना FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन के हमने लक्षण समझ लिए कि भाई सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते हैं। ऑफ कोर्स कई बार सिम्टम्स आते तो है, किडनी स्टोन के लेकर हमको निकलता है यूटीआई है, कई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, पानी कम पीना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर हमारे किडनी स्टोन का कारण बन जाती हैं। लेकिन आपको पता है किडनी स्टोन कोई एक तरह की नहीं होती, किडनी स्टोन में भी कई सारे टाइप्स आते हैं, कई सारे प्रकार आते हैं। एक तो ये होता है कि भाई कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट नाम का एक किडनी स्टोन बनता है। कैल्शियम आधारित पत्थर तब बनते हैं जब आपके उच्च ऑक्सलेट या कम कैल्शियम वाले पदार्थ आप खाते हैं या ऐसे पदार्थ नहीं पीते हैं। हम आपको बता दें कैल्शियम ऑक्सलेट पत्थर गुर्दे की पथरी का सबसे आम प्रकार होता है। अगर आपको आपको किडनी स्टोन है तो उसमें 95% चांसेस ये हो जाएंगे कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

ही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही और लाभ कई। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। जी हां, आपने ट्यून करके रखा हुआ है अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी कि एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण तथा मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना तो सामान्य बात है, क्या ये सही है?
1: देखिए आरजे, परसों के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आज आए, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज़्यादा थकी हुई है महसूस करे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, और यही कारण है कि परसों के बाद भी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी

0: को लगातार कमजोरी रहती थी। वो जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद लेकर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई। वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
1: यानी प्रसव के बाद भी कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
2: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
1: और बच्चे के संदर्भ में?
2: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपनी नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
2: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दें या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
1: यानी प्रसव के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
1: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिला खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती है।
0: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वो सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
1: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है।
0: जी हाँ, हमारे समाज में ये बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वो शिकायत ज्यादा कर रही है।
1: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की भी देखभाल उतनी ही जरूरी है।
1: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
2: बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उभर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
1: यानी ये समय केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
2: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
1: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है?
0: हाँ, ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई कह देता है, हमारे समय में भी ऐसा होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य है, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में तो ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन इससे महिला अपनी समस्या बताना बंद कर सकती है।
1: यानी उसकी बात सुनना भी देखभाल का हिस्सा है।
0: बिल्कुल, अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या वो पहले जैसा महसूस नहीं कर रही है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए।
1: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
2: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
1: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
2: बिल्कुल नहीं, वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना गर्भावस्था का समय
0: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चे की खुशियां मत मनाइए, बल्कि उस माँ का भी पूरा ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया है। उसकी सेहत, उसका आराम, उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
0: परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
1: परिवार क्या कर सकता है?
0: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखें। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उसकी मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात। सेहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IVFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
2: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर दें।
1: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
2: बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
0: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
2: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके कर पाएगी।
1: चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज कतई ना

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
1: आरजे अंशिका।
0: हाँ जी, और हम सभी आ गए हैं फटाफट आपसे रूबरू होने आज के शुभ सोमवार को लेकर के, यानी कि आज है मंडे और मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं लजीज से लजीज बातें, लजीज से लजीज खजाना और साथ ही साथ में बहुत कुछ। तो भाई मुझे लग रहा है कि टाइम टू टाइम हम लोग ऐसे ही अगर दिन ब दिन अगर हम अपने लिसनर्स को खिलाते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे, तो ये जो माहौल है ना वो और भी अच्छा बनता जाएगा। धीरे धीरे जो कॉम्बिनेशन हम सभी के बीच है, अंशिका और मेरे बीच का है, लिसनर्स और हमारे बीच का है, तो वो धीरे धीरे करके ना एक अच्छी वाली बाउंडिंग भी बनती जाएगी। क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल मैम, और बॉन्डिंग बननी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब रोज आप किसी से मिलते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उसकी और आपकी बॉन्डिंग बन ही जाती है।
0: और साथ ही साथ में आज का प्यारा सा सोमवार के दिन, प्यारे से सोमवार के दिन हम इस बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अपने कमर की पेटी को कस करके बैठ चुके हैं अपनी सीट पर, बस भरनी है उड़ान जिसके लिए हम हैं तैयार। तो तैयार होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस रूबरू होना पड़ता है, आपसे इंटरेक्ट होना पड़ता है। तो लीजिए भाई, आपका शो शुरू हो गया है, आपका पसंदीदा शो स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है
2: सुन सहेली विथ आरजे समता एंड
1: आरजे अंशिका
0: एंड साथ ही साथ में इस प्यारे से मौसम में, जो कि सुबह से आज हल्की मॉनसून फिर से आ गया है, प्यारी सी बारिश हो रही है। और मैं बता दूं कि आज हमारे नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में आज है प्रथम सत्र का शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आज हमारे न्यू फ्रेशर्स भी आए थे जिनका वेलकम किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको मोटिवेशन दिया गया, यानी कि उनके कॉलेज का आज पहला दिन। और सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी हो रही थी कि हमारे कॉलेज के नए नए मेहमान आ गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ होता है मेहमानों का जबरदस्त स्वागत, क्योंकि ये है सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज।
0: हाँ,
1: यहाँ

0: तरह वेलकम करते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ लोग फैमिली मेंबर्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि लगता है कि हाँ हमारे परिवार में कुछ नए लोग जुड़ गए।
1: जी हाँ, तो इस प्यारे से मॉनसून में टाइम हो चला है दोपहर का, तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
2: शुभ दोपहरिया।
1: साथ ही साथ में बता दूं कि आज बहुत कोई इंसान प्यारा लग रहा है, मतलब और दिनों के अकॉर्डिंग आज कुछ है इंसान जो ऐसे ही उठ के चले आते हैं। तो आज जो मेरे बगल वाली सीट पे बैठी हुई है आरजी अंशिका, बड़ी अच्छी लग रही है। और काश हम दिखा पाते हैं आपको स्क्रीन में कि अंशिका अच्छी लग रही है आज। तो
0: थैंक यू मैम। मैम मेरी तारीफ कर रही है आज। वाओ,
1: क्यों तुम लोग के दिल में ऐसा खौफ क्यों भरा पड़ा है मुझे समझ में नहीं आता है। आज भी इंट्रोडक्शन के टाइम पर मतलब क्या ही बता दे,
0: मेन बात हो गई थी इंट्रोडक्शन के टाइम।
1: मुझे तो लगा था मेरा नाम ना रिवील हो जाए, बस मैं तो इसीलिए डर रही थी, बट खैर वो लाज रखी हमारे ईश्वर ने और आदान सर ने,
0: बच गए।
1: खैर बच गई, मैं बच गई। मैंने कहा अरे पहला दिन है, डे वन तो ना मतलब ना ही डराओ, बाद में तो फिर बाद में तो मेरा काम है। फिर
0: ऐसा नहीं है मैम, वो जान जाएंगे आपको। फिर पता है आंखों से वही लोग डरते हैं जो आपको जानते नहीं, और जो आपको जानते हैं वो आपकी आंखों से भी नहीं डरेंगे। आंखें डरने की चीज है, इतनी खूबसूरत आंखें हैं, कुछ और करने के लिए हैं, डरने के लिए नहीं है।
1: चलें काम करें,
0: चलें क्योंकि इतनी खूबसूरत आंखों में कोई बसना चाहिए कि किसी को डरना चाहिए? आप बताएं लिसनर्स, दो ऑप्शन है आपके पास,
1: बसना चाहिए या फिर क्या कहते हैं कि वहीं से भागना चाहिए।
0: नहीं मैं तो पहले वाले के साथ
1: बसना चाहिए।
0: मैं तो कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसा हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ हूँ।
1: हाँ मुझे याद है वो,
0: और
1: अच्छे
0: आज
1: से।
0: भी मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ ही हूँ।
1: तो चलें आज की प्यारी सी पोयम शुरू करते हैं जो कि है खाना खजाना से मिली हुई। तो
0: जी
1: तो रास्ता दे।
0: तो चलिए
1: आज हटें थोड़ा सा,
0: आज मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज दो चीजें अच्छी। पहली चीज है कि हमारे नए, जैसे कि मैम ने भी बताया, और दूसरी ये कि आज हम दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको मन करता है आज तैयार होके अच्छे से जाएंगे, और ना बाकी दिन तो मूड होता है जैसे हैं वैसे चलो यार।
1: हाँ यार, जैसे मैं सैटरडे को ना बिल्कुल। और पता है ये ऐसा होता है जब हम अच्छे से रेडी होके नहीं आते है ना, तो मूड भी वैसा वाला हो जाता है ना।
0: हालांकि तीन घंटे बीतने तक हम अपने पुराने जोन में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी। तो चलिए आज के लिए कुछ लाइंस बनाते हैं। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, वैसे तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रही हैं, पूछो क्यों। आज कुछ ज्यादा ही लग रही हैं, पूछो क्यों, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये नारी जिसने आज पहनी है साड़ी।
1: ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, वाओ।
0: ये तो अभी दो लाइन थी,
1: अच्छा
0: इसको आगे बढ़ाते
1: अच्छा
0: हैं।
1: और भी है जी।
0: बिल्कुल, तो भाई आज मुस्कान कुछ अलग सी है, आज मुस्कान कुछ अलग सी है क्योंकि दिल में है बेपनाह प्यार। तो चलिए इस प्यार के साथ करते हैं प्यारी सी शुरुआत आपकी अपनी आज इस समता के साथ।
1: वाह वाह वाह, तो इसी खुशी में मैं तुम्हें खिलाऊंगी आज गोलगप्पे।
0: ओ वाह,
1: इसी की खुशी में मैं तुम्हें खिलाऊंगी आज गोलगप्पे, ठीक है। अब हट जाओ उस रास्ते से वरना दूंगी अभी मैं।
0: कोई बात नहीं, हम पूरा कर देते हैं। हट जाओ रास्ते से वरना हो जाएंगे सियापे।
1: सियापे जी जी जी, तो सियापा नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर अभी
0: वैसे भी सियापे का हल निकालने के लिए यहाँ दो दो लोग बैठे हुए हैं।
1: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की पोयम को, उसके बाद हमें सुनना है गाना, क्योंकि बहुत ही ना जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी मन थक जाता है, तो आज मुझे जैसे लग रहा है ना कि मेरा दिमाग थक गया है। तो मुझे ना सुनना है कुछ गाना क्योंकि हो जाए फिर मौसम सुहाना, ताकि मैं
0: बन ना जाए कोई तरह ना।
1: चलो
0: तो चलिए।
1: स्वाद की खुशबू जब भी हवाओं में घुल जाती है, स्वाद की खुशबू जब भी हवाओं में घुल जाती है, भूख तो तब सोई हुई रूह भी जाग जाती है। कढ़ाई में छनती पूरियां और मसालों का वो निखार, सच्चे खाने और शौकीन को बस यही तो भाती है। गोलगप्पे का तीखा पानी हो या गर्मा गर्म चाट, दाल बाटी की थाली हो या बिरयानी की टाट, नहीं बिरयानी की ठाट, हर पकवान में छुपा होता है खुशियों का एक संसार, जायके के सफर में मिल जाता है जिंदगी का हर घाट। डाइनिंग टेबल पर जब सजती हैं तरह तरह की थालियां, चेहरे पर खिल जाती हैं हजारों हंसती हुई कलियां। मीठे का शौक रखने वाले तो बस हलवे पर मरते हैं, चाहत में स्वाद की वे नाप देते हैं शहर की गलियां। खाना सिर्फ पेट भरना नहीं, अंशिका आप इस बात पे ध्यान दें।
0: जी मैम।
1: खाना सिर्फ पेट भरना नहीं, दिल को सुकून दिलाना है, रूठे हुए किसी अपने को मुस्कुराकर मनाना है। जो खाने और खिलाने का सच्चा हुनर रखते हैं यहाँ, उनके लिए हर दिन बस स्वाद का है जमाना।
0: वाह वाह, बहुत ही प्यारी पोएम थी।
1: तो इसमें जो मैंने एक लाइन बोली ना कि आपको उसको ध्यान से सुनना है।
0: हाँ, मैंने सुना।
1: तो खाना होता है वो केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, स्वाद के लिए होता है।
0: स्वाद के लिए
1: तो खाएं, तो स्वाद लेके खाएं।
0: ठीक है, पेट भरने के।
1: तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। नहीं,
0: रियल फैक्ट्स ऑफ
1: लाइफ। रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
0: तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज का जो मैं लेकर के आई हूँ वो ये है कि किसी की बातों पर इतना भी ध्यान मत देना कि वो आपके रास्ते का रोड़ा बन जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सुनकर भूल जानी होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में कई बार चुप जाती हैं। लेकिन आप उन बातों पर कितना ध्यान देते हैं ये आप पर है। अगर आप उनकी बातों पर कम ध्यान देंगे तो वो आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे, और अगर उनकी बातों को सुनकर मन में रखोगे तो धीरे धीरे वो आपके लिए एक जख्म की तरह बन जाता है, और फिर वही आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होता है।
1: Exactly.
0: इसलिए हमेशा उन बातों को सुने जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, उनकी बातों को नहीं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो वही मामला है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो आप पॉजिटिव बने रहें हमारी तरह, और पॉजिटिव रहना ही जिंदगी की सबसे सच्ची खुशी होती है। तो पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल गो टू हेल करके निकाल दें अपनी जिंदगी से, क्योंकि जिसके रहने से नेगेटिव वही थॉट्स आए तो यानी कि वो इंसान हमारे लिए बिल्कुल किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने एंड आपको डिप्रेशन में डालने के लिए ही होते हैं। तो आगे बढ़ें एंड मूव ऑन करें अपनी जिंदगी में, अपने सफर में, और सोच को अपनी बिल्कुल पॉजिटिव रखें।
0: कह दो गो टू हेल, कह दो गो टू हेल, तो हो जाएगा सब कुछ वेल वेल वेल।
1: ओके, वाओ, वेरी नाइस। तो चलिए अंशिका सुनाएं एक गाना फटाफट।
0: तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

लिस्नर्स, सो सॉरी, और कुछ ऐसा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण से आवाज़ नहीं आ रही थी, बट अब कोई नहीं, अब वो सॉल्व हो गया है। आइए सुनते हैं इस पहले से गाने को और उसके बाद हम आते हैं एक प्यारी सी रेसिपी को लेकर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
4: आरजे अंशिका।
3: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की पहली रेसिपी जो कि लेके आई है आपकी आरजे अंशिका।
4: तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसन वाली कुरकुरी भिंडी के साथ दाल वाले पराठे।
3: ओह माय गॉड, क्या अंशिका इस समय इतनी भूख लगी रहती है और तुम एक से एक चीजें खिलाती रहती हो। बस
4: अच्छी बात है ना, मैम खाते रहना चाहिए और साथ में खिलाते।
3: अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ कि आज लिसनर्स को ना हमेशा से हम लोग ना क्या कहते हैं वेजी वेज कुछ खिलाते रहते हैं, तो आज कुछ हम लोग नॉन वेज की तरफ चलते हैं।
4: बिल्कुल
3: ठीक है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारी मास्टर शेफ की रेसिपीज है ना, और उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूँ कि आज वो कुछ नॉन वेज में बता दें।
4: बिल्कुल मैम, फिर तो मजा ही आ जाएगा।
3: तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मुझे नहीं, लेकिन इनको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि नेक्स्ट मंडे से शुरू हो रहे हैं सावन के क्या कहते हैं कि पांच सोमवार शुरू हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज के दिन अभी ये खाली है, तो आज के दिन जो भी नॉनवेज प्रेमी हैं उनके लिए नॉनवेज हम लोग जरूर से आज बताएंगे।
4: बिल्कुल, तो भाई आज ही का दिन है, मतलब आज ही का मौका है आपके पास, सुने बनाए खाएं और साथ में एंजॉय भी करें,
3: साथ में अंशिका को भी खिलाएं।
4: हाँ बिल्कुल
3: जी।
4: तो चलिए चलते हैं अब हमारी रेसिपी की तरफ। तो बेसन वाली कुरकुरी भिंडी मैं आपको सबसे पहले बनाना बताती हूँ। तो उसके लिए करना ये है आपको कि सबसे पहले भिंडी ले लेनी है 250 ग्राम, 250 ग्राम आपको भिंडी ले लेनी है, और साथ में ले लेना है 3 चम्मच आपको बेसन। चावल का आटा ले लीजिएगा 1 चम्मच। उसके बाद में आपको लेना है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। जो मैंने आपको 4 पाउडर बताए, ये तीनों आपको आधे आधे चम्मच ले लेने हैं। इसके बाद में ले लेना है आपको 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, अजवाइन बहुत थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी डालिएगा, और उसके बाद में आपको नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, और साथ में ले लेना है सरसों का तेल, या अगर आप यूज करते हैं तो रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा। लास्ट में सबसे अच्छी चीज लेनी है और वो है चाट मसाला, जो आपको ले लेना है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच चाट मसाला ले लेना है। ये आपकी कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हो गए कंप्लीट। चलिए अब बनाते हैं
3: जी।
4: सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 250 ग्राम भिंडी लेनी है। देख लेना है कि भिंडी जो होगी वो टाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब मुलायम वाली आपको भिंडी लेनी है, और अच्छे से उसे 3 से 4 पानी आपको साफ कर लेना है, धो लेना है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको कि उसके पतले और लंबे लंबे आपको टुकड़े काट लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि भिंडी में पानी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि भिंडी की सब्जी बनाते वक्त अगर उसमें जरा सा भी पानी होता
3: है ना, तो वो लिप-लिपसी हो जाती है, और पता है उसमें कोई मसाले भी फिर नहीं चढ़ते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। या तो फिर आप उसको फ्राई करके बनाओ, लेकिन अगर फ्राई करने का ऑप्शन नहीं है तो आप उसको अच्छे से पहले पोंछ लो, धुल करके पोंछ लीजिए। और हम लोग तो क्या करते हैं अंशिका, हम लोग ना उसको धुल करके काफी आधे घंटे के लिए 15 से 20 मिनट के लिए उसको छन्नी में रख देते हैं, ताकि उसका पानी पूरा गर जाए, उसके बाद फिर उसको साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं, एंड देन हम लोग उसको बनाते हैं।
4: वाह बहुत ही अच्छी सी मैम ने भी टिप्स बताई कि ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि भिंडी के टुकड़े कर लेने हैं, और टुकड़े करने के बाद में 2 से 3 बड़े चम्मच उसमें आपको बेसन डाल देना है, 1 चम्मच चावल का आटा जैसे मैंने आपको बताया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है सिर्फ कलर के लिए।
3: okay.
4: और उसके बाद में 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब आपने पहले भिंडी को ऐसे डाल मतलब 2 टुकड़ों में काट करके कच्ची ही रखनी है, और उसके ऊपर ये सारे मसाले डाल देने हैं और बेसन भी डाल देना है, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स एंड मैच करके आपको अच्छे से मिला लेना है
3: जी।
4: उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद में आपको इसमें नमक डालना है, और नमक के बाद में 1 छोटा चम्मच बहुत थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि नीड है तो उसमें आप डाल दीजिएगा हल्का सा तेल ऊपर से, अगर नहीं लगता है कि नीड है तो मत डालिएगा। तेल इसलिए डलवाया जाता है ऊपर से या रिफाइंड ऑयल कि अगर उसके बाद आप कढ़ाई में डालेंगे भी ना, और थोड़ा सा पानी अगर रह भी गया होगा आपकी भिंडी में, तो वो भिंडी जो है वो लिसलिसी सी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है कि अब हमें मेन काम करना है, मेन काम करना है कि फटाफट से आपको कढ़ाई चढ़ानी है। कढ़ाई चढ़ा करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा, जैसे कि आपने 250 ग्राम भिंडी ली है तो 100 ग्राम तेल उसमें होना चाहिए, 100 ग्राम तेल डाल दीजिए, और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। जैसे जब हमें कोई चीज फ्राई करनी होती है तो हम कहते हैं ना तेल पहले अच्छे से गर्म हो जाना, वैसे ही करना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में आपको एक एक भिंडी, आप अच्छे से किसी बोल में आपने मिक्स कर लिया है पूरा, अब आपको एक एक भिंडी उठा करके उसमें फ्राई करनी है। यकीन मानिए अगर आपने अच्छे से एक एक भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया ना, तो ये बेसन वाली भिंडी इतनी मतलब क्रिस्पी और इतनी अच्छी बनती है ना कि ओ माय गॉड, मैं आपको बता रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने बनाई
3: और वो भी दाल चावल के साथ खाओ,
4: गॉड,
3: तब तो और ही मजा आ जाए। नहीं,
4: एक ही लाइन याद आ रही है इस वक्त,
5: क्या
4: दिल के अरमा आंसू में बह गए।
3: एग्जैक्टली यार,
4: हम सोच के भी नहीं खा,
3: ज्यादा वाला मन करता है ना कि दाल चावल हो और ये कुरकुरी भिंडी हो, माई गॉड।
4: चलिए फिलहाल बताते हैं आपको, वरना तो फिर कुछ और ही हो जाएगा अभी। तो अब आपने कर लिया, अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताती हूँ जो आपको इसमें लास्ट में करनी
5: जी,
4: जो अभी तक मैंने छुपा हुआ इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं बताया था, जो सिर्फ मैं मेरी भिंडी के साथ करती हूँ। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने पनीर घर पे है तो आपको पनीर ले लेना है, अच्छा सा ले लीजिएगा, और थोड़ा सा बटर ले लीजिएगा
5: जी।
4: पनीर के टुकड़े को कद्दूकस कर दीजिए उस भिंडी के ऊपर, जब वो पूरा फ्राई हो जाए तब, ठीक है, अच्छे से कद्दूकस कर दीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। जब वो बनके रेडी हो जाए, गरम गरम बिल्कुल रहे, तभी आप देखिए पनीर के साथ जब आप वो बटर को खाएंगे ना, उसमें मिला करके, उसमें मिक्स करके, ओ माय गॉड, और उसके साथ दाल वाला पराठा,
3: अब मन बस करता अब है। क्या मतलब, जैसे वो एक लाइन नहीं आती है, चुप कर पगली बस रुलाएगी क्या, हाँ। तो बस यही वाला हाल हो जाता है,
4: नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है।
3: अरे यार क्या ही,
4: चुप
3: मतलब,
4: कर पगली खिलाएगी क्या,
3: खिला कर कहीं मानेगी क्या,
4: वही वाला साउंड यहाँ पे
3: जी।
4: तो चलिए, आपकी क्रिस्पी भिंडी रेडी हो गई है और मैंने आपको छुपे हुए दो इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए हैं कि आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके साथ करना क्या है। जब आपने बटर डाल दिया, उसके बाद आपको भिंडी को आपको तुरंत नहीं खाना है
5: जी।
4: बटर और पनीर डालने के बाद उसे थोड़ी देर यानी कि 5 मिनट के लिए वैसे ही रहने दीजिए और उसके बाद खाइए। देखिए जब बटर मेल्ट हो जाएगा ना, तब आपको असली टेस्ट आएगा। एक बार चला लीजिएगा उसको अच्छे से चम्मच
3: जैसे से। जैसे हम किसी भी चीज में चीज का इस्तेमाल करते हैं,
4: हाँ।
3: तो वो मतलब जैसे वो गरम गरम में वो बहुत मेल्ट हो जाती है अच्छे से, सेम थिंग वही है मुझे लग रहा है कि,
4: बिल्कुल
3: हाँ, कि वैसे ही है कि अगर हम इसमें ऊपर से मतलब जैसे पनीर को क्रश किया गरम गरम में ही और फिर आपने बटर डाला है, तो बटर के साथ वो पनीर चिपक जाएगा उसमें और खाने में ना एक मतलब जैसे कहते हैं ना मेल्ट एंड माउथ वाला हो जाता है।
4: आपको लगेगा कि आप रेस्टोरेंट वाली भिंडी बेसन भिंडी खा रहे हैं, बहुत टेस्टी। और इसके साथ अब आते हैं, हम बताते हैं आपको दाल वाले पराठे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। तो दाल वाले पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, लोगों के हिसाब से मतलब आपको ये देख लेना है कि आपके घर पे कितने लोग हैं।
3: 4 लोगों के हिसाब से बताओ।
4: हाँ, 4 लोगों के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको गेहूं का आटा लेना है 3 कप।
3: ओके।
4: उसके बाद में पकी हुई दाल आपको लेनी
3: है। पकी दाल कौन सी?
4: पकी दाल आपको लेनी है चने की दाल।
3: चने की दाल को रात में भिगो के रख दें, हाँ। तो वो मॉर्निंग तक बहुत अच्छे से फूल जाएगी,
4: बिल्कुल
3: मतलब बढ़िया। फिर क्या होता है कि उसको फिर ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब विसिल नहीं करानी पड़ेगी।
4: जी मैम।
3: बस एक बार आपको ध्यान देना है रात में कि हाँ उसको भिगो देना है और सुबह बस उसको धुल करके और क्या कहते हैं उसको बॉईल कर लेना है, है ना?
4: राइट।
3: बन गई। आगे
4: अब आपने जैसे मैम ने बताया वहां तक आपने कर लिया, अब इसके बाद आपको लेनी है अजवाइन, 1/2 चम्मच अजवाइन ले लेना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ दाल में नमक थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा,
3: हाँ।
4: क्योंकि आटे में आप उसको फिल करेंगे ना फिर, इसलिए। अब इसके बाद में आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है, जब आप आटे को गूंथ रहे होंगे उस वक्त पानी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पराठे बनाने के लिए हमेशा टाइट आटे की जरूरत पड़ती है
3: जी।
4: अब इसके बाद में आ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इसके बाद में आपने बॉईल कर लिया, बॉईल करते वक्त जब आप विसल करवा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि थोड़ा सा तेल डालिएगा और इसे कुकर में विसल कराएंगे तो थोड़ा सा तेल पहले आप डालिएगा और उसमें लाल मिर्च डाल दीजिएगा। लाल मिर्च कौन सी, जो सूखी वाली आती है ना जो हम घर में यूज करते हैं, उसको डालना है आधा, और वो पूरी जब तेल में पक जाए उसके बाद आपको उसमें ये दाल जो आपने भिगो के रखी हुई थी वो डाल देनी है।
3: अच्छा, मतलब मतलब कि मील वाइज क्या करना है कि आपको उसको छौका लगा, हाँ, करके ही आपको उसको
4: बॉईल
3: करनी है। सिंपल सी है,
4: सिंपल से मैम, एक विसल दिला दीजिए, एक विसल में आपका काम हो जाएगा, इट मीन्स कि आपकी दाल रेडी हो जाएगी। अब वो रेडी हो गई, रेडी होने के बाद में आपको इसे मिक्सी में डाल करके अच्छे से उसको ग्राइंड कर लेना,
3: मतलब दरदरा पीसना है कि
4: फाइन पेस्ट, फाइन पेस्ट आप पीस लीजिएगा। और एक बात बताती हूँ, अगर आप मिक्सी की जगह इसे सिल पर पीसेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मिक्सी में पीसने से क्या होता है कि हल्की सी जैसे जब वो चलाते हैं हम तो पानी, पेस्ट पानी, जैसी हो जाती
3: है। और मेन बात है कि वो पानी आ जाएगा हाँ, उसमें हाँ।
4: इसलिए आप इसको सिल पर पीसिएगा तो बड़ा सूखी सूखी और बढ़िया टाइट आपकी दाल हो जाएगी
3: जी।
4: अब आपको इसमें नमक मिलाना है। नमक आप इतना मिलाइएगा कि जैसे मान लीजिए एक चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हल्का थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको आटे जो आपने आटा गूंथा था उसमें से लोई आपको तोड़नी है और उसे हल्का हल्का गहरा कर लेना है और उसमें ये स्टफिंग जो आपने दाल वाली बनाई हुई है ये आपको उसके अंदर अच्छे से उसको भर देना है और फिर पराठे को मोड़ लेना है अच्छे से। दाल थोड़ी सी दबा दबा के अच्छे से भरिएगा, क्योंकि देखिए दाल हम जब दबा के नहीं भरते हैं ना अच्छे से तो क्या हो जाता है कि जब आप कभी खाएंगे तो बीच में कि कहीं कहीं हम पराठे खाते हैं तो वो अगल बगल तो अच्छे से दाल होती है लेकिन बीच में खाली होता है, बीच में हम तोड़ते हैं तो मेरा तो अरे ये तो है ही नहीं। तो अच्छे से हाथों से उंगलियों से दबा दबा करके आपको दाल भरनी
3: है। अच्छा, मैं अब इसमें एक टिप दूं
4: दीजिए,
3: क्योंकि हम लोगों के घर में भी ऐसे मूंग की दाल के बनते हैं, चने की दाल के बनते हैं, तो क्या हो जाता है कि इसमें ना जब आप दाल के परोठे बनाते हैं और जब भरते हैं, जैसे अंशिका बता रही है कि उसको दबा के भरो, तो अब मैं बड़े होने के नाते एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि कभी भी आपने ज़्यादा भरनी अंशिका हाँ। भरनी है, और जब आप आटे की लोई लेंगे ना तो सबसे पहले आपने आधी रोटी जैसे बेल लेते हैं ना आप बेलें और उसके ऊपर आपने सूखा आटा मतलब फैला देना है।
4: ओके
3: ठीक है, सूखा आटा फैला दीजिए। उसके बाद आपने दाल का जो पूरा ये मतलब ये बनाया है मिक्सचर उसको भरे एंड देन ऊपर से फिर से आप सूखा सूखे हुए आटे को आप उसी के ऊपर पूरा छिड़क दें एंड देन उसको पैक करें आप।
4: ओके,
3: इससे क्या होगा कि आपकी रोटी ना फटेगी नहीं और आराम से बेली जाएगी।
4: वाह,
3: ये टिप ऑफ द डे,
4: इसे ही कहते हैं फिर।
3: हाँ, तो ये सबके लिए है, ये अंशिका के साथ में सभी के लिए ये टिप ऑफ द डे है कि आप फिर उसमें जितना भी दबा के भरेंगे ना आपकी रोटी फटेगी नहीं और बढ़िया से स्मूथी से रोटी जो है वो बेली जाएगी।
4: वाह, तो वही अभी आपने सुना कि आपको क्या करना है। अब इसके बाद में
3: उसको सेक लेना है,
4: उसको सेक लेना है और सेकने के लिए अगर आप बटर का यूज करेंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेंगे। और वैसे तो अगर आप सरसों
3: का भी यूज कर सकते हैं
4: या सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, जिसमें जिसे पसंद हो वो उसमें उसको सेक सकते हैं। अब आपने सेक लिया, अब सेकने के बाद में आपको एक चीज और करनी है। एक चीज ये करना है कि पराठा जब आपका हो गया है, सेक लिया है आपने, उसके बाद अगर आप चाहें तो अगर आपने रिफाइंड ऑयल में, जैसे अगर देसी घी में ही सेका है तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है, तब तो वो लेकिन अगर आपने रिफाइंड ऑयल में या सरसों के तेल में सेका है तो उस जब वो सेक जाए, गरम ही गरम हो, उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिएगा और तब खाइएगा, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और एनर्जी भी आएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि एनर्जी की जरूरत है, तो देसी घी एक बहुत अच्छा नुस्खा होता है एनर्जी के लिए। तो अगर आप देसी घी में बना रहे हैं तो द बेस्ट है, लेकिन अगर किसी और चीज में बना रहे हैं तो ऊपर से देसी घी जरूर डाल लीजिए
3: जी।
4: बहुत तो टेस्टी और बहुत ही अच्छा,
3: बहुत ही बढ़िया आज की रेसिपी, यानी कुरकुरी भिंडी विथ पनीर, और जो आपने ये दाल के परोठे जो अभी खाए, दाल के परोठे विथ देसी घी, तो बहुत ही अच्छे से ये एक कॉम्बिनेशन भी है, मतलब तेज भूख में अगर दो रोटी मिल जाए और ऐसे पनीर की मतलब भिंडी की सब्जी मिल जाए ना तो मतलब क्या ही कहा जा सकता है। तो चलिए आप इसको इंजॉय करिएगा, बनाइएगा और उसके बाद हम आएंगे अपनी मास्टर शेफ की रेसिपी के साथ में। लेकिन हम सबसे पहले आएंगे हम अपने चैट बॉक्स में, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं करी है वो एंट्री कर लें। देन आज भी पिछली बार के तरीके से, जैसे पिछली बार प्रीति जी ने एक रेसिपी बताई थी, तो आज भी जिनको भी रेसिपी अगर कॉल पे बतानी है तो प्लीज कॉल करें। कॉलिंग नंबर है 6393316429 पे आप कॉल करें और अपनी घर के किचन में जो बनाते हैं वही हमें बस बना के खिला दें। तो बस हम यू गए यू आए, तब तक के लिए सुने इस प्यारे से गाने को, बना के खिला दें। तो बस हम यू गए यू आए, तब तक के लिए सुने।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में हैं
7: RJ अंशिका।
6: तो चलिए भाई, सबसे पहले आते हैं चैट बॉक्स में और उसके बाद हमारी मास्टर शेफ की बताई गई रेसिपीज को सुनेंगे। तो चैट बॉक्स में अंशिका
7: जी मैम, तो हम बैकलाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं नागेश्वर जी, वेलकम करते हैं नागेश्वर जी। और उसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी जो की आवाज विकास से सुनते हैं, लिख रहे हैं समता जी और अंशिका जी शुभ दोपहरिया, गुड आफ्टरनून।
6: शुभ दोपहरिया।
7: और इसके बाद में उस्मान खान जी जो लिख रहे हैं, अच्छी रेसिपी बताई मैम, थैंक यू, थैंक्स
6: सो मच उस्मान जी।
7: इसके बाद में नागेश्वर जी, और नागेश्वर जी के बाद हैं अनोखी शर्मा जी। अनोखी शर्मा जी के बाद में धर्मेश त्रिपाठी जी आ गए हैं, और उसके बाद सोनिया तिवारी।
6: तो थैंक यू सो मच, और अनोखी जी भी आ गई हैं, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं
7: जी मैम।
6: और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो में। तो चलिए अब हम फिलहाल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की हमारी मास्टर शेफ की रेसिपीज की ओर।
7: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। और भाई आज है हमारा लजीज वाला मंडे, और अब बारी आ गई है हमारी मास्टर शेफ की रेसिपी की। तो चलिए सीधा चलते हैं और वेलकम करते हैं हमारी मास्टर शेफ को, और जानते हैं उनसे कि आज उनके पास हमें खिलाने के लिए क्या है। वेलकम मैम।
8: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इधर मैंने बहुत दिन से नॉन वेज की कोई रेसिपी नहीं बताई है
7: जी,
8: और मेरा मन कर रहा था कि आप लोग के सामने नॉन वेज की रेसिपी दी जाए, ताकि आप इधर छुट्टियों में नॉन वेज बना लें। मैं बहुत सरल ढंग से दो तरह की आज आपको डिश बनाऊं, और बकरे का ही मीट खाया जाता है गोट मीट, तो हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और सामान सब लिख लीजिए। तो सबसे पहले मेरी डिश है पहली शाही कीमा करी।
7: शाही कीमा करी जी।
8: तो सामान लिखिए कि मटन आप 500 ग्राम लेंगी, थोड़ा मोटा कुटा हुआ, मतलब महीन इसको नहीं कूटना है, थोड़ा मोटा मोटा रहना चाहिए
7: जी।
8: प्याज आप 6 लेंगी मध्यम आकार की, 3 आप प्याज जो है काट लेंगी और 3 पीस लेंगी। 6 में से 3 आप प्याज काट लेंगी लच्छे में जैसे काटती हैं, और 3 आप पीस लेंगी। लहसुन 8 कली लेंगी, जिसमें से 4 पीस लेंगी और 4 को आप महीन महीन काट लेंगी
7: जी।
8: अदरक 1 इंच का टुकड़ा लेंगी, उसको भी बहुत महीन महीन काट लेंगी
7: जी मैम।
8: दही आप 1/4 चाय का प्याला लेंगी, एक प्याला होता है ना, एक बहुत बड़ा प्याला होता है, एक डेली जो यूज हम लोग करते हैं, तो डेली यूज में 1/4 प्याला आप दही ले लेंगी
7: जी।
8: साबुत मिर्च आप 4 लेंगी, साबुत मिर्च का मतलब है खड़ी लाल मिर्च, पिसी नहीं, जो सूखी हुई होती वो 4 लेंगी। जीरा 1/2 चाय का चम्मच लेंगी, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच लेंगी, और इनको क्या करेंगी, हल्का हल्का तवे पे डाल के सेक लेंगी, लाल नहीं करना, हल्का हल्का सेक करके, और इसको दरदरा आप पीस लेंगी। फिर पोस्ते का दाना, आप जिसको खसखस भी कहते हैं, पॉपी सीड्स भी कहते हैं, वो आप लेंगी 1 टेबल स्पून। मतलब 4 चाय के चम्मच भर के अगर आप लेंगी तो 1 टेबल स्पून हो जाएगा
6: जी।
8: बादाम जो है 6 से 8 भिगो लीजिए पानी में और उसको छिलका उतार के महीन महीन काट ले लीजिए। और नमक तो आपका अंदाज से रहेगा ही, तेल आपका अंदाज से रहेगा। अब आप जो है वो साबुत गरम मसाला अलग से ले लीजिए, जिसको कि हम तड़के में डालते हैं। अगर हम तड़के में डाल देते हैं साबुत गरम मसाला तो उसमें एक अलग स्मेल रहती है
6: जी,
8: महक आने लगती है जो कि बहुत अच्छी होती है
6: जी।
8: तो चलिए वो लिख लीजिए। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंग 4, छोटी इलायची 4, बड़ी इलायची 2 और दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, तेज पत्ता 2 या 3 और तेल सरसों का अगर आप लेनी है तो 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम आप ले लीजिए। अब आप करिए विधि क्या है, ये सब तो हो गया आपकी तैयारी में। अब सबसे पहले आप गैस जलाएं और कुकर को गैस पे रख लीजिए, उसमें तेल डालें, तेज पत्ता जो हमने अभी साबुत गरम मसाला लिखाया है तेज पत्ता ये डालें, और काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, सब चीज डाल देंगी
6: जी मैम।
8: जब वो हल्का सा चटकने लग जाए तब आपने जो प्याज पीसा है, लहसुन पीसा है, इन पीसे लहसुन और प्याज को डाल करके थोड़ा आप चला लीजिए, हल्का हल्का भून लीजिए। इसके बाद आप कीमा धो लीजिए खूब अच्छे से, फिर उसको पहले ही आप धो के रख लीजिएगा और टेढ़ी थाली कर दीजिएगा तो जितना एक्स्ट्रा पानी है वो उसका निकल जाएगा
6: जी।
8: फिर उसमें आप कीमा डाल दीजिए और हल्का नमक डाल दीजिए। अब इसके साथ ही साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए, जो आपने धनिया जीरा पीसा था वो सब डाल दीजिए इसमें, और इसमें नमक डाल दीजिए। थोड़ा भूनती रहिए, जब भूनती रहेंगी उसके बाद इसमें पोस्ते का दाना जो खसखस है उसको पीस लीजिए, पीस करके उसको भी इसमें डाल दीजिए। फिर

0: देंगे और 15 मिनट तक धीमी आंच पे होने देंगे। उसमें ना आप सीटी गिनिएगा ना कुछ, हो सकता है एक भी सीटी ना आए, हो सकता है अगर आपका प्रेशर कुकर अलग अलग कंपनियों के रहते हैं
1: जी,
0: कुछ बराबर सीटी मारते हैं रहते हैं कुछ नहीं मारते
1: हाँ।
0: तो आप सीटी का मत इंतजार करिएगा, जैसे ही आप में पूरी स्टीम आती है बड़ी उसमें छुन छुन छुन छुन जब होने लगे
1: जी जी।
0: तब आप आंच धीमे कर दीजिए और 15 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए
1: जी मैम।
0: फिर आप उसको गैस को बंद कर दीजिए। जब आप गैस को बंद कर देंगी तब आप जब खुलने दीजिए अपने आप ढक्कन, आप कोशिश मत करिएगा कि खोलने की, ठीक है
1: जी,
0: नहीं तो फिर वो गलता नहीं है
1: हाँ।
0: तुरंत क्यों तुरंत खोल दो, वो तो अलग चीज है, किसी को देना है वो अलग चीज है
1: जी जी।
0: पर उसमें आप वो नहीं करिए। उसके बाद आप उसका खुलने दीजिए, जब ढक्कन खुल जाए फिर आप इसमें करिए 1 टेबल स्पून देसी घी,
1: देसी घी,
0: देसी घी उसमें डाल दीजिए
1: जी,
0: जो आपने कीमा तैयार किया
1: जी मैम।
0: फिर उसको थोड़ा कलछुल से चलाती रहिए। अगर कोई वो पसंद करते हैं कि लाल लाल हो तो आप पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच 1.5 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार
1: जी
0: वो आप डाल देंगी, और जो आपने काजू डाले हैं छीले हैं रखे हैं वो अब आप खूब महीन काट लीजिए। उसको दरदरा मत पीसिएगा, छील करके आप जितना महीन काट सकती हैं वो उसमें डाल दीजिए। हरी धनिया डंडी जो है आप इस समय भूनते समय डाल दीजिए, और पत्तियां जो हैं जब आप सर्व करिए उस समय डोंगे में रख लीजिए
1: जी।
0: डाल दीजिएगा जब डोंगे में कीमा निकाल रही है, हरी धनिया डाल दीजिएगा और देखिएगा कितना कम मसाले का बहुत स्वादिष्ट ये जो है आपका शाही कीमा तैयार हो जाएगा। जो लहसुन है ये भी हमारा कटा हुआ उसी समय चला जाएगा, और जो प्याज आपने है डाला है कटा हुआ नहीं डाला था ना पहले
1: जी,
0: तो जब पिसा हुआ डाला था, जब आप भून रही हैं आप तब आप वो प्याज डाल दीजिएगा, लहसुन डाल दीजिएगा और खूब अच्छे से जब ढक ढक के भून रही हैं उसी समय भून जाएगा
1: जी।
0: तो कच्चे प्याज का और पके हुए प्याज का स्वाद ही अलग होता है। तब आप इसको बनाइए, खुद खाइए, और इसके संग आप लच्छा वाला पराठा जरूर बनाइएगा
1: जी।
0: लच्छा वाला पराठा तो आजकल आप लोग देख रही हैं बहुत जल्दी बन जाता है
1: जी मैम।
0: आप एक आटा अच्छे से सान लीजिए, थोड़ा रख करके मुलायम हाथ से कर लीजिए, और फिर उसको पराठे को लोइयों पे छोटे छोटी तोड़ लीजिए, फिर उन सब लोइयों को आप बेल लीजिए, फिर एक के ऊपर एक एक के ऊपर जरा सा घी और वो रख के डाल के मैदा डाल के आप रख दीजिए, 5-5, 6-6 एक संग कर लीजिए, फिर लंबी लंबी बेल लीजिए, तिकोना या गोल जैसा भी आपको बोल बेलना है बोल के काट करके रखिए। तो लच्छे के पराठे के संग ये कीमा करी बहुत ही अच्छी लगती है, खुद भी खाइए और सबको भी खिलाइए।
1: बिल्कुल मैम, खुद भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे, और भाई बहुत ही टेस्टी डिश है ये तो लिसनर्स, मुझे तो मुंह में पानी आ गया। तो चलिए अब चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, बस यू गए और यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: गोंडा शहर की धड़कन।
10: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। तो वापस आ गई हूँ मैं फिर से हमारी मास्टर शेफ के साथ, और चलिए जानते हैं कि अब अगली रेसिपी क्या है।
11: देखिए, आजकल तो लेडीज से ज्यादा जेंट्स, मतलब लड़के, लड़कियों से ज्यादा लड़के खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं।
10: यस मैम,
11: हमने अपने ही घर के लड़कों को देखा है, बड़े शौक से बनाते हैं। उनकी वाइफ, जो नई नई बहुएं आई
10: हैं, जी जी,
11: वो सब इतना नहीं बनाती हैं। पर अब चूंकि वो हम सब के हाथ का खाए हुए हैं, तो उनको लगता है कि मैं वही खुद खाऊं, अपनी दुल्हन को खिलाऊं। पहले ये था कि खुद बनाए तो आदमी खिलाए, पर अब थोड़ा चलन बदल हो गया है। तो जो है, एक हम लोग के घर खाया जाता था, मेरी नानी और मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी। उसको हम लोग नाम देते थे जंगली मीट। तो ये भी गोट, बकरे का गोट मीट जो होता है, उसी से बनता है। क्योंकि हम सब लोग के यहाँ गोट मीट ही खाया जाता है, दूसरा मटन तो खाया नहीं जाता है।
10: जी जी।
11: तो बकरे का गोट, और इसमें अलग से कुछ नहीं पड़ता है
10: जी,
11: बहुत ही कम मसाले का, बहुत ही अच्छा पड़ता है। पर इसमें देसी घी का ज्यादा यूज होता
10: जी,
11: है।
10: मैंने तो
11: पहली दफे नाम सुना, और इसको ये 2 घंटे में लगभग पक के तैयार होता है, बिल्कुल धीमी आंच में। इसमें कुकर में ना सीटी दी जाती है ना कुछ, इसको धीरे धीरे भूनते हुए बनाना पड़ता है। तो चलिए, एकदम नए तरह का ये बकरे का गोश्त है। आप जब एक बार इसको बना लेंगी, मेरा ध्यान है कि सब बार बार आप बनाएंगी और सबको खिलाएंगी, और जिसको एक बार आप खिला देंगी वो आपसे सीख करके स्वयं जाएगा।
10: अरे वाह,
11: तो ये मेरी गारंटी है आपके।
10: जी मैम।
11: तो चलिए, सामान लिखिए
10: जी।
11: इसके लिए हमें गोट मीट चाहिए 1 किलो
10: जी,
11: जिस तरह का आप पसंद करते हो, हड्डी वाला पसंद करते हो या
10: मांस
11: वाला, जैसा भी आप पसंद करते हैं वो ले लीजिए। पर इसके लिए हमें देसी घी चाहिए पाव भर।
10: 1 किलो
11: में पूरा पाव भर हमें देसी घी चाहिए
10: जी।
11: लाल मिर्च आपने देखी होगी, एक थोड़ी मोटी सी होती है, एक लंबी, तो इधर मोटी वाली बहुत कम मिलती है
10: जी मैम,
11: इधर लंबी लंबी पतली मिलती,
10: पतली वाली मिलती
11: तो
10: है।
11: आप लाल मिर्च 20 ले लीजिए, गिन करके
10: पतली वाली,
11: जो भी आप यहाँ मिल रहा है पतली ही मिल रही है
10: जी मैम, यहाँ तो पतली वाली होती है।
11: अब वैसे कश्मीरी मिर्च मोटी मोटी मिलती
10: जी
11: है
10: जी जी,
11: तो 20 ले लीजिए आपको जो भी मिल रहा, और उसकी पीछे से डंडी आप तोड़ दीजिए
10: जी।
11: अब गिन के 20 लेनी है, और नमक आप अंदाज से ही डालेंगी
10: जी,
11: ठीक है। और हरा धनिया काट लीजिए 1 गुच्छा, थोड़ा ज्यादा सा
10: जी।
11: अब विधि में आप सुनिए, बस सामान हमारा इतना ही लगना है,
10: इतना ही,
11: ना प्याज ना लहसुन कुछ नहीं।
10: अरे वाह।
11: तो भाई हमने कहा कि ये इतनी अच्छी डिश है
10: जी जी,
11: कि अगर आप एक बार खा लेंगी या खिला देंगी तो मैं गारंटी देती हूँ कि बार बार आपसे फरमाइश होगी इसकी।
10: जी मैम।
11: तो अब विधि लिखिए, कोई भी कुकर या भगवाना ले लें, ठीक है, उसमें ये पूरा देसी घी आप डाल देंगी।
10: जी।
11: मटन आप जब तैयारी कर लेती हैं तो मटन आप धो करके ही रखे हैं। हाँ। सब कुछ है, क्योंकि हम लोग यहाँ तो थोड़ा छुआछूत का भी है, तो हम लोग सब पहले अपनी तैयारी कर
10: रेडी कर लेते हैं,
11: उसके बाद सिर्फ करते हैं। तो जो मटन हमने धो के रखा है उसको डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और जो हमने 200 साबुत लाल मिर्च लिए वो उसको डाल देंगे।
10: जी मैम।
11: अगर आपको थोड़ा मिर्चा लग भी रहा है तो हमारा ख्याल है आप थोड़ा मिर्चा काट के उसका बीजा निकाल दीजिए, क्योंकि जो पतली पतली हम लोग के यहाँ लाल मिर्च आती है वो बड़ी कड़वी रहती है।
10: जी मैम।
11: तो लेकिन जहाँ तक हो थोड़ा नॉनवेज में थोड़ा हाँ, कड़वा अच्छा ही
10: चटपटा ही अच्छा लगता है,
11: तो
10: थोड़ा।
11: उसको हम तो ऐसे ही डाल देते हैं, बना देते हैं, ऐसे ही बनाइए। तो जो आपने 20 रखी है वो पूरा डाल देंगे और नमक डाल देंगे।
10: जी मैम।
11: अब आप ढक्कन रख दीजिएगा, मतलब कुकर में सीटी नहीं लगेगी, साधारण ढक्कन रख देंगे।
10: जी।
11: धीमी आंच पर छोटे बर्नर पर थोड़ा चलाएंगी, फिर आराम से बैठ जाएंगी, या फिर 15-20 मिनट बाद आएंगी फिर चलाएंगी, ऐसा करते करते पकते रहे। अगर हम छू के देख रहे हैं, अगर हमारा मटन नहीं गला है तो हम पानी का छींटा भी डालते जाएंगे, पर स्टीम नहीं देंगे, कुकर नहीं बंद होगा, सिर्फ ढक्कन ढका ही रहेगा।
10: जी।
11: ऐसे करते करते जो है एक समय आएगा कि मटन एकदम गल जाएगा, पर इसमें पड़ने में 1.5 से 2 घंटा लगता ही लगता है।
10: जी मैम।
11: इस बात को मान लो कि छोटे बर्नर पर बिना स्टीम दिए इसको पकाना है, और जो है फिर ये समझो पक जाएगा 2 घंटे के अंदर। अब इसमें अगर जरूरत पड़ रही तो तुम थोड़ा देसी घी और भी डाल सकते हो,
10: बनने के बाद
11: भी थोड़ा 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल सकती हो। बस आप इसको बाउल में निकालिए, हरी धनिया डालिए और गरम गरम रोटी के संग सर्व करके।
10: जी।
11: पर इसमें शोरबा उरबा नहीं रहता है, क्योंकि जो देसी घी है उसी से जो शोर हाँ। तेल निकलता है, हम लोग उसी से खाते हैं, तो ये ज्यादातर रोटी के संग खाया जाता है।
10: जी।
11: और एक बार हम सभी श्रोताओं से कहेंगे, एक बार जो भी नॉनवेज खाता है वो इस मटन को बनाकर जरूर देखे, खुद भी खाइए, जरा सबको खिलाइए। और मेरे घर तो जो मेहमान आते हैं उनकी फरमाइश पहले ही रहती है, और एक दिन हम आपको इसी तरह का मुर्गा सिखाएंगे, उसमें सिर्फ हरी मिर्च पड़ती है और कुछ नहीं पड़ता है। इसमें हमने लाल मिर्च डाली, इसको हमारी नानी मम्मी बहुत बनाती थी, और इसको जंगली मीट हम लोग कह देते थे, लेकिन वो तो ऐसे ही शौक से बनाती थी, पर उसका नाम हमने जंगली मीट दिया है। ठीक है। तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि मैं आई हूँ कुछ अलग करके, आज मेरा बहुत मन था नॉनवेज सिखाने का।
10: जी मैम।
11: तो ये दोनों डिश आप बना के देखिएगा, और ये वाली तो जरूर बनाइए।
10: जरूर बनाऊंगी मैम, और थैंक यू सो मच आने के लिए और इतनी अच्छी डिश बताने के लिए। तो लिसनर्स, अगर आप में से जो भी नॉनवेज खाते हैं वो इसे ज़रूर ट्राई करिए, भाई मैं तो पक्का बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं एक प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे
3: अंशिका।
2: तो भाई चलते चलते ही सही, और आज का टिप ऑफ द डे हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना कड़वाहट और झंझट के नींबू का रस कैसे निकाला जाता है। तो ये टिप ऑफ द डे है। अक्सर नींबू निचोड़ते समय उसके बीज जो है वो खाने में गिर जाते हैं और उसका रस जो है वो कम निकलता है। अब से नींबू को बीज से काटने के बजाय उसे लंबाई में, यानी कि उसे जैसे कहते हैं ना कि वर्टिकल आज ना मेरा दिमाग बिल्कुल घूमा हो गया। लंबाई में वर्टिकल 4 टुकड़ों में काटें और बीज का सफेद रेशा हटा दें, और इससे बिना बीज गिरे, जो उसके बीज होते हैं ना वो बिना बीज गिरे 2 गुना रस निकलेगा और कड़वाहट भी नहीं आएगी। यानी जैसे गोल हम लोग कट करते हैं ना, हमेशा से सबकी आदत होती है, लेकिन उसको लंबे में कट करना है और उसका जो बीच वाला रेशा होता है उसको आप निकाल दें, और नींबू के रस का जो एक वो आता है ना, जो क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं, रस निकालने वाला, उसमें आप नींबू को रख दें और उसको दबाएं और पूरा का पूरा रस निकलेगा। अगर आप हाथ से भी कर रहे हैं तो भी आपको ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन बस कहा जाता है ना कि हमें उसका आकार चेंज कर देना है, गोल की जगह हमें लंबे में कट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को दे इजाजत, और यानी कि अंशिका को तो मैंने दे दी है इजाजत, वो आपसे मिलेंगी कॉलर ट्यून गोंडा में। हम मिलेंगे आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

मुश्किल ये दूरी है और आज कहना ज़रूरी है। आज कहना ज़रूरी ये है कि भाई आपका अपना शो स्टार्ट हो गया है जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा, आपका अपना कॉलिंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई कॉलिंग प्रोग्राम है और आप सभी कॉल करेंगे और हम आपकी फरमाइशों को लेंगे और उन्हें प्ले करेंगे और बहुत सारा इन्जॉय करेंगे कॉलर ट्यून गोंडा में। तो चलिए सीधे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज पहली फरमाइश किसकी है और क्या है। तो आज हमारी पहली फरमाइश जो की है वो है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सीधे चलते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को सुनते हैं और उसके बाद में आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट फरमाइश किसकी है। तो सबसे पहले सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को।

अभी अभी आपने जो सॉन्ग सुना वो फरमाइश थी देवी प्रसाद जी की। अब हम सुनेंगे सुनील कुशवाहा जी के सॉन्ग को, और सुनील कुशवाहा जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी राजेश जी के सॉन्ग की। राजेश जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे साहिबा जी के सॉन्ग को। तो सुनिए अपने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

मिलिया तो जाने ना दूंगा मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश थी सबीहा जी की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है मेहताब जी की, और मेहताब जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे बादल जी के सॉन्ग को, और बादल जी के सॉन्ग के बाद सुनेंगे धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को। अगर आप भी ये सॉन्ग की डिमांड करना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो फटाफट से कॉल करिए 6393316429 पे और अपनी फरमाइश हमें भेज दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे और सुनते हैं बादल जी के सॉन्ग को।

0: ना पाए तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए।
1: बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। और बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है कि तेरी याद ना आए, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए चलते हैं हम नेक्स्ट वाली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुमताज अंसारी जी की। और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। तो आइए चलते सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इसके बाद में हम सुनेंगे चांद बाबू के सॉन्ग को, और उसके बाद सुनेंगे निर्वाण जी के सॉन्ग को। आइए फिलहाल चलते हैं सीधे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश की तरफ।

अभी अभी आपने जो सॉन्ग सुना वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी निर्बान जी की। और अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है निशा जी की। और निशा जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे अजय जी के सॉन्ग को, और अजय जी के सॉन्ग के बाद में सुनेंगे दुर्गा जी के सॉन्ग। तो आइए चलिए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

आए कोई ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो भाई दिल को ढूंढना है, दिल कहाँ खो गया और बिल्कुल ना नींद आए ना चैन आए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी दुर्गा जी ने। और चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ जो कि है नागेश्वर जी की। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं नागेश्वर जी के सॉन्ग को, और नागेश्वर जी के सॉन्ग के बाद में हम सुनेंगे अरविंद जी के सॉन्ग को। तो आइए फिलहाल सीधे चलते हैं नागेश्वर जी के सॉन्ग की तरफ।

दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड वाला सॉन्ग और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और आज इसी सॉन्ग के साथ में हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो चलिए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से लिसनर्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तबिश खान जी, के गुप्ता जी, नागेश्वर जी, धर्मेश त्रिपाठी जी के साथ नागेश्वर जी फिर से, ओके, के गुप्ता जी और धर्मेंद्र मोहन जी, बबीता जी। तो हमारे साथ जो भी लिसनर्स जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत बहुत थैंक यू क्वालिटी ट्यून गोंडा प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए, इतने सारे सुपरहिट सॉन्ग्स को एंजॉय करने के लिए, और साथ ही साथ में हमारे साथ इतने टाइम तक आपको बने रहने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और साथ साथ ब्यूटीफुल और प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को सुनते रहिए, क्योंकि जो गाने होते हैं ना वो हमेशा हमें एक एनर्जी दे जाते हैं। तो सुनिए बहुत ही आप प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ गर्मी बहुत है सो पानी पीते रहिएगा, और आइए चलते चलते सुनते हैं इस बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग को जो कि आज हमारा एंडिंग सॉन्ग होने वाला है।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

Yeah, I'm so excited.

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।
1: नाउ लिसनिंग 39.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 39.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो जैसे कि हर रोज गोधूली में हम एक नए मेहमान के साथ लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, उसी तरह आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। और हम बिना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए हुए बता दें कि आज हमारे बीच में मिस्टर राकेश कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं, जो कि मैनेजर हैं SCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोंडा के। सर, पहले तो आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में।
2: ओके, थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज भी हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा राकेश जी से। उनके बारे में पहले हम जानेंगे उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातों को, उसके बाद फिर चूंकि आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के एक मैनेजर हैं तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए आज का जो ये टॉक शो है इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, सुनते रहिएगा, आज काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो हम बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो पहले तो आप राकेश जी अपने बारे में बता दें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं अपने माता पिता के बारे में।
2: जी जी, जी। सर मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर है, गोंडा से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। और यहाँ एक ब्लॉक है, गंसरी ब्लॉक आता है तुलसीपुर के नियरेस्ट में, और वहाँ एक गाँव है जिसको हम उसका नाम पुरैना है, ग्राम सभा पुरैना है, वहाँ हमारी पैदाइश हुई। और ये DOB में बता दूँ, वैसे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन बता दूँ 1985 में पैदा हुआ। और मैं फाइव जो है हम ब्रदर हैं।
1: ओके,
2: थ्री सिस्टर।
1: पांच भाई और तीन बहनें
2: जी,
1: आप।
2: जी जी जी
1: ओके, आपने कहा कि जी जी बताइए
2: जी। तो मैं उस जो है भाई बहनों में मैं 7th पोजीशन पे हूँ, भाइयों में सबसे छोटा हूँ। एक मेरी सिस्टर है छोटी है, मुझसे भी छोटी है। और इस तरीके से जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन रही वो मेरे गांव में ही हुई। मैं उस दिन वहाँ प्राइमरी स्कूल में अपने गांव में पढ़ा, और इवन कि कह सकते हैं कि 1 to 8th की जो मेरी पढ़ाई हुई वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई। मैं 1 to 5th प्राइमरी में अपने गांव में रहा, फिर गांव से नियरेस्ट एक जूनियर हाई स्कूल था, मैं 6th to 8th वहाँ पढ़ाई करा। उसके बाद फिर मैं वहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गोंडा है, जहाँ इस समय हम लोग हैं गोंडा में, जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। यहाँ मैं 99 में आ गया सर
1: जी,
2: 9th क्लास में। फिर मेरी 9th to 12th की पढ़ाई यहीं से हुई। फिर आफ्टर 12th जैसे कि सारे बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो करियर को लेके जो है थोड़ा चिंतित होते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। मैथ बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट रहा, और फिर BSc करना है, BA करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आज की। इस पर मैं बात सर 2-4 घंटे में बात कर सकता हूँ इस पर, कि ये बच्चों को कैसे इसकी सॉर्ट आउट में देखता हूँ, सुनता हूँ, क्योंकि उस दर्द से हम लोग निकल के आए हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न है, बच्चा 12th के बाद टहलता है, वो कभी जाता इस कोर्स में एडमिशन ले लेता, घर वालों से बोलता सर कैंसिल करा देते, अब ये नहीं करना है, मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ये करना है। तो ये ऐसी सारी समस्याएं मेरे सामने भी उस समय रही 2003 में, जब मैं 12th पास आउट हुआ। और आफ्टर दैट अब जैसे कि मैं, क्योंकि भाई ट्रेन आता जाता रहता था गाँव में, तो स्टेशन वगैरह पे मैं प्रायः देखता रहता था कंप्यूटर्स वगैरह की टिकट वगैरह लोग कैसे काटते हैं। मैं घर पे जा कर के मेरे फादर बिल्कुल मैं अब कैसे बोलूँ, मैं मेरे फादर इस समय तो दुनिया में नहीं है, 2016 में 2 अक्टूबर को ख़त्म हो गए। लेकिन मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम नहीं पढ़े लिखे थे। और इवन कि जिस बैकग्राउंड से जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हमारे भाई बहनों में 10th कोई क्वालिफाई नहीं है, 10th मतलब इस परिवेश से हैं हम लोग जहाँ हम लोग प्राइमरी लेवल पे थे। तो जैसा कि वो कंप्यूटर जो स्टेशन पे लगे थे टिकट वाले, वही इंस्पायर करे मुझे लगा कि वो मेरा जो बीसीए, फिर आफ्टर दैट मैं ये निर्णय लिया कि मैं कंप्यूटर फील्ड में ही जाऊंगा और कंप्यूटर में ग्रेजुएशन करता हूँ। फिर मैंने बीसीए में एडमिशन का निर्णय लिया। अब जब ट्राई किया बीसीए में एडमिशन को लेकर के, फिर ढेर सारे उसमें कॉलेजेस के नाम पता होने चाहिए जो कि गाइड करने वाला कोई नहीं था। उसके पहले ढेर सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि फॉर्म हम कैसे भरें, कैसे हम इस ठीक कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले पाएँ, ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस था। इसलिए हम लोगों ने कोशिश ऐसा करा मैंने कि जो बीसीए में मैंने एडमिशन लिया वो इग्नू में लिया, इग्नू
1: जी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी,
2: जी जी इग्नू में लिया। और वहाँ जाने का जो सही रीज़न है वो है फी, इकोनॉमी की, जो इकोनॉमी की वजह से, पैसे की वजह से जो हम लोगों की पढ़ाई भी बहुत हाई लेवल पे या ऐसे कॉलेजेस में मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाया। जब फीस पता किया उधर उधर तो मुझे लगा कि बीसीए की सबसे कम फी किस यूनिवर्सिटी की है, पता चला कि इग्नू से करेंगे। फिर हमने निर्णय ये लिया कि गुंडा में कंप्यूटर की वो लेवल पे शायद हमको एजुकेशन ना मिल पाए, तो मैंने इग्नू का स्टडी सेंटर क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ चुना। मैं 3 साल वहाँ रहा लखनऊ में और वहीं से अपना बीसीए पास आउट किया और 2006 में। उसके बाद फिर पीजी भी मेरा कंप्यूटर में ही रहा, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया मैंने। आफ्टर दैट कह सकते हैं कि फिर थोड़ा ग्रेजुएशन करते करते हमारा टीचिंग से थोड़ा सा लगाव था, एक प्रोफेशन से ट्यूशन वगैरह में देता था कि इकोनॉमी में पहले बता चुका हूँ कि ये दिक्कत थी कहीं ना कहीं, तो मैं ट्यूशन वगैरह देता था। फिर मैं किसी कारण से बहुत आगे ग्रेजुएशन के बाद ही मुझे गोंडा आना पड़ा, जो मेरी पीजी की कोर्स है वो यहीं रह के मैंने किया ट्यूशन देती देती। फिर मैं घर वालों से बात करा कि मुझे कंप्यूटर खरीदवा दीजिए और अब कंप्यूटर फील्ड में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कंप्यूटर पैसे की प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर मतलब 2-3 साल 4 साल लगातार कहा। 2008 में मुझे एक कंप्यूटर मेरे पिताजी ने दिलाया, वो कुछ मैंने ट्यूशन व्यूशन से इकट्ठा किया था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैंने घर से लिया। उस समय कंप्यूटर 22,000 का आया, मैं लेकर आया। ये 21 जनवरी 2008 की बात है जिस डेट में मैंने कंप्यूटर लिया, फर्स्ट कंप्यूटर अपनी ज़िंदगी का। ऐसा मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि मैं 2003 से कंप्यूटर फील्ड में घुस गया था और कंप्यूटर लेने की इच्छा तब से थी और नहीं ले पाया था। फिर हुआ क्या, 21 जनवरी 2000 को कंप्यूटर आ गया 8 में, और उसके बाद एक हमारे फ्रेंड थे उनसे मैंने कंप्यूटर और उनसे कहा कि ऐसा करते हैं हमें कंप्यूटर पढ़ाना है बच्चों को। बोर्ड क्लास का मैं ट्यूशन देता था मैथमेटिक्स का 9 to 12, क्योंकि बोर्ड वगैरह ये सारे सीबीएसई बोर्ड के उस टाइम पे। तो मार्च 2008 में मैंने एक SCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया, वो भी 2 कंप्यूटर से। मेरे एक रूम लिया, अभी कुछ गोंडा प्रॉपर के लोग होंगे वो उनको पता है, नगर कोतवाली के सामने मैंने 2 रूम रेंट पे लिया, और 2 रूम नहीं 1 रूम लिया, उसी में मेरा चेयर और उसी में 2 कंप्यूटर्स, उसी में एक बेंच भी, और उस 2 कंप्यूटर से हमने पढ़ाई, कंप्यूटर का टीचिंग स्टार्ट करा। मेहनत करता था, बच्चों को सिखाता था, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है था जैसा कह रहे हैं। तो बच्चे बहुत दूर दूर से साइकिल से पढ़ने आते थे, 25-25 किलोमीटर दूर से। 2008 में आप पीछे चले जाएं तो इस तरीके से कंप्यूटर की स्टार्टिंग वहाँ की। उसके बाद लगभग 15 ईयर हो गए कंप्यूटर फील्ड में, डे बाई डे 2 कंप्यूटर से 3 से 4, आज इंस्टीट्यूट की एक अपनी पोजीशन है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ भी है, बच्चों को सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल की चीज़ें उन्हें देता
1: हूँ। ओके राकेश जी, SCIT नो डाउट काफ़ी ज़्यादा नोन इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर की अगर बात करें गोंडा में। हम एक बार फिर से आपके बचपन की तरफ चलते हैं, और आपने जैसा कि मेंशन किया था कि आप 5 भाई 3 बहनें जिसमें 7वें नंबर पे आप हैं। आपने बताया कि पिताजी चूंकि किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं सके होंगे,
2: जी जी,
1: आपके भाई लोग भी 10th मैक्सिमम, क्या सारे भाई बहनों में सबसे ज्यादा अभी मैं आपको ही मानूं कि पढ़े हैं?
2: हाँ सर बिल्कुल है।
1: ओके, तो ये इंस्पिरेशन, तो आपने ये बोल दिया कि हम जाते थे और कंप्यूटर से जो वो टिकटिंग होती थी उसको देख के वहां से आप इंस्पायर हुए थे।
2: जी जी।
1: लेकिन आपके अंदर इतना जज्बा, माना कि वहां पे आप ही नहीं बल्कि बहुत से और भी गांव में घर होंगे जो शायद बहुत नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन आप इतने आगे तक आए, आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आज चला रहे हैं, वो भी सफल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इंस्पिरेशन में और भी कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे, उसमें पिताजी का भी हाथ रहा होगा, माताजी का रहा होगा। तो पिताजी चूंकि खुद तो वो नहीं पढ़ पाए थे किन्हीं कारणों से, लेकिन उनका सपोर्ट कैसा था आपको लेके?
2: बिल्कुल फुल सपोर्ट था सर। जो भी जिस भी लेवल पे, मतलब जैसे भी वो मैं जाके बताता था कि पिताजी वो स्टेशन पे देखे हैं ना टिकट जो ग्रुप काटते हैं, मैं सोच रहा हूँ ऐसी पढ़ाई करूँ कि ऐसा कुछ कर पाऊँ कि हम भी कंप्यूटर वगैरह चलाएं और ऐसी जगह उससे जॉब मिल सकती है। कहते थे ठीक है करो, जो भी होगा वैसे वैसे की व्यवस्था करी जाएगी। बिल्कुल जो अपने लेवल पे वो कर सके किए।
1: तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपको इंस्पिरेशन मिली थी वहाँ से टिकटिंग को देख के,
2: जी,
1: उस वक्त आप अप डाउन करते थे गोंडा से बलरामपुर,
2: जी,
1: तुलसीपुर से। ओके राकेश जी, आपने पढ़ाई की, आपने कंप्यूटर साइंस में लखनऊ में रह के भी ग्रेजुएशन किया,
2: जी,
1: उसके बाद आपने मास्टर्स बताया कि इग्नू से किया, ये पूरा एक आपका सफर रहा।
2: जी।
1: इस सफर के दौरान जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस टाइम कंप्यूटर आया ही था, या यूं कहेंगे कि अपने गोंडा या आसपास के जिलों के लिए तो वो नया ही था?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल नया था सर। मैं बताऊं आपको एक घटना बताऊं?
1: जी जरूर।
2: कि एक मेरा पेपर था, वो असेंबली लैंग्वेज का पेपर था, और मैं गोंडा चूँकि रूम यहाँ हो गया था अब ग्रेजुएशन के एंड में, तो एक पेपर उसमें ऐसा था असेंबली लैंग्वेज का, तो किसी कारण से उस समय नहीं क्लियर हो पाया था मेरा उस सेमेस्टर में। तो मैं सोचा कि चलो गोंडा में रह के पढ़ लेंगे और देखेंगे कोई टीचर ठीक ठाक मिल जाएगा तो गाइडलाइन उनसे ले लेंगे। सर पूरे गोंडा में मैं टीचर सर्च करा कंप्यूटर का कि कोई असेंबली लैंग्वेज बता दे, जो दो तीन चार नाम थे, नाम नहीं है लेना है, लेकिन जाके मिला मैं वहाँ। बोले जब कहा ठीक है आ जाओ पढ़ा देंगे क्या करना है, तो बुक वगैरह लेके जब गए इग्नू की बुक थी, देखे क्या ऐसा करना राकेश एक काम करो इस देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं अपने एमसीए में कभी पढ़ा था तो समस्या थी सर। फातिमा गुंडा में फातिमा इंटर कॉलेज है, फातिमा इंटर कॉलेज के एक अजय सिंह सर हैं, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में उन्होंने जब मैं गोंडा वापस आया तो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड करी। उसके बाद सर सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग और बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश, कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड, जिससे वो जा कर के कहीं रोजगार कर पाए। और सर आज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ कहीं बोर्ड बैनर लगवाओ तो बच्चे आएंगे, क्योंकि वो सब इंटरनल एड है, वो मेहनत है।
1: जी कहते ना कि एडवर्टीजमेंट का एक जो सबसे प्रभावी ढंग होता है वो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी।
2: जी जी,
1: यानी लोगों के मुंह से ही कहा जाए कि भाई वहाँ आप जाओ वहाँ क्वालिटी मिलती है।
2: बिल्कुल।
1: और मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा प्रभावी होगा कि अगर मेरे कोई रिलेटिव में मेरा कोई दोस्त है कोई एरिया का है, अगर वो सजेशन मांगेगा और मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि नहीं उसने उस इंस्टीट्यूट में जाओ, तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत परफेक्ट रहेगा आपका एडवर्टीजमेंट का तरीका।
2: और बहुत अच्छा लगता है सर जब बच्चा आता है और कहता है कि हमारे बगल के एक लोग पढ़ के शराब से गए थे फला जगह काम कर रहे हैं, बोले वहीं जाना, बहुत अच्छा लगता है जब ये बताता है आके।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही
2: जी।
1: राकेश जी चूंकि आपसे हम बातचीत करेंगे, आप अभी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मैनेजर हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ आपने न जाने कितने बच्चों को पढ़ा के खुद से बाहर भेजा है, बच्चे आपके बहुत अच्छी अच्छी जगह काम भी कर रहे होंगे
2: जी,
1: नो डाउट। और कंप्यूटर में लेके कुछ जो कॉमन डाउट्स होते हैं उस पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि वक्त हो चला एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, तो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा राकेश कुमार प्रजापति जी से। मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है राकेश कुमार प्रजापति जी से, जो कि मैनेजर हैं SCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोंडा के। अभी तक आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की और बखूबी आपने बताया अपने बारे में, जिसमें ये एक पता चला। देखिए, पहली चीज तो है कि आपने काफी स्ट्रगल के बाद आज आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अभी कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, क्यों और कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में।
8: जी सर, कोर्सेज तो हैं है, जैसा कि पैकेज बनाया जाता है कि बच्चा ये टैली पढ़े, अकाउंटिंग जान लेगा, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएगा, या अलग अलग फील्ड से। लेकिन बेसिक कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन में मतलब ऐसी ही ज़रूरत है, जैसे हम कहते हैं कि हम साक्षर हैं या पढ़े लिखे हैं, ऐसे आज इतना ही ज़रूरी कंप्यूटर का एजुकेशन हो गया है। वो कहीं जॉब पर्पस से नहीं, वो अपनी दैनिक जीवन में यूज़ के लिए। कंप्यूटर सीखना सबको ज़रूरी है, सीखना भी चाहिए। और आजकल देख रहे होंगे स्कूल्स कॉलेज में छोटे लेवल के बच्चों के लिए भी जो है कंप्यूटर कोर्सेज या उनका एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। कंप्यूटर कहीं ना कहीं, अगर हमारे यहाँ बात करें, हम अपने यूपी गोंडा ऐसे लोकेशन पे भी बात करें, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रखा गया, या कह सकते हैं कि बहुत देर में आया। अभी बात करें कि बहुत ढेर सारे ऐसे इंटर कॉलेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है नहीं, जबकि वो एज सब्जेक्ट है, साइंस मैथ की तरह वो भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो एज ए सब्जेक्ट अभी इनरोल्ड ही नहीं है। कुछ ही कॉलेज ऐसे होंगे गोंडा में जहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी है दैनिक जीवन में। काम करना अलग है, वो तो अब उसके बाद वो डिसाइड करेगा, पहले बेसिक तो सीखे, फंडामेंटल तो उसको आए, ताकि उसकी कम से कम अपनी लाइफ में तो समस्याएं ना आए। कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल पूरा चल ही रहा है, विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन समस्या आएगी। सर मैं बताऊं आपको, ऐसे ऐसे कंप्यूटर में ऐसे ऐसे लोगों को मतलब टीच किया गया है कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब अभी 2-3 साल बची है, यानी मतलब वो 56-57 के हो गए, 2-3 साल उनकी जॉब बची है, और लेकिन जॉब नहीं चल पा रही है। उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखना है, उनको ईमेल सीखना है, उनको स्मार्ट क्लासेस देनी है, पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफ़र करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ये चीज़ें उनको 57 ईयर ओल्ड हैं और उनको सीखना पड़ रहा है। तो ये इस एज में नहीं, हम स्टूडेंट लाइफ में ही कंप्यूटर कोर्स किसी भी टाइम किसी भी अपने स्टैंडर्ड में बेसिक फंडामेंटल तो ले लें, बाकी करियर बनाने वाली बात है। इस पे तो सर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उस पे मैं बोल सकता हूँ। जैसा
7: करियर पे भी हम आ ही रहे हैं जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे, आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, आपने कहा कि इतना प्रायोरिटी अभी शायद दिया नहीं गया है। मुझे भी लगता है कि कंप्यूटर को बस एक शॉर्ट टर्म कोर्स कितना लोग देखते हैं कि CCC कर लिया और कंप्यूटर तो आ गया। हालांकि कंप्यूटर एक बहुत वास्ट फील्ड है, और बहुत आगे तक लोग जाके बहुत बड़ी बड़े मेट्रो सिटीज में और एक अच्छे सैलरी पैकेज पे लोग काम करते हैं, अगर जो कंप्यूटर पे डेडिकेट होके करते हैं। ठीक है
8: जी। और सब मैं बताऊं, बच्चे को जो मेरे लेवल पे यानी जो गोंडा लेवल पे बच्चों को जो पता है कंप्यूटर के बारे में, उनको लगता है कि एक आध एप्लीकेशन वो जान गया, वो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना जान गया, वो थोड़ा सा टाइपिंग का जान गया, वो बोला मुझे कंप्यूटर आ गया। सर कंप्यूटर में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे और सब्जेक्ट्स हैं ऐसे इसमें भी फील्ड है। वो अकाउंटेंट बनना है कि उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है कि उसको डिजाइनर बनना है कि बहुत ढेर सारे फील्ड्स हैं कंप्यूटर।
7: राकेश जी थोड़ा सा आप ग्लिम्स दे दिए जिन फील्ड्स का आप नाम ले रहे हैं आप, या यूं कहें कि हम यही पूछना चाह रहे हैं आपसे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं अगर आगे जाके देखते हैं।
8: सर ऐसे अगर मैं बात करूं, अभी तो टीचिंग प्रोफेशन तो है ही है।
7: हाँ,
8: और मेरे ख्याल से कंप्यूटर टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत ही वास्ट फील्ड है।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
8: एक अपॉर्चुनिटी तो ये है
7: ही है।
8: कंप्यूटर अगर आप बेस्ट सीख ले तो वो कंप्यूटर, क्योंकि अभी बहुत रिसेंट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कहीं मैंने पढ़ा था कभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की कंप्यूटर लिटरेसी सर लगभग 5-7% कंप्यूटर लिटरेसी। वो भी जब ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर जिस गाँव से बिलोंग करते हैं उस गांव में अगर 3000 की पॉपुलेशन है तो आप गिन सकते हैं कंप्यूटर कौन कौन जानता है। 1-2-3 तीन से चार बंदा आपको मिलेगा ऐसा।
7: 3000 में लगभग
8: 1000-1 मिलेगा, वो भी पक्का नहीं है कि हर गांव में मिल ही जाए। वो सबको जब मैनेज करके, कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज हैं जहां की लिटरेसी रेट ज्यादा है, उस सबको अगर हम ओवरऑल मैनेज करें एवरेज करें तो लगभग 5-7% कंप्यूटर लिटरेसी है। बहुत पीछे हैं हम कंप्यूटर लिटरेसी में। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बच्चों को इसको इस फील्ड में आना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, और ये आजकल डिजिटल की वजह से बहुत ही बेहतरीन फील्ड।
7: ठीक है, ये तो बात आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन अभी आजकल एक नया एक कीवर्ड यूज किया जाता है फ्रीलांस
8: जी,
7: या शॉर्ट टर्म, मतलब कह सकते हैं पार्ट टाइम जॉब भी कह सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब में कौन कौन से कोर्सेज क्या क्या करके इससे अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में पहले
8: जी, जी बिल्कुल। अगर बात करें हम तो फंडामेंटल तो उसको पढ़ना ही
7: जी,
8: बेसिक्स जिसको हम ABCD कहते हैं,
7: राइट,
8: वो कंप्यूटर। और ये अभी मैं बताऊं आपको, हमारे एक मित्र हैं वो कंप्यूटर में MTech हैं कंप्यूटर साइंस में, वो इस फील्ड में जॉब करते हैं, काम करते हैं, अपना फ्रीलांस काम ही करते हैं। जब उनसे लोग मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि सर मेरे बच्चे को भी लगा लीजिए जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम है, उनको लगता है कि ये तो सारे पैसे घर में ही बैठ के कमा रहा है और ये कहीं जॉब वॉब पे नहीं जा रहा है, तो उनके रिलेटिव्स हैं आके कहते हैं कि मेरे बच्चे को भी लगा लीजिए, भैया कौन सा काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया कम से कम अपने बच्चे को 3 साल कंप्यूटर सिखाओ, उसके बाद मुझसे मिलाओ। मतलब 3 ईयर का कम से कम कंप्यूटर फील्ड में वो कोई कोर्स
7: किया होना चाहिए,
8: तब तो वो मेरी बात को समझ पाएगा, फावड़ा थोड़ी चलाना है मेरे यहाँ।
7: बिल्कुल, बिल्कुल है ना? सही बात है। ओके,
8: तो वो चीजें हैं। तो फ्रीलांस में भी बहुत वो वर्क फ्रॉम होम बहुत ढेर सारे लोग काम करते हैं कंप्यूटर में, बस उसमें ये है कि फंडामेंटल के बाद वो बच्चा खुद थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करे, बट डेवलपिंग, डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, कंटेंट राइटिंग, टाइपिस्ट,
7: टीचिंग
8: सब पोस्ट ही पोस्ट हैं,
7: बहुत ज्यादा है,
8: बहुत ढेर सारा है, तो वो जाना किधर चाहता है। लेकिन आफ्टर फंडामेंटल ये डिसाइड कर पाएगा, वो पहले ही दिन आके नहीं बता पाएगा कि मैं डेवलपर बनना चाहता हूँ, पहले भैया तुम बेसिक कंप्यूटर लर्नर बनो, तुम सीखो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है।
7: बिल्कुल सही बात है। जैसे अब किसी का मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये ज्यादा चांसेस होंगे कि वो अकाउंटिंग प्रेफर करेगा
8: जी, जी, जी।
7: किसी को डेवलप करना बनाना क्रिएशन में होगा तो वो डेवलपिंग में जाएगा, डिजाइनिंग में जाएगा,
8: लॉजिकल होगा।
7: किसी को बच्चों से या लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा तो वो टीचिंग प्रेफर करेगा। तो ये तो आपने सही कहा कि एक वक्त तो उसको देना पड़ेगा पहले बेसिक्स जानने के बाद, उसी बीच में वो ये जान पाएगा कि वो किस फील्ड के लिए ज्यादा परफेक्ट है,
8: ज्यादा परफेक्ट
7: यानी किस फील्ड में जाने के बाद उसको थोड़ा सा आसान होगा बनिस्बत दूसरी फील्ड्स के।
8: जी जी सर मैं बताऊं, अभी एक कंप्यूटर कोर्स है ओ लेवल,
7: जी बिल्कुल
8: कराती है ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स है, 1 ईयर का डिप्लोमा है, उसमें जो 4 पेपर्स है IT टूल्स नेटवर्क बेसिक्स है, और ये वेब डिजाइनिंग पेपर है, तीसरा पेपर पाइथन प्रोग्रामिंग है, चौथा IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हर लगभग सारे फील्ड को कनेक्ट करा देती है। मतलब ये फंडामेंटल कोर्स में ही आता है, बेसिक कोर्स में ही आता है 1 ईयर के डिप्लोमा में, लेकिन सारी फील्ड को लगभग टच करा देती है। आफ्टर दैट बच्चा वो डिसीजन ले सकता है कि वो किस कोर्स में जाके स्पेशलाइजेशन कर ले, कि वो IoT फील्ड में जाना चाहता है या पाइथन प्रोग्रामिंग सीख करके डेवलपिंग में जाना चाहता है, या HTML CSS JavaScript लैंग्वेज सीख करके वो किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना चाहता है, वो डिजाइनर बनना चाहता है CSS वगैरह का यूज़ करके, अलग अलग फील्ड्स।
7: बिल्कुल सही कहा आपने कि कई सारी इसमें अलग अलग फील्ड्स। अब थोड़ा सा कोर्स के ऊपर आते हैं, पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो बिल्कुल लेमैन है इस मामले में, जिसको बिल्कुल नहीं पता है, उसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है?
8: सर एक शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जैसा कि मैं सोचता हूँ बोलना चाहिए, CCC एक कोर्स है, CCC 3 मंथ का कोर्स है, और उसमें कंटेंट जो रखे गए हैं वो 9 चैप्टर हैं उसमें, और उसमें प्रैक्टिकल के 3 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स थ्योरी हैं कंप्लीट। बच्चा आता है CCC में एडमिशंस लेने के लिए और उसको कंप्यूटर अभी नहीं बिल्कुल पता है, एकदम 0 है, और कहता है सर मुझे CCC करना है। मेरा सजेशन उसको ये है कि वो डायरेक्ट CCC कोर्स में एडमिशन ना ले, उसके पहले और जो फंडा है, फंडामेंटल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उसको पढ़ के तब उस सिलेबस को पढ़े। मतलब आफ्टर कह सकते हैं कि वो बेसिक के बाद ही वो CCC करे। अब वो आता है CCC एडमिशन लेता, 3 मंथ लिमिटेड पीरियड है, वो क्या सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके बाद एग्जाम आ गया, बच्चा चला गया। अच्छा बेसिक बच्चे को 15 डेज तो ये लग जाता है कि कंप्यूटर वो ऑन ऑफ कैसे करे, तो 15 दिन उसके कोर्स में ही सॉल्ट हुआ ना भाई। 3 मंथ का अगर कोर्स डिसाइड है तो 15 डेज तो इसी

0: कई कोर्स है, 6 मंथ के कोर्स में डीसीए कोर्स आता है और सर्टिफिकेट्स कोर्स हैं, ऐसे कोर्स को यानी कि कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम दे, 6 मंथ कम से कम 6 मंथ
1: ओके।
0: जैसे बच्चा आता है पूरा वो ग्रेजुएशन 12th के बाद पूरा 3 साल ग्रेजुएशन कर लेगा सब ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको उसको करके ज्यादा है मैं मानता हूँ उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो आता है कहता है सर कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स बताइए जिसमें हमें कंप्यूटर आ जाए, उसमें वो टाइम नहीं देना चाहता। तो ये उन बच्चों को सलाह है मेरा कि कम से कम कंप्यूटर कभी भी वो ज्वाइन करे, किसी भी स्टैंडर्ड में अगर वो ज्वाइन करता है, किसी भी क्लास का बच्चा है आफ्टर 12th ज्वाइन करे तो ज्यादा बेस्ट है जहाँ तक का मैं
1: आफ्टर 12th आपने कहा एक सही जो
0: जी
1: स्टैंडर्ड कहा जाएगा।
0: हाँ बिल्कुल okay. बहुत बच्चे हैं ऐसे कि वो आए 9th में या 10th उनका बोर्ड एग्जाम लगा है आ गए कंप्यूटर में एडमिशन लेने, मैं खुद उनको सजेस्ट करता हूँ जबकि एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ मैनेजर हूँ टीचर भी हूँ ढेर सारी जो है लैंग्वेजेस में खुद पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में समय निकाल के मेरे 7-8 घंटे मेरी क्लासेस हैं पर डे। तो मेरा उसको ये सजेशन है कि वो बच्चा बोर्ड एग्जाम के पीरियड में वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ना आए कंप्यूटर कोर्स ना ज्वाइन करे, इससे उसका बोर्ड एग्जाम प्रभावित होगा।
1: आपकी इस बात से मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब एक तो आपने ये कहा कि मतलब बिजनेस की वजह से आप ऐसा नहीं करते हैं कि भाई आया एडमिशन तो ले लिया
0: ना,
1: पहली चीज। दूसरी बात मुझे लग रही है कि शायद आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर आ रहा है कि कंप्यूटर को एक अलग से टाइम देना, उसको अलग से समझना उतनी प्रायोरिटी जितना बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: या कह सकते हैं कि फिलहाल तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर हर जगह है
0: जी।
1: तो कहने का आपका मुझे जो लग रहा है सेंस वो ये है कि उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप कहते हैं कि उसको एक अलग सेपरेट टाइम दे जिससे बच्चे को समझ में आया कि कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है और उसका बेनिफिट उठा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ। और मैं बताऊँ आपको, मुझे और नहीं पता, मैं अपने इंस्टीट्यूट में जितने भी मेरे पास बच्चे हैं एक एक बच्चे की थ्योरी की कॉपी प्रैक्टिकल की कॉपी सारी नोट्स अगर जो नहीं बनाया मेरे यहाँ नहीं पढ़ पाता है। कोई सोचे कि आए हैं चलो ऐसे बातचीत करते हुए निकल जाएगा 3 महीने 6 महीने साल भर, मैं नहीं पढ़ने देता सर। मैं बोलता हूँ उसको कि भैया ये मेरा कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है यार, मरमर के मैंने सीखा है इसे।
1: सही बात,
0: ठीक है। और आप इसे बता रहे हो कि हम आए हैं गर्मी की छुट्टी में पढ़ने, मत आओ गर्मी की छुट्टी में, फिर पढ़ना है तो मत पढ़ो।
1: बड़ा कैजुअल लेते हैं।
0: हाँ बहुत बहुत एकदम कि कॉपी पता चलता बैग में डली हुई है अगले दिन तक निकली नहीं, मतलब ये बात का मुझे थोड़ा सा दुख भी है, मेरा फील्ड है इसलिए कह सकते हैं। या मैं ऐसे बच्चों को मिलता हूँ वो कहता कंप्यूटर तो पर ऐसे ही है, कंप्यूटर पढ़ लेंगे कंप्यूटर सीख लेंगे, बट उसको वो इम्पोर्टेंस देता नहीं है, एज अ सब्जेक्ट नहीं लेता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं पूरी भरी क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि ये थोड़ा कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ गलत हो रहा है।
1: नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और कहीं ना कहीं सच में जिस इंसान ने उसके बल पे अपना करियर बनाया हो, जिसने एक उम्र गुजार दी हो, जिसने देखा हो कि सच में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, तो आपका ये एज अ टीचर होने का शायद ये कर्तव्य भी है कि कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस को फील करा पाए उन स्टूडेंट्स में
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: जो आपके पास आते हैं।
0: बिल्कुल। और सर जो आप बताए अभी कि आप वो नहीं बच्चा आया मुझे एडमिशन आज ही करा ले, सर करता हूँ
1: बिल्कुल।
0: अगर मैं मिल गया ऑफिस में उसे और कोई एडमिशन आए हैं तो पहले तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ले लूँ और उसके आफ्टर दैट आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा कोर्स करना है और अभी आपको ये उचित है करना कि नहीं करना है, ये भी साथ में समझते चलो। ये नहीं आए हो तुम जल्दी से फीस जमा कर दो।
1: ये अच्छी बात है, ये आपने सही बताया। मतलब कहीं ना कहीं देखिए एक ये भी तरीका होता है राकेश जी अपने इंस्टीट्यूट को रन करने का कि अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे
0: जी,
1: आप बहुत बच्चों का मास तो नहीं रखते हैं लेकिन जितने भी हैं सेलेक्टेड उन पर ध्यान देते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही बच्चे जाके कहते हैं कि हाँ हमने किया इस इंस्टीट्यूट से और हमको सच में बहुत फायदा हुआ। तो ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका लगा, ये अप्रिशिएबल है। इसी बीच हम फिर से आपसे यही कहेंगे कि अपने श्रोताओं से कि वक्त हो चला है एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद और राकेश जी से अब बात करेंगे आने के बाद में कि कंप्यूटर करके जो बाकी कोर्सेज हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में चूंकि अभी सब जगह मैंडेटरी कर दिया गया है स्पेशली टाइपिंग की बात जो है उसको भी लेकर के कैसे सीख सकते हैं, कितना टाइम लगता है और कहां कहां कंप्यूटर बहुत काम आता है जहां पे आपको शायद अप्लाई करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा नहीं तो आप शायद बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं एंड टाइम पे आने पे। इसलिए आपको जाना कहीं मत है, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: करेंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून.
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी.
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग. कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे.
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन.
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए. पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा.
3: अरे सुना?
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट.
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12. गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है. पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346. अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर. एडमिशंस ओपन. जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584. 88403395 84 88 40 33 95 84. अब सपने होंगे साकार.

0: एक बार फिर से हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद में। हमारी बातचीत का दौर जारी है मिस्टर राकेश जी से, और उनसे चूंकि हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी अभी तक जानकारी ली है, और अभी कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिसको अब हम पूछने वाले हैं। पहले तो राकेश जी, हमको आप ये बताइए कि मैंने जहां तक देखा है, सुना है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में टाइपिंग की स्पीड मांगते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: और बच्चे अक्सर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, मेंस करने के बाद आपको पास आते होंगे कि टाइपिंग हमको सिखा दीजिए।
1: जी जी जी।
0: तो टाइपिंग को लेके क्या रोल है, पहले तो हमको ये बताइए, और एक टाइपिंग की जो ड्यूरेशन है किसी की भी नॉर्मल जनरल इंसान के सीखने की, वो लगभग कितनी है?
1: सर वैसे टाइपिंग में अगर बात करें इंग्लिश टाइपिंग, तो इंग्लिश टाइपिंग नॉर्मली बच्चा या कोई भी ऐसे बोलता है कि इंग्लिश तो मुझे आता है, लेकिन गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है 35 वर्ड पर मिनट किसी एग्ज़ाम में, 30 वर्ड पर मिनट
0: स्पीड में, यानी
1: स्पीड इंग्लिश में, हिंदी में 25, किसी में 30 वर्ड पर मिनट, ऐसी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बच्चे ऐसे सर इंस्टीट्यूट में आते हैं, और ये मैं बहुत साल से देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं दुखी भी हूँ इस बात को लेकर।
0: अच्छा।
1: कि बच्चा जब मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, SSC एग्ज़ाम हुआ या कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन हुए जिसमें फाइनल सिलेक्शन उसका टाइपिंग है, कट ऑफ तो बन गई, प्री हो गया, मेन हो गया, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन उसका होना है वो टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा, तभी हो पाएगा। अब पता चला मेन एग्ज़ाम पास कर लिया, टाइपिंग के लिए उसको विभाग से मिलता है 2 महीने का वक्त कि आप 2 मंथ प्रैक्टिस करके और फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब बच्चा मेरे पास आया भागा भागा, सर कोई ऐसा व्यवस्था करिए, 2 महीने मेरे पास है, 3 घंटे करा दीजिए सर, 5 घंटे करा दीजिए सर, फीस ले लीजिए, लेकिन 2 महीने बाद मेरा टाइपिंग टेस्ट निकल जाए। मैं बोलता कि बेटा नहीं हो पाएगा। और ये मैं उसे क्यों बोल पाता हूँ, बिना उसको टेस्ट के बोल पाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं 2008 से देख रहा हूँ ऐसे केसेस, लोग आते हैं और कोशिश किया भी गया, 4-4 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस। यहाँ टाइपिंग में सर स्पीड लाने के लिए उसको 4-5 घंटे कंपलसरी नहीं है, कीबोर्ड के साथ पर डे इंटरैक्शन जरूरी
0: है। एक्चुअल बात तो ये है,
1: ये है एक्चुअल, यही है वो, उसको लगता है कि चलेंगे अभी हम 10 आवर्स कर लेंगे, बस पता चला खटखट खटखट हम 1 महीने में पूरा 6 महीने का टाइम दे करके वो टाइपिंग सीख लेंगे, नहीं होगा सर। दरअसल होता क्या है, जैसे हम लोग अभी बेसिक देखिए, अपना फ़ोन हम आप उठाएं हाथ में तो डिस्प्ले किस बटन से दिखेगा, हमारी उंगलियों को बताना नहीं पड़ता है, वो उंगलियां वहीं पहुंच जाती हैं और डिस्प्ले दिख जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये क्या हुआ, ये कि हमारी उंगलियों को ऑलरेडी सेंस्ड हैं वो, कि मुझे यही करना है। टाइपिंग के साथ भी बिल्कुल टोटल वही गेम है, बस ये बच्चों को नहीं समझ आता, उनको लगता है कि 1 महीने में हम टाइपिंग निकाल देंगे, 2 महीने में निकाल देंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि उंगलियों को सेंस कराना है कि कौन सी की से कौन सा उंगलियां उनका, कौन सी उंगली उनकी प्रेस करेगी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये लाने के लिए मैं तो मानता हूँ कि अगर वो 1 आवर पर डे करे तो कम से कम 6 मंथ।
0: 6 महीने आपने कहा कि लगभग लग जाते हैं, क्योंकि 20 साल का जाहिर सी बात है आपको अनुभव है
1: जी,
0: तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हों, तो आप ही ये आपकी बात से निकल के आया कि 6 महीने लगते हैं।
1: हाँ, कम से कम,
0: कम से कम। एक तो ये लूप होल्स हुआ, दूसरा एक ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे अब जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं।
1: जी जी जी जी।
0: और बच्चे ने 2-3 साल 4 साल 1 साल जम के पढ़ा, अपने सब्जेक्ट पूरा रट लिया, बहुत अच्छा है।
1: जी जी।
0: लेकिन अब मसला कहाँ आता है, एग्जाम में, जस्ट एग्जाम वाले दिन।
1: जी जी।
0: कंप्यूटर पे हो रहा है।
1: जी जी।
0: और जैसा कि आपने कहा उस चीज वो, उससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि जब तक जिस चीज से आप फ्रेंडली नहीं है, अचानक मिलने पे आप उसके साथ
1: अनकंफर्ट होंगे
0: क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो उस दौरान बच्चे के अंदर आप किस तरह की प्रॉब्लम्स पाते हैं, बच्चे किस तरह से आपको शेयर करते हैं कि उनको बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता था और उन्होंने 2-3 साल पढ़ाई की, उनको सब्जेक्ट की तो अच्छी नॉलेज थी बट कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, और एट द एंड उनके साथ क्या हुआ?
1: सर ऐसे बच्चे अपना एग्जामिनेशन एग्जाम हॉल में बैठने के बाद क्वेश्चन आते हुए और टाइम निकल जाता है और बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, टिक नहीं कर पाते, क्योंकि माउस और कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके लिए इसीलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि वो कंप्यूटर फील्ड में जाएगा बच्चा कि नहीं जाएगा, ये मैटर नहीं करता। अब ये मैटर है, 99% एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होंगे, जिसमें कीबोर्ड माउस की हैंडलिंग बहुत ही कंपल्सरी है, जरूरी है, तो उसको बेसिक कंप्यूटर्स सीख ही लेना चाहिए। अभी नीट के एग्ज़ाम हैं, अभी रिसेंट में नीट के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसमें बच्चे को अगर कीबोर्ड और माउस की प्रैक्टिस नहीं होगी। सर और टाइपिंग के बारे में एक बात और बोलूंगा
0: जी जी,
1: कि बच्चा अगर कीबोर्ड उसको चलाना नहीं आता है फिर वो कितना भी बड़ा मास्टर हो फेल है। और कीबोर्ड प्रैक्टिस से ही आता, इसको कोई सिखा नहीं सकता। हम बहुत अच्छे मास्टर हैं, हम बहुत अच्छे टीचर हैं कंप्यूटर के, लेकिन बच्चा सोचे कि मेरा कीबोर्ड आप चला देंगे तो वो हम कैसे चला पाएंगे, उसका तो सेल्फ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा वो पहले क्या है, जिस बच्चे को कीबोर्ड आता है कंप्यूटर वो तेजी से सीख भी लेता है, ऑप्शंस वो आसानी से सीखेगा। क्यों? क्योंकि कोई काम आप बोलोगे वो तुरंत इनपुट करा के, पहले डेटा तो सिस्टम में डालोगे तब तो ऑपरेशन करोगे भैया। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि कीबोर्ड से आप पहले इंस्ट्रक्शंस तो सिस्टम में ले जाओ, वो मैटर ही नहीं है किस पे ऑपरेशन करेंगे, हम किसको बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, पहले इनपुट कराएं। यहाँ कीबोर्ड का रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
0: और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रोल शायद वही वाली बात है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
1: यस यस बिल्कुल बिल्कुल, ओनली प्रैक्टिस,
0: शॉर्टकट नहीं है। जितना
1: कोई शॉर्टकट नहीं सर, मैं बताऊं, बच्चा आता है और कहता है सर ये बताइए टाइपिंग में क्या क्या चीज बता देंगे हमको। मैं उसको एडमिशन लेने से पहले बोलता हूँ कि मैं टाइपिंग केवल आपको कैसे उंगलियां रखनी है, कैसे आप इंग्लिश में कहां से रखना शुरू करोगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हिंदी में कहां से शुरू करोगे, फिर बहुत ढेर सारी कन्फ्यूजन सा टाइपिंग में। एक बात और आ गई याद बता दें बच्चों को
0: जी।
1: कि मैं बताऊं हिंदी टाइपिंग में दो चीज़ें हैं, दो फॉन्ट हैं, एक कुर्तिदेव फॉन्ट है, एक मंगल फॉन्ट है
0: जी।
1: कई ढेर सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं कि वहां मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग, बच्चा कुर्तिदेव सीख के चला गया। उनको ये सलाह है कि नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें अपने एग्जामिनेशन का, एग्जाम नोटिफिकेशन कि उनके यहाँ कौन सी टाइपिंग मांगी गई है, कुर्तिदेव या हिंदी, मंगल फॉन्ट, दोनों से हिंदी ही टाइप होता है, बट अगर हम डी अल्फाबेट दबा रहे हैं तो कुर्तिदेव में कुछ और वर्ड हिंदी का बनेगा और मंगल फॉन्ट में हिंदी का कुछ और बनेगा डी से। अब पता चला बच्चा कुर्तिदेव पढ़ के चला गया, वहाँ करना टाइपिंग मंगल पे है, एक लाइन उससे नहीं लिख गया पैराग्राफ तो छोड़ दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपना नोटिफिकेशन, बच्चा आज तक जानता ही नहीं है कि कुर्तिदेव और मंगल दो हिंदी के फॉन्ट हैं, वो आता है सीधे हिंदी सिखा दीजिए। फिर मैं पूछता हूँ कि हिंदी में क्या, कहता सर ये तो नहीं पता है, फला एग्जाम देना है, फिर उसका नोटिफिकेशन मैं सर्च करता हूँ।
0: क्या बात है, मतलब आपने जो चीज अभी उठाई है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही माइन्यूट थी लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने सही कहा कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट स्टाइल, एक मंगल आपने बताया, एक कुर्तिदेव बताया। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्या दोनों ही फॉन्ट पे टाइपिंग कराई?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे के जरूरत के हिसाब से,
0: बच्चे की जरूरत की
1: जी। अगर वो बताया कि हमें फला एग्जाम देना है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में, एएसआई वगैरह में, एआरओ वगैरह में, ये सारी एग्जामिनेशन जो है इसमें मंगल फॉन्ट चलता है, बिजली डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इसमें कुर्तिदेव फॉन्ट है, जैसे कुछ अब हमको भी पता है, सारी नोटिफिकेशन मैंने स्टडी कर ली, बच्चों के लिए
0: पढ़ के अंदाजा अब चुकी हो गया है
1: जी जी, बच्चों के लिए ही पढ़ना पड़ता है।
0: तो मान लीजिए कोई अगर आता है और उसको ये कहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, बस हिंदी टाइपिंग सिंपल बता दिए जो जिसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है,
1: हाँ,
0: तो ज्यादातर में आप क्या प्रेफर करेंगे?
1: कुर्तिदेव सिखाएंगे,
0: कुर्तिदेव
1: जी। लोकल एरिया में जैसे मान लिया उसको अभी कचहरी पे काम है
0: जी जी, वही
1: ऐसे लोकल लेवल में ऑफिशियल लेटर टाइपिंग है, कोई डिपार्टमेंट अगर वो नहीं बताया, ऐसे बताया बेसिक नॉलेज, तो कुर्तिदेव सिखाऊंगा।
0: तो सर ये बताइए कि फर्क क्या है दोनों में?
1: सर मेन फर्क तो थोड़ा सा कंप्यूटर जानकार लोग ही समझेंगे इस बात को
0: जी,
1: जो कुछ कंप्यूटर फील्ड से होंगे।
0: ओके,
1: जो मंगल फॉन्ट है, जैसे मान लिया हमें ईमेल लिखना है,
0: ठीक है,
1: तो ईमेल में हम मंगल फॉन्ट में सीधे हिंदी टाइप कर सकते हैं।
0: ओके,
1: बट कुर्तिदेव फॉन्ट में हम ईमेल में नहीं लिख सकते, हम थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुर्तिदेव फॉन्ट जो मेरा फॉन्ट है वो थोड़ा सा जुगाड़ू फॉन्ट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब परफेक्ट फॉन्ट मंगल फॉन्ट ही है जो हम इंटरनेट वगैरह पे पोर्टेबल है, बाई डिवाइस टू डिवाइस हमारा लेटर जाना है, हमारा कंटेंट जाना है। कई बार देखते होंगे हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं ना, वहाँ सामने वाले के यहाँ गया, डिब्बा डिब्बा करके बन गया,
0: बिल्कुल
1: वो पढ़ने में नहीं,
0: ये प्रॉब्लम होती है,
1: ये प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या हुआ, जैसे डिवाइस का प्लेटफॉर्म बदला, वो फॉन्ट वहाँ उसके पास था नहीं, और वो उसको वो
0: डिकोड नहीं कर पाया,
1: डिकोड नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इस अगर बात करें इस उद्देश्य से तो हम मंगल फॉन्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे।
0: वाह बहुत अच्छा। शायद ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी लोगों में, और कहीं ना कहीं आपने आज क्लियर कर दिया। इवन मुझे भी थोड़ा सा आज इसके बारे में क्लैरिटी ज्यादा हो गई है। मुझे ये तो पता था दो कहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, ये आज आपने बखूबी बता दिया, थैंक यू सो मच। अब चूंकि एक बहुत अहम बात आती है, जैसा कि आपने बताया था कि आपने अपना करियर चूज किया था
1: जी,
0: आपके पास ज्यादातर मुझे जो लगता है वो टीनेजर्स ही आते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: यानी 11th 12th या अपना ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो उस सिचुएशन पे राकेश जी आप भी उस फेज को पार करके गए हैं, और मैंने भी किया है और आज बच्चे कर रहे हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन बहुत होती है करियर को लेकर। तो एक तो आप सिनारियो में इस तरह बताए कि अगर कोई कंप्यूटर प्रेफर कर रहा है उसके लिए वो कैसे क्या करे, या एक आम तौर पे आप बताए कि वो कोई भी फील्ड में जाना चाहता है
1: जी जी
0: तो क्या करे।
1: चलिए एक सर मैं इस पे एक बात बताऊं, मेरे यहाँ जो बच्चों का ये सिलेक्शन है उनके सब्जेक्ट्स को लेके, या आफ्टर ट्वेल्थ वो बीए करे, बीकॉम करे, बीएससी करे, इसको लेके जो उसकी समस्या है, वो उसका सेल्फ, चूंकि सेल्फ डिसीजन वो लेने में अभी सक्षम है नहीं,
0: सक्षम नहीं हो पाता,
1: वो अगल बगल मतलब कुल मिला के एनवायरनमेंट या अगल बगल से जो लोग हैं उन्हीं से लेता है
0: जी जी।
1: और खास करके मैं देखता आ रहा हूँ कि वो बच्चा जरूर गलती कर जाता है कि वो दोस्त ने बीएससी करा इसलिए मैंने भी बीएससी
0: कर लिया। सही है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं
1: ऐसे उन्हीं से। कोई बच्चा आया है, उसका प्लान था कि हम 6 महीने कंप्यूटर सीखेंगे, दूसरे ने 1 साल में एडमिशन ले लिया, सर मेरा भी ऐसा करिए, मेरा 1 ईयर में करा दीजिए। फिर मैं उसे रोकता हूँ कि तुमने अभी तक क्या सोचा था, तो तुमने 6 महीने में लिया था, अभी क्यों तुम बदल रहे हो, सर मेरा दोस्त ले रहा है। तो हमने कहा दोस्त अलग है, उसका अपना विजन है, उसका अपना करियर है,
0: जाहिर सी बात है।
1: तो आप अपना सोचो अपने बारे में खुद, तो तुम्हारे पास खुद की तो कुछ होगी ना थिंकिंग, तुम्हारा भी तो कोई विजन होगा कि तुम्हें क्या करना है, कि दोस्त ने बीएससी कर लिया तुम भी कर लोगे। ये तो बच्चों को इस पे क्या है, और सर फील्ड कोई भी हो, बीए हो, बीएससी हो, सब्जेक्ट्स का नॉलेज उसे लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा अगर उसको आगे ग्रोथ करना है। डिसीजन वो ले तो फिर उस पे लग जाए। मैं ये देखता हूँ अभी बहुत ऐसे गार्जियन मेरे पास आते हैं कि हाँ सर इतने साल से एजुकेशन फील्ड में कुछ सलाह देंगे, निःशुल्क वाला कि हाँ चलते
0: निःशुल्क वाला
1: कि हाँ चलते हैं, पूछ लेंगे कि बेटे को हम सर यहाँ एंट्रेंस के लिए भेज दिए, सोच रहे हैं बीएससी में एडमिशन करा दें। मेरा सजेशन है बीएससी में एडमिशन मत करो, 1 साल में आपका बच्चा तीर नहीं मार देगा। वो गया है एंट्रेंस की तैयारी करने, नीट की तैयारी करने गया है, तो उसको केवल नीट करने दो। अगर वो 1-2 साल में ट्राई करके नहीं कर पाता तो बीएससी फिर रेगुलर मोड में करा दे,
0: तो ऑप्शन है ही है,
1: ऑप्शन है ही है। लेकिन बच्चे को 20% आप अभी एंट्रेंस के पीरियड में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, कहीं ना कहीं भाई बच्चा गया है एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने, अब पता चला बीएससी का एग्जाम आया, आप उसे बुला लिए कि भैया बीएससी का टाइम टेबल आ गया, बट्टे बीएससी का मिड टर्म एग्जामिनेशन आ गया, ये आपने उसको बुला लिया।
0: सही बात,
1: तो कहीं ना कहीं बच्चे का लॉस होगा, उसका माइंड डाइवर्ट जरूर होगा। तो इसलिए उसको जो भी काम दीजिए उसको सिंगल काम दीजिए और उसी पे वो लगे, उसी को करे।
0: बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही प्रिसाइज में बताया कि किस तरह कंसंट्रेट होके किया जा सकता है, और बच्चों के साथ ये फेज आती है, हम सभी लोगों ने इसको फेस किया हुआ है। थैंक यू सो मच, आज हमने आपकी लाइफ के रिगार्डिंग आपसे कई क्वेश्चंस किए हैं, जिसका आपने बखूबी बहुत इजी वे में आंसर दिया। इसके अलावा आपने कंप्यूटर को लेकर आज जो जानकारियां दी हैं वो हमारे श्रोताओं के मन में उठ रहे बहुत सारे प्रश्नों को शांत करता है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए।
1: थैंक यू।
0: लेकिन जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो हम हर गेस्ट से करते हैं, कि आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल के पहले कम्युनिटी रेडियो FM के स्टूडियो में, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन में। इसके गोंडा में आने से आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आने वाले वक्त में होने वाला है?
1: सर पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे इसका हम लोग सुनते थे कि लखनऊ में या कहीं हम लोग जाते हैं, बाराबंकी निकलते हैं तो एक चैनल पकड़ता है, ये सुनते थे। अब जब ये मेरे घर में, मेरे गोंडा, मेरे शहर में है, तो सर पहली बात तो इसके नाम से ही हम प्रभावित हैं कि ऐसी कोई चीज है जो गोंडा में कम से कम स्टार्ट तो हुई।
0: करेक्ट
1: जी। और बाकी अपने लोकल लेवल की जो बातें हैं सर, जैसे बहुत ढेर सारे गेस्ट आते हैं,
0: आप ही आए हैं कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं।
1: जी जी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन, लोगों को नॉलेज या अपने लेवल पे बहुत बेनिफिशियल है सर।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज आपका टॉक शो बहुत बेनिफिशियल रहा, उसी तरह आप इसके होने की कामना करते हैं। और बखूबी राकेश जी, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने प्यारे लिसनर्स को हर तरह की फील्ड के लोगों को बुला के उनसे उनकी फील्ड के बारे में जाने, माइन्यूट लेवल पे जो जो कॉमन क्वेश्चंस लोगों के जहन में उठते हैं, ध्यान में आते हैं, उसको लेके उसको कहीं ना कहीं उसका जवाब उनको मिल जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू सो मच। और अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, उनके बारे में जानेंगे, उनकी फील्ड के बारे में जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, अपना ख्याल।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
9: डिलीशियस
0: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
10: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और,

0: डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द वायरस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

मैं चढ़ती गई और चढ़ती गई, प्रभु शिखर कहाँ है? मैं लगातार हल चलाती गई, हे प्रभु ज्ञान का खजाना कहाँ है? मैं लगातार नाव चलाती रही, हे प्रभु द्वीप कहाँ है? हे सर्वशक्तिमान मेरे देश को आशीर्वाद दे, दृष्टि की जो पराकाष्ठा है उसे दूर, दृष्टि और परिश्रम से सुख प्राप्त कर दे। ऐसी बड़ी सोच वाले व्यक्तित्व को आज ही के दिन हमने अलविदा कहा था। जी हाँ, आज 27 जुलाई वो हमारे इतिहास का काला दिन है जिस दिन हमने अपने देश के ऐसे हीरे को खोया जिसे खोना हमारे लिए अभी तक का सबसे बड़ी क्षति मानी जा रही। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस व्यक्ति की जिसने कहा था कि युवाओं को बड़ा सोचने और जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करना सपनों की उड़ान है। जी हाँ, आज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ना चाहते हुए भी अलविदा कहना हर किसी की मजबूरी होती है क्योंकि जिंदगी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो मैं भी कहूँगी आप लोगों से कि यार जिंदगी के पल जो है ना बहुत ही लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड पलों को हमें करना चाहिए यूटिलाइज, और जितनी भी फालतू की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उन सबको इरेज करते हुए हर वो नई चीज़ को हमें शुरू करना चाहिए जो एक देश के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए और एक अच्छे समाज के लिए ज़रूरी है। उन सारी अनवांटेड चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए जो आपके कीमती समय को बर्बाद कर रही हैं। जिस समय के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, आपको नहीं पता कि आपकी और हमारी क्या डेडलाइन है, भगवान ने क्या डेडलाइन तय की है, पर जितनी भी ज़िंदगी है अगर उसको ये समझे कि आज ही आखिरी दिन है तो मुझे लगता है हम हर चीज़ को मन लगा के करेंगे। जिस दिन से हमने ये सोचना शुरू कर दिया अरे यार आज ही आखिरी दिन है मेरा इस दुनिया में, बस देखिए ऐसा जादू हो जाएगा ज़िंदगी में कि हमने इमेजिन नहीं किया होगा यार, ऐसा जादू, ओ माई गॉड। तो आप हम सब मिलके इस बात पे एक बार सोचें, अपने जीवन के एक एक क्षण को यादगार बनाएं, या इतिहास नहीं बना सकते लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए अगर वैल्यूएबल बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए। क्या कहते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं? और मेरे इस थॉट से या एपीजे अब्दुल कलाम ने तो बहुत ऊंचे विचार दिए कि मैं उन विचारों को शायद एक बार सुन के महसूस भी कर लूँ 2-3 घंटे के लिए और उन विचारों पे अमल कर लूँ 2 घंटे के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगी कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के हमारे जीवन में आए हैं, तो उस प्रेरणा को हमें ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे बीच उनकी जो अनमोल यादें हैं उनसे सीखते हुए हमें भी अपना एक एक, मतलब मैं आखिरी दिन की बस बात करूँगी कि हमें अपने आखिरी दिन आने के पहले अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए और दूसरों के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और जितने भी यार नेगेटिव थॉट्स हैं सबसे पहले तो उसको दरकिनार करना चाहिए। क्या बोलते हैं, हो सकता है ऐसा? अगर आप सोच लें, आप ठान लें तो दुनिया में क्या ऐसा है जो नहीं हो सकता, मुझे जहाँ तक लगता है। गुड इवनिंग अनोखी, गुड इवनिंग सोनिया, गुड इवनिंग अनिल शास्त्री जी, गोरखपुर से स्वागत है आपका। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका। वैसे सोनिया एंड अनोखी आप दोनों को जानना चाहती हूँ, आप दोनों कहाँ से बात कर रही हैं? दोनों को मतलब अभी रिसेंटली मैंने देखना शुरू किया तो मैं जानना चाहती हूँ किस जगह से, गुंडा शहर से हैं या शहर के बाहर से, तो बिल्कुल जानने की इच्छुक हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही इस शाम को आनंदपूर्वक म्यूज़िकल ब्रेक के साथ एंजॉय करती रहिए। और वैसे आपको मैं बता दूँ कि आज आपका डे है, यानी कि आपका कॉलिंग डे है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग आज बढ़िया बढ़िया से गाने सुनाएं और
कुछ ऐसे गाने भी सुनाए जिन गानों के बीच में कोई कहानी छिपी है। मैं भी सुनाऊंगी आज एक ऐसा गाना जिस गाने में बड़ी प्यारी सी कहानी है, लेकिन उस गाने के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो उस गाने की कहानी आज आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए। गुड इवनिंग अगेन सभी को, जितने लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं सभी का आरजे बीना स्वागत करती है। और जैसा कि आज बहुत ही खास दिन हमारे लिए है, क्योंकि आज के दिन APJ अब्दुल कलाम, जो कि ना सिर्फ हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट रहे बल्कि हमारे देश के एक मार्गदर्शक बन के भी रहे, उन्होंने हमें हर उस क्षण एक कहते हैं ना कि लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई जब हमारा देश कमज़ोर होता हुआ महसूस किया अपने आप को। तो ऐसे लीडर्स कम हुए, ऐसे ज्ञानी लोग कम हुए जिनके अंदर हर चीज़ की मतलब कहते हैं ना कि दे हैव उन्होंने मतलब अपनी जो बुलंदियां हैं ना सिर्फ ज्ञान से बल्कि देश को भी आगे ले जाने के लिए सोचा। पहला उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया, ना सिर्फ लॉन्च किया बनाया, और एक ऐसे बैकग्राउंड से थे जहां रिसोर्सेस ना के बराबर थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों से जानना चाहती हूँ आप लोग के क्या विचार हैं APJ अब्दुल कलाम के लिए। मेरे लिए तो एक रोल मॉडल, एक ऐसे व्यक्तित्व की मैं चाहूँगी कि ऐसे हर देश में कम से कम 1,00,000 APJ अब्दुल कलाम हो जाए तो किसी भी देश में भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। क्या कहते हैं? एक कवि हैं जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम के लिए कविता लिखी थी, वो पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। और कलाम कहती है कि उनकी कि तुझे महकता फूल कहूँ या तुझे अनंत आकाश कहूँ, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन या तुझे मैं हिंदुस्तान कहूँ, कलम में इतनी शक्ति नहीं मैं कैसे तेरा गुणगान करूँ, हे कर्मयोगी शिक्षाविद किन शब्दों में बखान करूँ। बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसे व्यक्ति जिसकी मतलब जितनी बखान करने का सोचें भी ना, हमारी वो सोच भी कम है। मैं सच्ची बता रही हूँ कि मेरे पास भी उतने शब्द उतनी सोच है ही नहीं कि मैं बखान कर सकूँ। धर्मेंद्र जी हमारे साथ है, आप हमारे शहर से ही हैं तो मुझे इस बात की खुशी है। आप लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। फिलहाल कविता ज़रा ध्यान से सुनिए, आपको भी कनेक्टिव जो लिंक है वो महसूस होगा। कहते हैं, तुझे महकता फूल कहूँ या तुझे अनंत आकाश कहूँ, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन या मैं तुझे हिंदुस्तान कहूँ, कलम में इतनी शक्ति नहीं कैसे तेरा गुणगान करूं, कलम में इतनी शक्ति नहीं कैसे तेरा गुणगान करूं, हे कर्मयोगी शिक्षाविद किन शब्दों में बखान करूं। युवा पीढ़ी की शक्ति थे तुम, जात पात से परे थे तुम, फकीराना जिंदगी जीकर देश प्रेम से भरे थे तुम, अग्नि त्रिशूल पृथ्वी नाग और बनाए एटम बम, आज हमारी ताकत जग में नहीं किसी से देखो कम, अनुशासन प्रिय शाकाहारी, अनुशासन प्रिय शाकाहारी कितने अच्छे कवि थे तुम, अंतरिक्ष स्पेस की दुनिया के भी सिरमौर थे तुम। आई होप इस कविता ने आप सभी को उनसे कनेक्ट होने का मौका दिया। तो चलिए आगे, ये जो कड़ी है रुकने नहीं वाली है, आगे आप लोगों से कॉल पे बात होगी। आप लोग भी अगर अपनी आवाज़ में कुछ सुनाना चाहते हैं तो आपका ये नंबर 6393-3164-29 आपका इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए एक प्यारा सा गाना सुनते हैं और एक खूबसूरत सी सोल को एक अच्छी कहते हैं ना ट्रिब्यूट देते हैं। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

तो भाई आज आप लोग की कॉलिंग वाली जो शाम है तो उसकी शुरुआत आप लोग के साथ ही करेंगे, लेकिन एक कहानी वाले गाने के साथ, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मैं ही कर देती हूँ। नहीं, आप लोग कहेंगे आरजू बीना ने कहा था, शुरुआत करेंगे एक गाने से जिसकी कहानी है। गुड इवनिंग सविता जी, गुड इवनिंग सविता दुबे जी, शास्त्री जी, दोनों को गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरुआत करती हूँ एक गाने की, जिसको आपने सुना होगा कई बार, पर आरजू बीना के साथ सुन के आपको और मज़ा आने वाला है।

पधारो मारे देश। तो भाई इस गाने के पीछे कहानी है, जिस कहानी को आप लोग शायद भूल गए होंगे या आपने सोचा होगा यार ये तो एकदम एक फोक सॉन्ग है जो कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा है। पर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक गाना मात्र नहीं है, ये है एक कहानी जिस कहानी को सालों पहले लोगों द्वारा सुनाया गया और आज इस गीत को महसूस करके हम समझ सकते हैं कि यार गाने अगर कहानियों को बयां करें तो शायद कोई भी गाना या कोई भी कहानी मिट नहीं सकती।

कहानी में जो सबसे पहले किरदार है उसका नाम गाने में कई बार आएगा, पिया प्यारी राढोला आवनी पधारो हमारे देश, ठीक है। अब कहानी में जो मेन किरदार है वो है ढोला, और जो दूसरे किरदार हैं वो है मारू। ढोला और मारू की प्रेम की कहानी छिपी है इस प्यारे से गाने में। जी हाँ, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश ये सिर्फ गाना मात्र नहीं है, ये बल्कि दो जिस्मों में एक जो जान थी उसको बताने वाला गाना है। जी हाँ, ये एक लोकगीत है जो कि लोक कथा पे मतलब पूरा का पूरा बना हुआ है। अब आपको मैं बताऊं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, बाद 8वीं शताब्दी की है, जब नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारू, जिनका पूरा नाम था मारवणी, ठीक है, तो इनकी बचपन में शादी करा दी जाती है जब 5-5 साल के रहे होंगे। उस समय ढोला सिर्फ 3 साल के थे और मारू महज 1.5 साल की थी। अरे यार, मतलब इतने छोटे

क्योंकि 5 साल वाले तो मुझे फिर भी, मुझे लगा 5 साल पे कराई होगी, 5 वालों को तो कुछ याद रहता है कि हाँ मेरी शादी हुई थी, इन लोगों को क्या याद रहने वाला। तो इन लोग की शादी करा दी गई और बचपन में इस जो शादी को जो हुई थी, मारू के घर वालों ने तो बता दिया भाई लड़की थी, और मारू अपने घर चली गई पोंगल, और यहाँ पे समय बीतने लगा ढोला क्या, और ढोला भाई भूल भाल गया, वैसे लड़के जानते ही हैं कूल होते हैं, एक गई दूसरी आएगी, फिलहाल उनको पता ही नहीं था कि उनका मतलब किसी के साथ रिश्ता था, वो भूल गए थे, और ढोला बचपन की बातें सारी भूल गए। ढोला की याद में उधर मारू हमेशा परेशान रहती कि उनका पति कब आएगा, रात दिन तड़पती रहती। वो बड़ी भी हो गई, घर वालों ने बता दिया कि भाई तुम्हारी ढोला से शादी हुई है, और लंबा इंतज़ार किया पर वो आए नहीं। तो उनके पिता ने ढोला को याद दिलाने के लिए एक संदेश वाहक भेजा, जो कि मतलब चिट्ठी विट्ठी लिख के ले गए। लेकिन आपको बता दूं कि उधर ढोला की जो थी, ढोला के घर वालों ने दूसरी शादी करा दी थी, तो वो दूसरी पत्नी को पता था कि ढोला की शादी ऑलरेडी हो चुकी है मारू से, लेकिन वो उधर से जो भी संदेश वगैरह आते थे वो पहुंचने देती थी। तो इस बार ढोला के घर मारू के पिता ने संदेश के साथ एक आदमी भी भेजा, संदेश वाहक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ढोला की पत्नी को जब पता चला तो उसने क्या किया, जो संदेश वाहक थे उनको बाहर ही रोक दिया, बोले कि अरे यार अभी आएगा ये मेरे ढोला को याद दिला देगा कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, मेरा तो पता कट। तो उसने क्या किया, उसने सोचा यार वो बड़ा तेज़ था, मतलब ऐसे संदेश वाहक होने चाहिए, हमारे यहाँ का कोई होता तो कहता कि अरे यार नहीं जाने दिया तो मैं क्या करूं? रोक लिया, मेरा मैसेज नहीं पहुंच पाया, मैं तो गया था लेके। लेकिन वो बहुत चालाक संदेश वाहक था और बहुत कोशिश है कि उसने ढोला से मिलने की, लेकिन किसी ने मतलब उसे लिया नहीं। तो उसने क्या किया, उसने लोक गायकों की जो टोली थी उसको ज्वाइन कर लिया और उसमें गाना मतलब तैयार किया, और गाने वालों ने जाके ढोला के सामने महल में बोला कि यार मैं आज आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाना चाहता हूँ। तो राग छेड़ने शुरू किए और रागों के बीच में पूरी कहानी सुना दी, और गायकों ने बढ़िया चिल्ला चिल्ला के गाना शुरू किया, केजरिया मतलब पूरा मतलब गाने के रूप में पूरी कहानी कह के सुना दी, पधारो हमारे देश, ठीक है। अब भाई ये देखा तो उसको सारी पुरानी बातें याद आ गई, ठीक है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना केसरिया रंग प्यार का होता है, कि मतलब केसरिया मतलब तुम अपना प्यार भूल गए। और फिर मारू को वो लेने के लिए वापस से अपनी मतलब उनके पास गए, लेकिन जो उसकी मतलब वो थी शादी जिससे हुई थी, उसने कई प्रयास किए कि मतलब ढोला जो वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन मारू को इधर पता चल गया था कि ढोला को पता है तो मुझे चलना चाहिए। तो रेगिस्तान में जाके वो लोग बीच में मिले और वहाँ से ही मतलब उनकी जो कहानी है वो पूरी हुई, दोनों मतलब आपस लास्ट में मिल गए थे। ऐसा नहीं है कि सोनी महिवाल की तरह और बाकियों की तरह इनकी जोड़ी अलग हो गई थी, जोड़ी मिली थी वापस, मतलब इतना लोग कहते हैं। मुझे क्या पता भाई, मैं तो आप लोग की तरह हूँ, आठवीं सदी की मैं नहीं लगती हूँ आप लोग को देखने में भी, तो मैं हूँ भी नहीं, लेकिन हाँ जैसा कहानी में सुना है लोग, जो कहानियाँ होती हैं वो सच्ची होती हैं, लोग ऐसा कहते हैं, तो कहानी सच्ची होगी और कहने के अनुसार हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का मिलन हो गया था। और मिलना ज़रूरी है यार, मिलना कभी कभी तो बताना कभी कभी, तो फिलहाल कभी कभी मिलने से अच्छा है कि रोज़ मिलते हैं, हम लोग तो रोज़ ही मिलते हैं, बस एक दिन नहीं मिलते हैं, वो भी एक दूसरे को हम लोग मिस करते हैं ऑन एयर। एनीवे तो चलिए, अब आपके कॉल्स का इंतज़ार बरकरार शुरू हो चुका है, मतलब इंतज़ार लगातार है, तो आप अपना कॉल लगाते रहिएगा और अपनी आवाज़ सुनाते रहिएगा, और हम सुनते हैं ये प्यारा सा गाने वाला ब्रेक जो हमारे इतिहास से कई सारी कहानियों को लेके आया है, मैंने शुरुआत कर दी थी पहले ही, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा एक गानों का समूह जिसमें गाने नहीं फीलिंग्स हैं। अब आप लोग बताइएगा इस पूरे गाने के जो मतलब श्रृंखला है, 10-20 गाने हैं लगभग इसमें, मतलब मैंने गिने तो नहीं बहुत ध्यान से, लेकिन हाँ मान के चल सकती हूँ 10 से ज़्यादा ही गाने होंगे, कम नहीं है। तो आप बताइए इनमें से आपका वाला फेवरेट कौन सा है, मैं बताऊँ मुझे सारे ही फेवरेट हैं सारे गाने मेरे टॉप मतलब एकदम हिट लिस्ट वाले हैं,

0: देखिए, आपके ख्यालों में कोई आता है कि नहीं, लेकिन हमारे पास एक कॉल आ गया और हम उस कॉल को कनेक्ट करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, कैसे हैं? आपका नाम?
1: जी मैं बहुत अच्छे हैं, और मेरा नाम है अविनाश चली और मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से।
0: ओह, त्रिपुरा से हमारे साथ लाइव हैं अविनाश। अविनाश कैसे हैं, पहले तो हालचाल बताइए, मौसम कैसा आपके यहाँ ये बताइए।
1: जी मौसम भी बहुत बढ़िया है और हमारा हालचाल भी बहुत बढ़िया है। सुहाना मौसम भी बना हुआ है और अभी शाम का वक्त है और अभी ठंडी ठंडी थोड़ी सी हवा प्रवाहित हो रहा है, तो दिल बहुत ही गदगद हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, और आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बादलों ने बहुत घेरा बना रखा है, लेकिन बारिश वारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है। तो चलिए, आपकी आवाज़ में आज क्या सुनने को मिलने वाला है?
1: आज देखिए, APJ अब्दुल कलाम, यानी कि हमारे 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं, तो उनका आज पुण्यतिथि है, तो पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देखिए देश के लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने खास करके विज्ञान के क्षेत्र में बताए, या फिर अध्यापक भी रह चुके हैं, और उन्होंने 2002 में अपना क्या भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदार्पण किया था, और 2007 तक उन्होंने इस कार्य में रहे थे। उसके बाद फिर देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको स्मरण करते हैं। और देखिए 2015 में मेघालय के शिलोंग में स्टूडेंट के साथ बातें करते हुए अचानक से उनका जो हार्ट अटैक आया और उसी में वो चल बसे। हम तो देश के लिए ऐसे महान व्यक्ति के लिए आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: क्या बात है, और आपने बहुत अल्प शब्दों में बहुत कम समय लेते हुए उनको एक हिसाब से उनका पूरा परिचय दिया, क्या बात है ये।
1: जी जी, और उनका देखिए कुछ खास मतलब कि उन्होंने बोल के गए थे, जैसे कि देखिए हम लोग जब जो सोते हुए सपना देखते हैं तो ये सपना सपना ही रहता है, लेकिन वो ऐसा सपना देखना चाहिए जो हम हकीकत में जो कुछ कर गुजरे उसी सपन को ही सब सच्चाई में सब वो सच्चाई में सपना माना जाता है। तो ऐसा ही सपना देखें जो हम कुछ कर गुजरे, तो इसीलिए उनका जो ये विचार है वो युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरित करता है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अविनाश जी, बहुत अच्छी से आपने मतलब चीज़ों को बताया, और एक अच्छे नागरिक और एक सच्चे नागरिक होने के लिए और देश के लिए जिसके मन में प्रेम होगा वो अपने उन खास लोगों को याद रखेगा और उनको श्रद्धांजलि ज़रूर देगा जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में और विश्व पटल पे एक स्थान बनाने में जो एक भूमिका निभाई है। क्या बात है अविनाश जी, आज क्या गाना कौन सा सुनाएंगे आज, आप ये बताइए।
1: जी तो आज उनके आज पुण्यतिथि के मैं उन देश के लिए उन्होंने इतना कुछ कर गुजरे हैं, तो उन्हीं के श्रद्धांजलि अर्पित करके एक देशभक्ति गीत ही मैं सुनाना चाहता हूं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है।
1: जी जी, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, सोचो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला हमें घर से निकालेगा, दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मीठे पानी में जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से, तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, तोड़ो दीवारे चार दिशाओं की, रोको मत राहे मस्त हवाओं की, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, क्या भाषा और क्या मजहब क्या नाता है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जी
0: क्या बात है, और सबसे अच्छी बात कि आपको गाना याद है, क्या बात है, मतलब अविनाश जी कैसे आप गाना याद करते हैं ये बताइए।
1: जी मेरा क्या है, देखिए देशभक्ति गाने मुझे खास करके बहुत ही प्रेरित करता है, और जैसे स्वतंत्रता दिवस अभी आने वाला है तो खास करके हमारे जो यहाँ पर जब भी हम अपना राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त के दिन फहराते हैं तो क्या है कि देशभक्ति गीत के लिए जैसे अपना ग्राम पंचायत हो गया इन सब में तो मुझे ही मौका मिलता है गाने के लिए, तो इसी तरह से मैं मुझे कई देशभक्ति गीत पूरे पूरे याद है और मैं गाता भी हूँ यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे मौके पर कुछ बोलने का भी शब्द बोलने का भी जब मौका मिलता है और उसके बाद फिर गीत गुनगुनाने का मौका मिलता है तो मुझे भी बहुत ही गर्व अनुभव होता है, क्योंकि देखिए देश के लिए हम लोग अभी तो सिर्फ आम नागरिक है लेकिन छोटे छोटे जो बातें हैं उन सभी को अगर हम माने तो सिर्फ जो देश के सेना जो है वो ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा कर सकते हैं, हम भी अपने अपने अपने कार्य क्षेत्र में छोटे छोटे से कार्य जो है ऐसे जो हम कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया जो अभी भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन वो भारत सरकार जो बोलेगा तभी करना है ऐसा बात नहीं है, हम सभी को अपने आप में ही ये सब करना चाहिए, क्योंकि अगर देश अपना गाँव अपना शहर और अपना कस्बा ये सब अगर स्वच्छ रहेगा तो अपने ही आप में ही देश में देखने के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा, और जो पर्यटक बाहर जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, देखिए भारत में गए थे इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर जो सब साफ सुथरा है, तो सबके लिए एक अच्छा संदेश जाएगा, तो इसी इन सभी चीजों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जैसे बाहर के देश के जो लोग हम जब कभी वहाँ जाते हैं तो जिस प्रकार से देखते हैं कि कितने उन्नत हैं उधर के, तो हम सभी अपने अपने देश के लिए ये सब कर गुजरे तो अच्छा लगेगा।
0: क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि अगर इसी सोच के साथ हम सभी अपने देश के बारे में आगे बढ़ाने की सोच रखें तो डेफिनेटली देश बदलेगा। थैंक यू सो मच अविनाश जी, मज़ा आ गया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अविनाश जी ने अपनी भावनाओं को इतने अच्छे से व्यक्त किया कि मज़ा ही आ गया, और चलिए एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, इस ब्रेक को आप लोग एंजॉय करिए और आगे बताइएगा कि आपको कौन सा गाना अच्छा लगा, और कॉल करना मत भूलिएगा, इस ब्रेक को एंजॉय करिए फिर आप लोग कॉल करिए, देखते हैं कौन कितना अच्छा आज प्रिपेयर करके आया।

प्यार दोस्ती, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

0: ख्वाब क्या है, ख्वाब नहीं है, अभी हमारे पास एक कॉल है, चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: जी।
0: हेलो, आपका नाम? हेलो
1: हेलो जी, नाम क्या हो रहा है
0: आपका नाम? आप रेडियो सुनती नहीं है क्या?
1: जी मैम, अभी ऑन किया है मैम।
0: तो सुना करिए ना, मंडे को कॉलिंग होता है और कॉल करके कुछ सुनाना होता है। आपका नाम?
1: मैम निशा।
0: ओह निशा, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, गाना सुनाना है।
0: हाँ, रेडियो पहले ऑन करके सुन लिया करें और फिर उसके बाद कॉल करेंगी तो आपको और मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि आप तैयार हैं।
1: जी मैम, काम में बिजी थी अभी, फुर्सत पाए मैम ना, तो इसीलिए।
0: तो क्या सुनाएंगे आप?
1: गाना सुनाना है
0: जी।
1: तभी मुझको हंसाई, तभी मुझको रुलाई, मुझे

कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए मुझे कितना सताता है।

0: गोरी सी शर्माई थी, वो कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छिप जाती है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है। मैं तो उससे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसकी सवरती हूँ, पल पल आगे बढ़ती हूँ। माना के मजबूरी है, चाहत अभी अधूरी है, बस कुछ दिन की दूरी है, मिलना बहुत जरूरी है, जाने क्या दर्द जगाता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना
1: तो निशा, आपको कौन याद आता है इतना, जो मन लगा के आप गा रही हैं इतना?
0: जी थैंक यू मैम।
1: कोई याद आता है क्या?
0: नहीं, मेरे दोस्त दिखा रहे हैं।
1: ओ, दोस्तों को याद करके गाया जा रहा है, ओ क्या बात है। तो भगवान करे आपको आपके सारे दोस्त मिल जाए और आपका मतलब जो ग्रुप है दोस्तों का वापस से बन जाए, क्या बात है। सो निशा की आवाज़ में हमने बहुत प्यारा सा गाना सुना, थैंक यू सो मच निशा। और निशा ने बहुत मिस किया अपने दोस्तों को, और दोस्तों को मिस करते हुए जब कोई गाना सुनाता है तो उसकी फीलिंग्स अलग ही होती हैं। तो चलिए, आपके कॉल्स का इंतज़ार बरकरार है, देखते हैं अब अगला कॉल किसका है, आवाज़ सुनते हैं। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून।
1: हेलो,
2: गुड आफ्टरनून एवरीवन।
1: फिलहाल गुड आफ्टरनून बिल्कुल भी नहीं है, ये शुभ संध्या है। गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम? तो देवी जी क्या सुनाना चाहते हैं पहले तो ये बताइए। गुड इवनिंग।
2: हम एक जानकारी लेना चाहते हैं बस, और सुनाना तो कुछ नहीं चाहते हैं।
1: जी बताएं, क्या जानकारी आपको चाहिए?
2: जानकारी मुझे यही चाहिए कि आकांक्षा मैडम कब आएंगी।
1: अच्छा, ये आपकी जानकारी तो मुझे लगता है कि ऑन एयर मुझे नहीं लगता कि आरजेज आपको दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई गाना सुनाने के लिए है तो आप सुना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आज मंडे है और मंडे को स्पेशली गाने की मतलब आप लोग गाने सुनाते हैं, और मुझे नहीं लगता ये जानकारी वाला शो चल रहा है, क्या बात है, थैंक यू। तो भाई हमारे श्री देवी प्रसाद जी वैसे तो गाना सुनाते हैं लेकिन आज जानकारी के साथ हाजिर हुए, क्या बात है। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते, देखते कौन है हमारे साथ, और अगले कॉल को करते हैं ऑन एयर। हेलो
3: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग मैम, मैं तनुश्री बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से।
1: तनुश्री फ्रॉम महाराष्ट्र, क्या बात है। सो तनुश्री, आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है?
3: पहली बार कॉल लग रही
1: हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम कॉल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तनुश्री, आपको पता है कि आप कौन से रेडियो स्टेशन पे बात कर रही हैं?
3: मैम सच में तो मुझे मेरा दोस्त सुनाता है रेडियो, तो मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं सुन नहीं पाती है, मोबाइल पर आता है ना।
1: ओहो क्या बात है, तो मैं आज आपको बताती हूँ तनुश्री, से पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मतलब देख नहीं पाती, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आप सुन के इतना खूबसूरत बोल पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दिल की आवाज़ और दिल की जो आँखें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ज्ञान स्ले 89.6 FM पे आप आरजे बीना के साथ शो सुन रही हैं गोंडा मैसेज मसाला। कोई बात नहीं, आप आरजे बीना को कॉल करिए, मैं आपको तुरंत बताऊँगी कि आप क्या सुन रही हैं और क्या आप सुनना चाहती हैं। तो तनुश्री, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने कॉल किया, थैंक यू सो सो मच। तो आप क्या सुनाना चाहते हो आज?
3: और पहला मैम तो थैंक यू आपको भी, क्योंकि मैम इस आरजे हमें नहीं कभी मिला कि जैसे हमें समझा कर बता सके, क्योंकि मैं कार्यक्रम मोबाइल ऐप से नहीं सुन सकती, पर मेरे दोस्त है ना वो मोबाइल ऐप से मुझे सुना देते हैं ना, एक फोन से मैं उन कार्यक्रम सुनती हूँ आपका और दूसरे फोन से आपसे बात करती हूँ।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच तनुश्री। ये बताओ आप आज क्या सुनाना चाहते हो, आपको मतलब मन में?
3: हाँ मैम, फिल्म का नाम है ब्लैक मेलो लिस्ट में गाना है ना, सुनाने वाली हूँ।
1: ओह वाह, क्या बात है, स्वागत है आपकी आवाज का, स्वागत है।
4: ठीक है।

0: मैम शरीफ नहीं आ रहा है अभी।
1: कोई कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया तनुश्री, बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच पल पल दिल के पास सुनाने के लिए, और आज से अब आप हमेशा दिल के पास रहेंगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू। तो इतने स्वीट स्वीट से लिसनर्स की आवाज़ सुनने के बाद मेरा दिल भर आता है। कितने मतलब कितने प्यारे हैं आप लोग, और मैं सच्ची बताऊँ कि दुनिया में इतने सारे खूबसूरत फूल हैं और उनकी खुशबू अगर हम तक पहुँच रही है तो मैं समझूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो अगले कॉलर से चलिए बात करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो।
0: हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बात हो रही है मेरी अनु से, और अनु ने मुझे सरप्राइज का झांसा देके जून से जुलाई में बुला लिया, और जुलाई कह रहा अब बेटा तुम अगस्त में जाओ, और मुझे सरप्राइज का एस नहीं दिखा।
0: अरे मैम थोड़ा सा इंतजार कर लो ना, मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा ज्यादा पहले बता दिया कि मैम ज्यादा दिन तक खुश रहे, खूब खुश रहे।
1: अनु मैं आपको बताऊँ, अभी देखो बारिश का मौसम चल रहा है और इंतजार का फल जो होता है वो मीठा होता है, आपको भी पता है, तो मीठे फलों में कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं। आजकल आम देखो कीड़े वाले आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मतलब वो ध्यान में देना। और बाकी कोई बात नहीं, मैं इंतजार और भी कर लूंगी। ये बताओ आज गाना कौन सा सुनाने वाली हो?
0: मैम पहली बात तो कीड़ा नहीं पड़ेगा, और आप थोड़ा सा इंतजार करके जाओ, आपको जो भी सब्सक्राइब मिलेगा 36 नहीं मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा।
1: 26 की बात हो गई, मतलब दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा।
0: नहीं नहीं मैम, मैं भी चाहती हूँ कि आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हाँ हो सकता है अभी आपको 1-1.5 महीने इंतजार करना पड़ सकता है, पर आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी। और आज मैम ना मेरी एक फ्रेंड तनुश्री जुड़ी तो मुझे और भी अच्छा लगा।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप गाना कौन सा सुनाएंगी?
0: आज मैं ये गाना सुनाना चाहूंगी, सुनाना तो चाह रही थी देख सकती, पर अभी मैं दूसरा गाना आपको सुनाऊंगी।
1: दिल बदल गया है।
0: अभी आपसे बात करके दिल बदल गया।
1: ओके फाइन
0: मैम, तो कोई ही सुना दे।
1: नहीं नहीं आप सुनाइए जो आपको पसंद है वो सुनाइए।

0: हेलो
1: अनु,
0: जी मैम। अभी
1: इतना सा गाना सुना के कहाँ चल दिए?
0: उसको सुनाना पड़ेगा।
1: नहीं, बिल्कुल, अब अगले मंडे की तैयारी अच्छी रखिएगा और मैं सुनूंगी एक पूरा गाना। और मैं तो आपके लिए ये कहूंगी, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम, नेक्स्ट मंडे फिर से आइए। थैंक यू सो मच।
0: मैं तो सब सुनती रहती हूँ और अपने फ्रेंड लोगों को भी जोड़ रही हूँ आपके शो से, और सबको बात करके आपसे अच्छा भी लगता है।
1: ओह रियली? तुमको कैसा लगता है पहले तो ये बताओ।
0: अरे हमको अच्छा लगता है, तभी तो मैं खुद भी कॉल करती हूँ और अपने फ्रेंड लोगों को भी जोड़ रही हूँ।
1: ओके फाइन, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सा फ्रेंड सर्कल हमारा होने वाला है। एंड चलिए इस फ्रेंड सर्कल को और ह्यूज ह्यूज ह्यूज ह्यूज ह्यूज करते जाएंगे। थैंक यू सो मच अनु, और ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, और ऐसे
0: ओके
1: ही गानों के साथ हमारे दिल में बसती रहो। थैंक यू,
0: ओके मैम, बाय।
1: बहुत सारा प्यार। तो चलिए, अनु की आवाज़ सुन ली हमने, अब बात करते हैं अगले कॉलर की। देखिए लगातार कॉल्स आ रहे हैं और मैं किसी भी लिसनर का कॉल जो है ना वो इग्नोर नहीं करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। हाँ ये है कि ओवरलैप नहीं कर सकती कई सारे कॉल, एक एक करके ही सबको मैं ऑन एयर करूँगी। तो सबसे पहले अगले कॉल की जो बारी है, आवाज़ सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: मिस्टी संध्या।
1: शुभ संध्या, कैसी हैं हमारी सविता जी? आहा क्या बात है। सविता जी के साथ मैं दुबे भी बता देती हूँ। नहीं, हमारे पास हमारे चैट रूम में दो सविता लोग हैं और दोनों को सुन के कन्फ्यूज ना हो हमारे लिसनर्स, तो मैं बता देती हूँ कि हमारे साथ सविता दुबे जी हैं। क्या बात है सविता जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, बहुत ही ठीक हूँ। अभी जो बच्ची जो एक बच्ची जो फोन की थी तनुश्री, उसकी बात सुन के तो मेरा और भी मतलब मन खुशी से झूम उठा कि हम लोगों को शिकायत रहता है कि ऊपर वाले से कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पर मैंने उस बच्ची को, उतनी छोटी बच्ची को सुन के, उनका जिंदा दिल देख के मेरा मन खुशी से झूम उठा।
1: क्या बात है। और मतलब इंसान को आशावादी होना चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए भाई। सबसे अच्छी बात यह है, ये लम्हा आपको मिला है और आपको पता है होना चाहिए। मतलब मैं आपके माध्यम से सब लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि हमें शब्द बोलने का जो अधिकार है वो सिर्फ इंसानों को मिला है। सिर्फ ह्यूमन, मतलब इंसान, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो शब्द बोल सकता है। इवन मैंने ऐसा मतलब किताबों में पढ़ा है, कहते हैं कि भगवान को भी शब्द बोलने की आज्ञा नहीं है। अगर उन्हें शब्द बोलना है तो इंसान बनके उन्हें पैदा होना पड़ेगा धरती पे। सो शब्द का उच्चारण करना या एक वर्ड बोलने की जो पावर हमें भगवान ने दी है, तो उसे हम यूटिलाइज करें और कोशिश हो तो ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें, ऐसे शब्द बोलें कि पूरी दुनिया में लोग हमसे मतलब ये सोचें कि हाँ सामने वाला जो बोलता है वो अच्छा ही बोलता है। तो मैं भी आप लोग के शब्दों को सुनने के लिए ही आप लोग को आमंत्रित करती हूँ। तो आज मंडे है जैसा कि आपको पता है, तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं अपनी खूबसूरत आवाज?
2: हाँ, पहले तो मैं तनुश्री को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। वो अपने जिंदगी में जो भी करना चाहे वो हमेशा सफल रहे और इस शो में जुड़ा करे। इस शो में मतलब गाने से भी हर एक शो में जुड़ा करे तो अच्छा लगता है, उसकी आवाज बहुत मीठी है।
1: थैंक यू सो मच। मुझे पता है सारे लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करना बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को साथ में लेके और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पर आप लोग की ये खास बात है कि आप लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, और ये अप्रिसिएशन मुझे बहुत पसंद है। ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, यही तो जिंदगी है। तो चलिए सविता जी, आपकी आवाज़ में सुनते हैं एक प्यारा सा गाना। कौन सा गाना सुनाएंगे?
2: हाँ सुना रही हूँ। सावेरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरे दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना कर गया। सावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना कर गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगा, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगा, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना कर गए। सावले सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना कर गए, एक तो तेरे हाथ नाजुक दूसरा मेहंदी लगा, एक तो तेरे हाथ नाजुक दूसरा मेहंदी लगा, तीसरा तेरा बंसी बजाना दिल दीवाना कर गए, सांवले सूरत पे मोहन दिल दीवाना कर गए। हेलो,
1: क्या बात है। और मैंने सोचा कि आपको पूरा तो नहीं याद होगा, लेकिन आप पूरा याद करके आई थी, क्या बात है।
2: अभी दो तीन ये बाकी है, तभी पूरा हो जाएगा।
1: हाँ, क्या बात है। संविदा जी, मतलब आप, मैं ये देखती हूँ कि आप गाना सिर्फ गाती नहीं है, बहुत सारे लोग हम में से, मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड करूंगी कि हम, मतलब गाना गाना होता है ऐसे गा देते हैं, लेकिन आप सिर्फ गाती नहीं है, आप पहले उस गाने को समझती हैं, उसकी फीलिंग को समझती हैं, उस गाने को मतलब शब्दों से शब्दों को मतलब जैसे मिलाती हैं कि हाँ इसके बाद ये शब्द आना है, बहुत ध्यान से गाती हैं, और ये एकाग्रता हर किसी में नहीं है। थैंक यू सो मच संविदा जी।
2: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। तो चलिए, सविता जी की आवाज़ में एक गाना सुना हमने, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और कितनी कलरफुल शाम है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, और सबकी आवाज़ों में एक अलग ही धुन है। तो चलिए अगली धुन सुनते हैं किसकी है। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम।
3: मेरा शुभ नाम है राकेश, और मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्र से,
1: शिमला से।
3: जी, शिमला से। जी जी जी जी जी
1: राकेश जी, मुझे याद है आप शिमला से बात कर रहे हैं। कैसे हैं, सबसे पहले ये बताएं मौसम कैसा है, आप कैसे हैं?
3: मैं भी अच्छा हूँ, मौसम भी अच्छा है और साफ मौसम है, और बहुत बहुत अच्छा है मौसम है,
1: मतलब मौसम है आशिकाना।
3: जी, मौसम है आशिकाना।
1: क्या बात है। फिलहाल आप बताइए, आप क्या सुनाने वाले हैं?
3: तो मैं सब दो लाने गाने पे सुना पाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता मैं कौन सा गाना गाऊं, क्योंकि आज जैसे कि आज हमारे कलाम साहब की पुण्यतिथि भी है, तो ऐसे में मुझे देशभक्ति गीत प्रैक्टिस करा, ताकि अगर कुछ आ जाए तो फिर मैं दो लाइन याद कर पाया है, तो मैं जितना भी आता मैं उतना सुना पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।

0: जल्दी से आते हैं वो हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है वो घर कब आओगे, वो कब आओगे कि घर कब आओगे, तुम दिन घर सोना है संदेश आते हैं चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन के घर सोना सोना है संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं।
1: जी धन्यवाद कि मुझे इतने ही मैं प्रैक्टिस कर पाया।
2: क्या बात है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने प्रैक्टिस किया फिर आप सुना रहे हैं, क्या बात है। इस जज्बे को सलाम और ये

0: अभी आने वाले समय में 15 अगस्त का जो है पर्व आने वाला है, ये हमारे देश की वीर जवानों की जो है हमारे आजादी, तो इस तरह से आप प्रोग्राम लाना चाहिए ताकि जो आदमी जो है जो जुड़ पाए, तो देशभक्ति थोड़ा चलो पूरा नहीं आ पाता, दो लाइन भी सुना देखिए ये है, ये मौका है हमें अपने जो है वीर जवानों को याद करना, क्योंकि हमारा देश आज हम आजादी की जो चैन सांस ले रहे तो उनकी वजह से, क्योंकि ये उनको याद करने का दिन होता है, जैसे कि आज हम कलाम साहब को याद कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, और बिल्कुल ऐसे ही हर पर्व पे हम लोग ऑन एयर होते हैं, बातें करते हैं और आप लोग सुनाते हैं, तो उम्मीद करूंगी आगे भी आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी और ऐसे ही सुरीला आप सुनाएंगे, क्या बात है, शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच राकेश जी। तो राकेश जी ने हमें शिमला से जुड़ के अपनी आवाज़ सुनाई, चलिए अगले कॉलर से जुड़ते हैं, कौन है हमारे साथ।
2: हेलो नमस्कार, शुभ संध्या मैम।
1: शुभ संध्या सबलू जी, कैसे हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या हाल है?
2: जी मैं काफी अच्छा हूँ, और फिलहाल अभी मैं अपना घर मोतिहारी कनारा से बोल रहा हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, तो फिलहाल बारिश से निकल के चले आए आप मोतिहारी में, वहाँ भी बारिश हो रही है कि नहीं?
2: नहीं यहाँ पे तो बारिश नहीं आ रही है, और थोड़ा पिताजी का तबीयत थोड़ा प्रॉब्लम है।
1: चलिए हम सभी दुआएं करेंगे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और एकदम अच्छे हो जाएं जैसे थे वो एकदम। आज आप क्या सुनाने वाले हैं सभी जी?
2: ऐसे तो राजनीति के ऊपर कविता हम लिखे थे, लेकिन राजनीति से थोड़ा हम हट के रहते हैं, फिर भी थोड़ा दो लाइन जो दिल्ली में हुआ है उसी आधार पे, और असम में जो बाढ़ आई है उसी पे आधार पे थोड़ा मोड़ा कुछ है। कल की डेट में नहीं, लमसम डायरी में इस अगले हफ्ते में हम बनाए थे जो सॉन्ग गुनगुनाए थे आपके बीच, और कुछ लाइन भी गाए थे हम,
1: तो
2: तैयारी किए हुए हैं खुद से हम अपना।
1: बिल्कुल स्वागत है।
2: कहते हैं वीना जी, हम जंत्र मंत्र में लगे रहे, इधर मेरे घर में ही रोते बच्चे दिखाई देने लगे, घर आंखों के सामने में उझल गए, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के अपनी आंखों के सामने अपनी लाशें देखी। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए कभी आंखें खुलती नहीं, कितनी सरकारें आई और चली गई, सबकी आंखें अपनी कुर्सिया पर ही रह गई, इतनी भेदभाव ठीक नहीं, इस बार आओ वोट मांगने तो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा, ताकि नॉर्थ ईस्ट को भी अपना हिंदुस्तान का हिस्सा समझे। अब मैं असम बार पर लिखी कोई कहानी, अपने हिस्से की खुशियां में थोड़ा सा बांट दो, असम में बार पीड़ितों के हाथ थाम लो, एक तरफ सुख के जीते हैं इंसान, एक तरफ सुख में जीते हैं इंसान, दूसरी तरफ बार में बहती है जिंदगी, एक तरफ बच्चे खिलौने से खेलते हैं, दूसरी तरफ बच्चे अपने घरों में डूबते देखते हैं, एक तरफ रातें बिस्तर पर कटती हैं तो दूसरी तरफ रातें पानी में गुजरती है। हम कहते हैं कि सब इंसान बराबर है, फिर भी कितना अंतर क्यों ना हो, किसी के पास जरूरत से ज्यादा, किसी के पास रोटी तक नहीं, एक तरफ इंसानियत सुख में मुस्कुराती है, दूसरी तरफ इंसानियत बाढ़ में रोती है, आज किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास बचाने के लिए अपनी जान तक है।
1: क्या बात है, क्या बात है?
2: जी वीना जी,
1: और मैं सबसे पहले तो ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि पूरे देश की तरफ से आपसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी कि हर मुद्दे पे हर इंसान लिखता नहीं, पर जो एक सच्चा कवि होता है उसकी आंखें हर उस जगह तक पहुंच जाती हैं जहां शायद किसी की नहीं पहुंच रही, और जहां सबकी मतलब सरकारों की पहुंचनी चाहिए, क्या बात है।
2: जी जी जी जी, सबसे पहले बात बिना जी है कि एक जो हमारे तमिल क्या बोलते हैं विजय सरकार जो बने हैं उनका काम हम बहुत अच्छा देख रहे हैं,
1: और बिल्कुल
2: जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं
1: जी जी तमिल,
2: और धन है उनका माँ बाप जो उन्होंने ऐसी माँ बाप के संतान है जो धरती पर एक हीरो की जगह से लेकर राजनीति में उतरे हैं, बहुत ही अच्छा काम के सिलसिला हम उनका काम देखकर जहाँ भी हम देखे हैं हॉस्पिटल वगैरह में भी जाकर देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा वीडियो से जुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका काम बहुत ही अच्छा है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं।

0: कहें।
1: उम्मीद करेंगे कि और आगामी जितने भी प्रदेश में जो मुख्यमंत्री लोग हैं उनसे इंस्पायर हों और उनके मतलब जो हाँ देखिए किसी का तरीका हम किसी को फॉलो नहीं करने के लिए कह सकते, पर हाँ अपने प्रदेश की आवश्यकता को हमें समझना होगा अगर हम मुख्यमंत्री हैं तो, क्योंकि हर घर की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं भाई। किसी के घर में अभी राशन डालना है तो किसी के घर में छत बनवानी है, तो सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबकी ज़रूरतें ऐसे ही पूरी हों। और हमारे सबलू जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं चाहूँगी सबलू जी अगर आपका कॉल दोबारा आता है तो हम आपसे बात कर पाएंगे। बहुत अच्छी सी कविता इन्होंने सुनाई, मज़ा आ गया, और उम्मीद करते हैं कि उस कविता को हम आगे भी सुन पाएंगे। हेलो, अभी किसका कॉल है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आवाज़ अभी नहीं आ रही। हेलो हेलो, चंदा रे चंदा रे। हेलो
0: हेलो,
1: नमस्कार, कैसे हैं अनिल जी? शुभ संध्या, क्या हाल है?
0: बढ़िया हूँ।
1: क्या बात है? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोग के कॉल का बस इंतज़ार था, और इतने सारे कॉल्स हैं कि सबके कॉल ऑन एयर हो नहीं पा रहे। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप?
0: मैं सोच रहा हूँ दोस्ती पिक्चर का गाना, राही मनवा दुख की चिंता।
1: क्या बात है, क्या बात है। जी जी,
0: तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा प्रयास करने।
1: स्वागत है, स्वागत है।
0: रफी साहब का ये गाना है।
1: जी जी।
0: दुख जब सदा संग रहना हो, फिर दुख को अपना जाए तो

दुख तो अपन खाती है, राही मन मा दुख की चिंता क्यों सताती है, अपना दुख तो अपना आती है, मनमा दुख की चिंता क्यों सती है, दुख तो अपना आती है। हमारा क्या कम है, पग में काटे लाख सही, सारा क्या कम है, हमारा तेरे कोई अपना तो है, हमारा तेरे कोई अपना तो है।

0: है दुख तो अपना साथी है, की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख को
1: थैंक यू सो मच अनिल जी, और आपने गाना बहुत ही बेहतरीन सुनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा आवाज़ जो है इधर नेटवर्क की वजह से बहुत क्लियर नहीं आ पा रही थी।
0: अच्छा, नेटवर्क का कोई दिक्कत?
1: वैसे तो मतलब गाना हम लोगों ने पूरा सुना, पर कहीं कहीं पे ऐसे जैसे आवाज़ थोड़ा थोड़ा सा कट रही थी।
0: अब हो सकता है ना, एक्चुअली क्या कि मैं थोड़ा
1: मौसम की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खराश वगैरह होगी।
0: जी जी जी, एक्चुअली सुबह का निकला था, बिस्कुट खाए पिए।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात नहीं, आपने कॉल किया, मैं पहले तो इसके लिए आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने कॉल किया और अपना कीमती समय हमें दिया। क्या बात है। तो चलिए, अनिल जी की आवाज़ में हमने बहुत अच्छा गाना सुना, दुख तो अपना साथी है। और देखिए, जो भी है, इन गानों से हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं और इन फीलिंग्स को जोड़ने वाले हमारे सारे आप ही सब लिसनर्स हैं। तो अगले कॉल को ऑन एयर करती हूँ, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो हेलो। सो किसी कॉलर की कॉल आई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो
2: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं आशु जी, स्वागत है आपकी आवाज़ का, क्या हाल है?
2: अच्छा मैम, आप कैसे?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लखनऊ शहर में बारिश हो रही है या नहीं?
2: मैम बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम ऐसे ही बनाया है बारिश वाला,
1: लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है। चलिए, आज आप क्या सुनाने वाले हैं
2: मैम? आज भी मैं अपनी छोटी सिस्टर श्रुत कीर्ति की लिखी हुई पंक्तियाँ सुनाऊंगी। वो एक शिक्षिका भी है।
1: क्या बात है,
2: और उसका भी सावित्री भी है।
1: अरे वाह, क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हैं, सिस्टर्स। और अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि आजकल फैमिली में जनरेशन गैप भी है, और चाहे भाई हो चाहे बहन हो, किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए, और हम लोग एक दूसरे से समय निकाल के विचारों को एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट्स बिग थिंग।
2: बिल्कुल मैम, उसकी बुक भी छपी हुई है, वही लेके मैं बैठी भी हूँ।
1: ओके, हम भी इंतजार करेंगे बुक हमारे पास देख पहुँच जाए, जिससे मैं भी बैठ के ऑन एयर आप लोग को सुनाती रहूँ।
2: बिल्कुल,
1: स्वागत है, स्वागत है आशु जी।
2: भारत से भारत मैम, भारत से भारत।
1: क्या बात है,
2: आज भारत

0: भारत नाम कहाए, भारत भरत के नाम से जाना जाए,
1: क्या
0: भारत सब देशों में प्यारा।
1: क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या सुनाने की इच्छा है आपकी आज?
0: बस एक दो लाइन गुनगुना दूं देश के ऊपर।
1: स्वागत।
0: हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जाग लेंगे, ऐ वतन तेरे लिए

0: जाएंगे वतन तेरे लिए।
1: क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आशु जी, और आपने सब प्रिय गाना सुनाया, मतलब सबके लिए जो प्रिय है वो गाना सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगले कॉल को ऑन एयर करते हैं, देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
2: चंद्रभान पांडे बोल रहे हैं मैडम
1: जी। चंद्रभान जी कैसे हैं, क्या हाल है? क्या बात है, और इंतजार था आपके कॉल का, और उम्मीद है कि आज कुछ बेहतरीन सा सुनाने वाले। आपकी आवाज़ सुनने के लिए तो बहुत सारे लिसनर्स परेशान भी रहते हैं कि उनकी आवाज़ में कब सुनने को मिलेगा। क्या बात है,
2: हम तो आपकी आवाज़।
1: क्या बात है, चलिए स्वागत है आपके।
2: तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ है मैडम जी, आज एक हफ्ते से फिर भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पूरा पश्चिम से। कोई जब हृदय तोड़ दे, तरसता हुआ जब कोई छोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत क्या होगा अंधेरों में जब खुद डरने लगे, अंधेरों में जब खुद गिरने लगो, अब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे।

खिल जाए, ये दर्पण तुम्हें जगाने लगे, अंधेरों में जब खुद घिरने जब, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई शर्त हो दिन नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया,

0: गिरने लगो, अंधेरों में जब खुद ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन सा गाना सुनाया आपने और लग रहा था कि समा बांध दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी चंद्रभान जी की आवाज़ में हमने बहुत बेहतरीन सा गाना सुना और मुझे लगता है कि शाम बन गई और इसी के साथ अगले कॉल को भी ऑन एयर करने का समय है। चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: रईस बोल रहा हूँ।
1: रईस जी कैसे हैं, क्या हाल है?
2: मैं एकदम ठीक हूँ, आप बढ़िया हो? ठीक हूँ
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए कि आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: जो टूटी फूटी दो लाइनें सुना देता हूँ आपको।
1: अरे वाह, क्या बात है, टूटी फूटी क्यों? अब जब भी कोई लिसनर ऑन एयर आके कॉल करके जब कुछ सुनाता है तो वो टूटी फूटी लाइनें नहीं होती, वो उसके दिल से गढ़ी हुई लाइनें होती हैं जो वो अपनी आवाज़ में सुनाता है। क्या बात है, स्वागत
2: करता हूँ सर, स्वागत करता हूँ सर। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही अभी हो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। अरे बस रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे, खुद को जहाँ पे मैं छोड़ आया वो रह गया मोड़ पीछे, कहाँ मैं कहाँ तू, ये कैसा है जादू, अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। बस कितना याद कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, मुझे लगता है कि जितना सुनाया आपने उतनी ऊर्जा से अभी तक किसी ने सुनाया नहीं, क्या बात है।
2: कोशिश थी साहब।
1: कोशिश नहीं, ये कह सकते हैं कि आपका हम लोगों से कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप बरकरार रखते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से हम लोग बात करते हैं। रईस जी का कॉल कटा तो नहीं, मुझे लगता है कि ऑन होल्ड हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, अगले कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
3: नमस्ते विनमन।
1: नमस्कार, और समय कम होने के बावजूद मुझे इसलिए कॉल्स को बीच में मतलब नेक्स्ट कॉल को लेना पड़ रहा है, इसलिए माफ़ी चाहूँगी। तो अभी हमारे साथ सुरेश जी हैं, स्वागत है सुरेश जी की आवाज़ का। कैसे हैं सुरेश जी?
3: हाँ ठीक है, बड़े मुश्किल से नंबर लगा है, मैं जानता था कि समय कम होगा, तो कम समय में ही निपटा देते हैं।
1: मैं कम समय नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगी कि मैं सबको मौका दूंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब अपनी आवाज़ में जो सुनाना चाहते हैं बेशक सुनाएं।
3: अच्छा अच्छा ठीक। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है, झुकती है नजर रुकती है जुबान, माथे पे पसी नाता है, जब दिल से दिल टकराता है, देखा था तुझे एक बार कहीं, देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिल से अभी तक होश नहीं, तेरे इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है माँ, जब
4: अब देखिए क्या क्या रंग नए दीदार तेरा दिखलाता है, जब दिल से दिल टकराता है, झुकती है नजर रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है, जब दिल से दिल टकराता है, ये हुस्न शराबी महका बदन, ये हुस्न शराबी महका बदन, और उस पे तेरा ये भोलापन, बेताब है तू भी मेरे लिए, अंदाज कितना बतलाता है, जब दिल से दिल टकराता है।
3: थैंक यू मैम, कम समय में
1: बात है, क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया, कम समय में भी आपने एक बेहतरीन गाना सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है,
3: थैंक यू मैम।
1: चलिए सुरेश जी की आवाज़ के बाद एक और कॉल जिसको मैं मौका दे देती हूँ, चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
5: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं,
1: हमारे लिसनर कॉल करके भी होल्ड ऑन कर देते हैं। चलिए चलते चलते बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अब मैं थोड़ा चैट रूम में सब लोगों से बात कर लेती हूँ। हमारे साथ तबिश खान है, गुड इवनिंग तबिश, कैसे हैं आप। धर्मेश हैं, धर्मेश का मैसेज काफ़ी देर पहले ही दिखा मुझे, पर ऑन एयर अभी कॉल्स के बीच में मैसेज मैं चैट रूम के नहीं ले पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों को भी पता है कि आज मतलब मंडे मीन्स आप लोग के कॉल्स का डे होता है, आपको सुनने का दिन, तो आप लोग की आवाज़ सुन के मैं मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सबसे पहले कविता धर्मेश ने लिखी थी, आरजे बीना जी के स्वागत में, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो सीधे दिल में उतर जाती हैं, आपकी आवाज़ भी कुछ ऐसी है बीना जी, जिसे सुनकर उदास दिल को भी सुकून मिल जाता है, क्या बात है, और आप लोग को देख के मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए देखते हैं अभी आवाज़ किसकी है। हेलो, नमस्ते, आपका शुभ नाम, कैसे हैं, गुड इवनिंग।
6: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका नाम जानना चाहती हूँ।
6: मैं दुर्गा बोल रही हूँ।
1: ओके दुर्गा जी, कैसी हैं, क्या हाल है।
6: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं
1: भी बिल्कुल अच्छी हूँ, क्या सुनाएंगे आज आप।
6: सॉन्ग सुना दूँ।
1: बिल्कुल, स्वागत है।
6: मुझे नींद माए, मुझे कहने माए, कोई जाए जरा मुझे किला, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद माए, मुझे कहने माए, कोई जाए जरा मुझे किला, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। और मैं तो क्या कैसे तुझे बताऊं, मैं पर्वत बदल बदल के रह क्या हाल हाल मिला है, हाल है कुछ जरा कुछ क्या हाल है, हाल गिरा दे हाल, कभी मुझी को पता है कोई समझ ना आए, जाए घर किला, मुझे कहाँ दिल खो गया।
1: थैंक यू सो मच दुर्गा जी, और बहुत अच्छा गाना आपने सुनाया, ना जाने कहाँ दिल खो गया, और बहुत अच्छी सी मतलब कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंजाम अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच दुर्गा, और उम्मीद करूँगी अगले मंडे आपका कॉल ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। तो दुर्गा जी की आवाज़ भी सुन ली और टाइम भी मैंने आप लोग का ले लिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि अब मैं और कॉल्स नहीं ले सकती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग का ले लिया और आज गाने भी बहुत ज़्यादा प्ले नहीं हो पाए। पर हाँ, मैं ये कहूँगी जिनकी आवाज़ मैं मतलब आप लोग के कॉल्स की वजह से ऑन एयर नहीं कर पाई, उनसे माफ़ी चाहूँगी और उम्मीद करूँगी अगले मंडे या वेंसडे को हम लोग लाइव होंगे एक दूसरे के साथ। तो दिल छोटा ना करें अगर आपका कॉल नहीं लगा। देखिए, ऑन एयर एक टाइम पे एक इंसान बोल सकता है और कुछ चीज़ें लक वाली भी होती हैं। आपको मैं बताऊँ, अपना किस्सा बताती हूँ कि मैंने बचपन में, मेरी छोटी थी तो हम लोग रेडियो वगैरह काफ़ी सुनते थे और एक ऐसा रेडियो ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपका नाम आपको सुनने को मिलता था। न्यूज़पेपर वगैरह में भाई नाम वगैरह बहुत कम ही देखने को मिलता था, बहुत बड़ा काम करें, बाकी रेडियो पे आपको अपना नाम सुनने को मिल जाया करता था, ऐसा मैंने देखा था। तो नाम सुनना बहुत बड़ी बात होती थी हम लोग के लिए। अभी तो कहीं भी सोशल मीडिया पे हर जगह एक दूसरे नाम सुनना आज कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग के बचपन में बहुत बड़ी चीज़ होती। तो हम लोग बहुत लेटर्स लिख के भेजते थे, मतलब मम्मी स्पेशली लिखवाती थी पूरे फैमिली का नाम, ऊपर से मामा मामी मतलब जितने रिश्तेदार होते थे उनके भी नाम लिखवा देती थी मम्मी, ऐसा होता था। और हमने अपने आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 78 बार वो पोस्टकार्ड भेजा पते पर रेडियो स्टेशन, और उस हर दिन हम लोग कान लगा के सुनते थे जब वो पोस्टकार्ड पढ़े जाते थे, नाम पढ़े जाते थे, गीत पढ़ा जाता था फरमाइश वाला। तो घंटों इंतज़ार किया, इनफैक्ट घंटों नहीं महीनों इंतज़ार किया, और मैं बहुत अच्छे से मुझे याद है कि लगभग 1.5-2 साल बाद हम लोग का मतलब वो लेटर पढ़ा गया था और वो नाम पढ़ा गया था और उसे हम लोगों ने जो कैसेट होती है उसमें रिकॉर्ड किया था, और मतलब रेडियो एक तरफ चल रहा था और वो जो कैसेट होती थी, पहले रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग कैसेट यूज़ करते थे, एक बड़ा सा ऐसे फिलिप्स का आता था म्यूज़िक डिवाइस, उसमें लगाते थे कैसेट और कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी, हम लोग अपनी आवाज़ें भी रिकॉर्ड करते थे। तो उसको बजा के फिर उसको रिकॉर्ड करके उसको हम लोग बार बार टेप लगा के सुनते थे। अभी इस शहर से हम इन लोगों को जानते हैं, ये जो ये परिवार यहाँ का रहने वाला है इसमें ये सदस्य ये गाना सुनना चाहते हैं, भाई बहुत मज़ा आया था उसको सुन के। तो इंतज़ार ऐसा भी था, तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ये किस्सा इसलिए सुना रही हूँ जिससे आप लोग को ये ना लगे कि अरे यार इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार जो करता है उसकी लाइफ में मुझे पता है कि बहुत ही खूबसूरत लम्हे आते हैं। तो हाँ, आज की दुनिया थोड़ी फास्ट है लेकिन इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो वो डेफिनेटली बेहतरीन होती है। इसी के साथ आरजी बीना को दीजिए इजाज़त, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए, आरजी बीना है तो इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो इसी बुधवार हम आपकी आवाज़ को ऑन एयर करेंगे, बस अपनी टीम डिसाइड कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे थे आरजी बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजी बीना वाला। कुछ ही देर में आप सुनेंगे अपनी फरमाइश की गीत आपके नाम से विद योर आरजे सिंपल।

वेलकमिंग यू शुपर माई शिविद आज सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। मिलते हैं इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से नगमे के बाद में और आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपना पिटारा फरमाइशी का खोल ही लिया होगा।

दोस्तों नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फरमाइशी की महफिल में अपनी आरजे सिंपल और सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि बहुत नजदीक से देखा है मैंने इस जमाने को, बहुत नजदीक से देखा है मैंने इस जमाने को, यहाँ हर शख्स अपने मुफाद में जीता है। तो इश्क की बातें करता है ए नादान, तो इश्क की बातें करता है दिले नादान, यहाँ तो हर कोई अपने ही गम में पीता है। सो क्या खूब बात है इश्क और अना पर, लव और ईगो पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर। सो कैसे हैं आप सब, लव को साइड में रखते हैं, ईगो को साइड में रखते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी साइड में नहीं रखते हैं। और चलिए अपनी फरमाइशी की पिटारे को खोल लेते हैं, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लेते हैं और लाते हैं हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में, लगा देते हैं डेफिनेटली हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि आपकी फरमाइशी की महफिल में आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल आ चुकी है आप सबके दिलों के जज्बात को पढ़ने और अपने दिलों के जज्बात को साझा करने। कैसे हैं आप सब? आशा मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से, बबीता गोंडा से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, अनोखी शर्मा आशा मिश्रा जी लखनऊ से, सोनिया तिवारी गोंडा से, अनिल शास्त्री गोरखपुर से, तबिश खान आपका भी स्वागत है आपकी अपने फरमाइशी की महफिल में, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, विनय कुमार सिंह मुमताज अंसारी गोंडा से, रईस जी गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, ऐसा लग रहा है, आप लोग को लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही समय हो गया आप लोगों से मिले। एक अलग सी खुशी, एक अलग सा एक्साइटमेंट आ रहा है कि बहुत ढेर सारी बातें मेरे पास में है आप सब से करने के लिए, और आप सबके पास भी बहुत सारी बातें होगी तो एक दूसरे से साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। हमारे पास में पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया इट हैपेंड्स ओनली इन इंडिया। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग हमारी आशु जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक कराने वाली बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई मिस यू गाइस सो मच, बहुत सारा, इतना सारा।

में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया, इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया। हमने एंजॉय किया ये पैट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो कि है लखनऊ से। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेश त्रिपाठी की। उनको सुनना है गाना तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा जी की आवाज में खतरों के खिलाड़ी मूवी का ये गाना, सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, तबिश खान लखनऊ से और नागेश्वर था।

सुंदर सपन सलोना तुम मुझसे जुदा ना। हमने एंजॉय किया है धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश, लेकिन इस फरमाइश ने आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को दोस्तों शेरो शायरी करने पे मजबूर कर दिया है। हाँ, इस गाने से कुछ याद आता है कि दिल की बात छुपानी आती नहीं, दिल की बात छुपानी आती नहीं, किसी को रीत बतानी आती नहीं, हम तो बस इश्क के मारे हैं यारो, हमें सौदेबाजी करनी आती नहीं। सो एंजॉय करते हैं हमारी अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है चंडाल मूवी का गाना। सो एंजॉय करते हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

पैग पटियाले का चंडाल मूवी का ये नगमा हमने एंजॉय किया है सोनू निगम और जसविंदर नरूला की आवाज में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारे एक लिसनर हैं धर्मेश त्रिपाठी, उनका एक मैसेज आया है। उनका कहना है कि तुमसे बना मेरा जीवन जब आरजे सिंपल की आवाज में सुनने को मिला तो लगा जैसे किसी ने दिल के पुराने जज्बातों को फिर से छू लिया। कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक उतर जाते हैं और कुछ आवाजें सुनकर आंखों में अनकहे एहसास उतर आते हैं। आरजे सिंपल इस खूबसूरत एहसास को मेरी शाम का हिस्सा बनाने के लिए दिल से शुक्रिया। आपकी आवाज और इस गीत ने आज फिर यादों को जीने की वजह दे दी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेश त्रिपाठी जी। आपके ये शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि मेरे रेडियो सफर का सबसे खूबसूरत इनाम है। जब कोई आवाज सीधे दिल को छू जाए तो समझ लीजिए कि रेडियो और सुनने वाले का रिश्ता पूरी तरह मुकम्मल हो गया है। आपकी शाम को इतनी खूबसूरत यादों से सजाने के लिए और इस प्यार भरे पैगाम के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। बबीता जी को गोंडा से सुनना है कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में तकदीर वाला मूवी का नगमा फूल जैसी मुस्कान। सो एंजॉय करते हैं मदर्स डे स्पेशल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारी क्यूट सी प्यारी सी बबीता जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फरमाइश थी बबीता जी की गोंडा से। तकदीर वाला का ये था गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है किशोर कुमार जी की आवाज में नगमा। सो एंजॉय करते हैं मेरे दिल से निकली हुई पुकार, मींस मेरे महबूब कयामत होगी और आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। एंजॉय करते हैं मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला नगमा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेंद्र।

महबूब कयामत। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और दोस्तों चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। जी हाँ, अगली फरमाइश हमारे पास में है अनोखी शर्मा की, और अनोखी शर्मा को सुनना है गाना हो गया है तुझको तो प्यार सजना, और लाख कर ले तो इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, एकदम दिल को झकझोर देने वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारी अनोखी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। बेचारा दिल कितना नाजुक होता है ना, भगवान ने उसको कितना नाजुक बनाया है। और हम इंसान, हमें जब मौका मिलता है हम तब उस दिल से खेल लेते हैं, बिना सोचे बिना समझे बिना उसकी इजाज़त के। कितने अच्छे हैं ना हम लोग।

दिलदार सजना, औलाद कर ले इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हमने इंजॉय किया है DDLJ का ये बहुत ही खूबसूरत सा इश्क प्यार मोहब्बत वाला नगमा अनोखी शर्मा की फरमाइश पर। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि इश्क महंगा बहुत है इस दौरे सितम में। अनोखी जी, इश्क महंगा बहुत है इस दौरे सितम में, यहाँ सांसें भी गिरवी रखनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत आज़ाद है बहुत, लोग कहते हैं कि मोहब्बत आज़ाद है बहुत, मगर हर मोड़ पे शर्तें रखनी पड़ती हैं। तो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज़, विकास गोंडा से। उनको सुनना है गाना दिल दे दिया है जान भी देंगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा दिल देने वाला जान देने वाला नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। दिल और जान उसी के लिए देना जिस पर आपको 100% श्योरिटी हो कि वो भी आपके लिए दिल और जान दोनों देगा, है ना, या फिर देगी।

होगी। और क्या बोला है इन्होंने कि पास तुम रहोगी भूल अब ना होगी, करूंगा ना तुम पे सितम। क्यों? विच मीन्स आपने जो पहले दगा दिया था वो पास नहीं थी इसलिए अब पास है। तब किस चीज का मतलब लाइक किस चीज की श्योरिटी है कि आप दगा नहीं करेंगे? दिल भी दे दिया है, जान भी दे दिया है, लेकिन अब दगा नहीं करेंगे। ओ माय गॉड दोस्तों, आपको पता है क्या, आई स्वेयर टू गॉड ये गाना मैंने पहली बार

अगली फरमाइश है तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास से। अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की और उनको सुनना है गाना मैंने तुमसे मोहब्बत की है गुलामी नहीं की सजना। तो दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे मैं तो छेड़ूंगी और मैं तो खेलूंगी। एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट दो रास्ते का बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। जितनी प्यारी आप हैं उतना ही प्यारा ये गाना भी है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा।

0: सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए बहुत ज्यादा खेद है दोस्तों। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी आप सभी से। सो कनेक्शन फिर से हो चुका है और ये जो कुछ मिनट हमसे छीन लिए गए हैं ना कुदरत द्वारा, ये जो सिचुएशन, ये जो कायनात द्वारा साजिश रची गई थी ना दोस्तों, उससे हम पार आ चुके हैं और फाइनली अब वक्त हो चुका है हमारे ऑन एयर न्यूज का। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने चलते हैं हम लोग। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे, खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक कराने वाली आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
3: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर

0: चर्चा नहीं होने देना चाहते।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मोहब्बत में वफा का सिला कौन देता है, मोहब्बत में वफा का सिला कौन देता है, यहाँ तो हर कोई दर्द नया देता है। हम जलते रहे तन्हाई की आँच में उम्र भर, कुछ पूछे तो जमाना दुआ देता है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शुपरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी सऊदी से देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती है अपनी आरजे सिंपल। और मेरे जो लिसनर्स अभी 9 बजे से जुड़े हैं उन सबका स्वागत और इस्तकबाल करती है ये आरजे सिंपल बहुत ही दिल से। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, उनको सुनना है गाना इश्क में एक पल भी, एक पल की भी जुदाई लगती एक साल। एंजॉय करते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बरसात का ये नगमा, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक करवाने वाली आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बरसात मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है तबिश खान की लखनऊ से, और तबिश खान को लखनऊ से सुनना है राजा मूवी का गाना अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में। फूल मांगू ना बहार मांगू मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, फूल बहार कलियां सोना चांदी हीरे जवाहरा महल गाड़ी सब ला के दे देंगे, लेकिन ये जो आपने मांग ली है ना इतनी महंगी चीज की, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू, ये सबके बस की बात नहीं होती है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: मांगो ना खुमार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। हमने एंजॉय कही ये गाना तबीश खान की फरमाइश पर चुकी है लखनऊ से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी और बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। लेकिन जो चीज जब चाहिए तब ना मिले उस टाइम सब्र करना हो, और जब इच्छा मर जाए तब वो चीज आपको मिले तो क्या आपको मजा आएगा क्या? नहीं, तो सारी चीजें अपने अपने वक्त पे ही अच्छी लगती हैं।
1: ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। हमने एंजॉय किया मिस्टर ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर ये नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को, और अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, उनको सुनना है गाना भुला न सकोगे मुझे भूल कर तुम। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सैड सैड सैड सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

थे भूलकर, तो हमने एंजॉय किया है नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर ये वाला नंगा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की, निशा की और राकेश वर्मा की। राकेश वर्मा को दुकरनाथ से, निशा को पटेल नगर गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नंगा। स्टे ट्यून्ड है अभी। मुझे ये पूछना था कि जो लोग शाम दाम दंड भेद सब अपना के, सारे हथकंडे अपना के अपनी जिंदगी नर्क कर लेते हैं, वो कहाँ जाते हैं? स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हमने एंजॉय किया ये नगमे और बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से। उनको सुनना है गाना अभी ना जाओ छोड़कर। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा और इसी के साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों बस इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। जाते जाते मेरे एक लिसनर ने लिखा है कि जब पलट के हर पत्थर का जवाब आता है, जब पलट के हर पत्थर का जवाब आता है, हर गुनाह लेकर पूरा हिसाब आता है, बेखबर हर एक जालिम को बता दो ये जाकर, बेखबर हर एक जालिम को बता दो ये जाकर कि जुल्म हद से गुजरे तो इंकलाब आता है। इंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश, लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा शुक्रिया आप सभी का आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए, लव यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट फॉर यू आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। मिलते हैं कल, इंजॉय करते हैं अनिल शास्त्री जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: जाओ छोड़ कर
0: के दिल अभी, लव यू ऑल।

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

कुछ ऐसी बातें जो हमको सुकून दें, कुछ ऐसे नगमे जो हमारे दिलों को हल्का सा गुदगुदाए। और इस सब के लिए आपके लिए है बहारे गजल। जी हाँ, हम बात करते हैं नींव के ईंटों की, हम बात करते हैं उन कलमकार की, उन दानिश्वरों की जिन्होंने नगमे लिखी, जिन्होंने गजलें लिखी, जिन्होंने नज्म लिखी, और वो बाकमाल शायर, कवि या लेखक हमको नजर नहीं आते। हम फिल्म देखते हैं, गीत अच्छे लगते हैं, गायक कलाकार हमको पता होता है, लेकिन शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वास्तव में एक कवि पहुंचता है। कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो शायर की जिंदगी देखने का नजरिया कैसा होता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा है। हम अपनी नजरों से जो देखते हैं उसी को सच मानते हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ा उसको मान लिया जाता है, सच नहीं माना जाता है। सुनिए सुधा देखी है गजल, सुनने में आता है कि अमृत होता है, लेकिन जो हमने देखा है वो जहर है। अमृत को किसने देखा नहीं, उसको माना गया कि हाँ अमृत नाम की कोई चीज होती होगी, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं हम में से कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोगों ने कभी अमृत नहीं देखा। और जहर, अगर गुड नाइट की एक लिक्विड भी पी ली जाए तो अपने आप में जहर का काम कर जाएगी। जहर जख्म तो हमने इन आंखों से देखे हैं, लोगों से सुनते हैं मरहम होता है। तो ऐसे कलमकार, ऐसे दानिश्वर जो जिंदगी के तमाम सारे और छूते मौजूआत को छूते हैं अपने नगमों में, और वो नगमे जब ढलते हैं उनमें संगीत मिलता है, उनमें कायनाती गला या मखमली गले की आवाज़ शामिल होती है, तो फिर नगमे बनते हैं, गजलें बनती हैं, गीत बनते हैं। दिल के सब राज दे रहा हूं तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। जी हाँ, हम आपको आवाज दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और इसके बाद जब लौटेंगे तो आपसे बताएंगे कि आज किस कलमकार पर हम करने वाले हैं गुफ्तगू। जी हाँ, हमारे और आपके बीचों कौन सा कलमकार है जो आज अपनी नज्मों में, अपनी गजलों में, कथा में, शेरों में आने वाला है। जी हाँ, तो एक प्यारी सी गजल के बाद आपको रूबरू कराते हैं अपने उस बाकमाल शायर से। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

सुने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो

जी, कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। मन हर उदास की आवाज में ये प्यारी सी गजल सुनी आपने। तो पहला लफ्ज जो है वो मनहर का माँ है, और आज जिस शायर को हम आपके बीच लेकर आए हैं उनका भी पहला अक्षर माँ है। आज हम बात करेंगे भोपाल के रहने वाले बहुत ही काबिल शख्स, नहीं बल्कि अपने आप में एक शख्सियत, मंजर भोपाली। बहुत ही आसान लफ्जों में अपनी बात कह देने का हुनर मंजर भोपाली साहब के पास है। वो सीख भी देते हैं, जिंदगी का तजुर्बा भी है, और जब गाते हैं तो उनकी मखमली आवाज मुशायरों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, जिनको जहां कहीं भी हिंदी या उर्दू जुबान समझी या बोली जाती है वहां मंजर भोपाली को सुना जाता है। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने काफी अरसे मुशायरे को दिए, शायरी को दिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो। सपने, आज हमारे विद्यालय में फ्रेशर्स पार्टी थी तो मैम ने, हमारे विद्यालय की प्राचार्य मैम ने बताया कि किसी ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो हमें सोने नहीं देते, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। जो हमने नींद में देखा वो सपना नहीं है, सपना वो है जो आए तो नींद भाग जाए। और ये बात कही थी भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ने। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो, दुख अंधेरे का अगर मिटता नहीं है जहन से, दुख अंधेरे का अगर मिटता नहीं है जहन से, रात के दामन को अपने खून से उजला करो, खुद को पोशीदा, पोशीदा मतलब छुपा हुआ, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, फूल कहते हैं तुम्हें सब लोग तो महका करो, जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं। जिसको जिंदगी अच्छे से जीनी होती है उसको मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। हम सभी ने पढ़ी है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। तो जो कांटों के रास्ते पर चलता है फूल पाने का अधिकारी भी वही होता है। तो जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं, हादसों का खौफ लेके घर से मत निकला करो, रहनुमा, रहनुमा मतलब रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा ये दर्श, दर्श का मतलब होता है ज्ञान, रहनुमा ये दर्श हमको दे रहे हैं आजकल, जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो कह रहे हैं कि रहनुमा ये दर्श हमको दे रहे हैं आजकल, बेच दो सच्चाइयां, ईमान का सौदा करो, तैश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर। तनकीद कहते हैं क्रिटिसिज्म को, जैसे आपने किसी व्यक्ति की थोड़ी सी असलियत उसे बता दी तो उसको लगा कि ये हमारी आलोचना है। तैश में तो इंसान जो अंग्रेजी में एक कहावत है कि एम्पटी वेजल्स मेक्स मच नॉइज, खाली बर्तन शोर बहुत करता है। एक गिलास है उसमें आप खाली गिलास को चम्मच से बजाइए तो वो आवाज़ दूर तक जाएगी, और अगर उसी गिलास में आप पानी भर दीजिए और इसके बाद चम्मच मारिए तो आवाज़ कम हो जाएगी। तो जहाँ गहराई होती है वहाँ शोर कम होता है।
तो तैश में, मतलब अगर हमने किसी के बारे में कुछ कहा और वो क्रोध में आ गया, तो तैश में आने लगे, तुम तो मेरी तनकीद पर इस कदर हसास हो। हसास का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, कुशाग्र बुद्धि वाला। इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो। अगर आपको यकीन नहीं होता मेरी बात पर तो आईना देखिए, और कहा जाता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। यह है मंजर भोपाली का रंग। हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं, शुभ संध्या, चरण स्पर्श, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। सौरभ जी दिल्ली से हैं, गुड नाइट। अरे साहब अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दिल निकाला है। नहीं साहब, गुड नाइट कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम में हमें है, और ये हमने आपसे मांगा है और मांगने पर आपने दिया है। धर्मेंद्र मोहन जी है भाई, गुड मनु सर जी, गुड इवनिंग। मन हमेशा अकेला रहता है, अकेला ही सोचता है, अकेला ही उड़ता है, अकेला ही बैठता है, अकेला ही ज्ञान विज्ञान होता है दिल से वास्तव में। और अकेलेपन का अपना एक अलग एहसास है साहब, आप माने या ना माने, मतलब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है ये अकेलापन, और हम चुपचाप अकेले बैठे हुए और फिलहाल अपने आप से बात कर रहे हैं, वो सॉलिट्यूड। दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। लोनलीनेस थोड़ी सी निगेटिव चीज़ है, लेकिन सॉलिट्यूड अच्छी चीज़ है, हमको, हम अपने आप को जान पाते हैं जी। और जो होस्ट कर रहे हैं उनका भी नाम एम से देखिए, क्या बात है भाई। हाँ, मनहर उदास, मंजर भोपाली, और जी बिल्कुल, क्या मतलब, क्या अच्छी, क्या बहुत ही शानदार विश्लेषण किया। और एक ही दिल है, कितनी बार दिल जीतोगे भाई, जान के किया, खतरनाक शायरी है, लव यू भाई। कौन है भाई? सौरभ जी हैं, ओहो क्या बात है। विशाल वेदा जी जी हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग सर जी। जी हाँ सर जी, यही तो सुनने के लिए सब लोग परेशान रहते हैं, इसलिए आपको कहते हैं गुड नाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, मतलब पता है कि अगर हम बोलेंगे गुड नाइट तो हम बोलेंगे अभी आए। चलिए कभी आप भी बोलिए और आने और बोलिए। चलिए फिलहाल आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थी 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

उमराव जान की ये प्यारी सी गजल, और इसके बाद फिर भाई क्या बात है गुलाम अली साहब की ये गजल, मतलब जितनी बार भी सुनिए मन करता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और हम मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में हम सभी मुसाफिर की ही तरह हैं। एक रफ़ी साहब का बहुत ही प्यारा गीत है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। इंसान आज है कल नहीं होगा, लेकिन यादें हमेशा रहेंगी। मंजर भोपाली साहब ने लिखा कि वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, नहीं हमारी किस्मत में अपने घर पर रहना नहीं लिखा है। जहां भी जाएंगे हम साथ हिजरतें होंगी, मतलब हिजरत मतलब दूरी हो जाना। कुछ नसीब में होता है कि मतलब अपनी मिट्टी से लगाव बहुत होता है, लेकिन वहां नहीं रह पाता व्यक्ति। ये कुछ ऊपर वाले का है, मतलब नियति कहें, तकदीर कहें, भाग्य कहें, या जो कुछ भी आप इसे नाम दे पाए। वतन नसीब कहाँ अपनी किस्मतें होंगी, जहां भी जाएंगे हम साथ हिजरतें होंगी, तभी तो साहिबे दीवार उदर बनेंगे हम, मतलब कभी ऐसा भी होगा कि हमारी भी जिंदगी में कोई अच्छा दिन आएगा, किसी के लिए हम भी साहब होंगे, कभी तो सर पे हमारी नई छतें होंगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायर भी वही कहते हैं, ये इश्क तेरे मेरे रायगा न जाएंगे। रायगा का अर्थ होता है बेकार, और वास्तव में आंसू कभी बेकार नहीं जाते। रहीमदास ने लिखा कि रहीमन आह गरीब कह कबहू न निष्फल जाए, मुई खाल की श्वास सो सार भसम हो जाए। जो बकरी होती है, जो विश्वकर्मा होते हैं, जो लोहार होते हैं, वो धौकनी चलाते हैं, वो बकरी के खाल की बनी होती है, और लोहा पिघल जाता है। मुई खाल की श्वास सो, मतलब सोचिए अगर मरे हुए जानवर की बद्दुआ में इतना दम है, तो निर्दोष और निरपराध व्यक्ति अगर रो दे, तो मैंने कभी लिखा था कि गिरे निर्दोष के आंसू स्वयं भगवान रोता है, मगर इंसान इस युग का सदा कांटे ही बोता है। तो कभी किसी के आंसुओं की वजह हम आप न बने, तो जिंदगी में शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये इश्क तेरे मेरे रायगा न जाएंगे, बेकार नहीं जाएंगे, उन्हीं चरागों से रोशन मोहब्बतें होंगी। तेरी अदा में है इनकार भी इजाजत भी, आपकी अदा है उसमें इनकार भी है, और कहीं कहीं नहीं उस नाम में भी हाँ है। तेरी अदा में है इनकार भी इजाजत भी, जो हम मिलेंगे तो दूरी न कुर्बतें होंगी। कुर्बतें मतलब नजदीकियां। अमल दुरुस्त करे अपने रहनुमाए किराम, कहूंगा साफ तो सबको शिकायतें होंगी, हम उनके सामने सच बोलने के मुजरिम हैं, हम उनके सामने सच बोलने के मुजरिम हैं, हम ही पे वक्त की सारी इनायतें होंगी। और वहां पे काफिले भटकेंगे, तय है ये मंजर, जहां उसूल से खाली कयादतें होंगी। मतलब अगर नेतृत्व करने वाला आपका जो लीडर है वो अगर उसूल का पक्का नहीं है, तो जंग शायद आप हार सकते हैं। अभी तो कैद है जज्बों की आंधिया दिल में। अब देखिए एक कहावत कही जाती है कि शरीफ इंसान जब
बुरे कर्मों पर उतरता है तो बहुत बुरा बनता है। अभी तो कैद है जज्बों की आंधिया दिल में, हमारा सब्र जो तोड़ा कयामतें होंगी। आप देखिए, कोई बहुत विनम्र व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो, विनम्र हो, और अगर वो क्रोध में आ जाए तो उसका क्रोध बड़ा खराब होता है। सीधे इंसान का गुस्सा खतरनाक होता है। जो लोग क्रोध में रहते हैं, पोलाइट नहीं रहते हैं, उनका गुस्सा क्षणिक होता है, आया और गया। कभी महसूस कीजिएगा अपने आसपास ऐसे लोगों को। और जो लोग कभी कभी गुस्सा हुए वैसे विनम्र रहे, तो मतलब उनके सब्र का बांध अगर टूटा तो फिर बहुत कायदे से टूटता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। विनम्र इंसान को कभी विवश मत कीजिएगा कि उसको क्रोध आए, क्योंकि क्रोध पाप का मूल होता है। मतलब वो व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और सामने वाले का भी हो जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिस इंसान के खराब दिन आने वाले होते हैं, उसकी बुद्धि जरा काम करनी बंद कर देती है, तो तैश में आना भी मंजर भोपाली साहब ने लिखा। ये थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश अगर हम करें तो शायद जिंदगी और खूबसूरत हो सकती है। आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, और ऐसे मोड़ पर जिंदगी क्या मशवरा दे, एक तरफ उसका घर है और एक तरफ मैं कदा है, दोनों में से किधर जाया जाए। वास्तव में सवाल कठिन है, लेकिन घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी सांझ की दुल्हन। रोज की तरह सुबह अंतरा जल्दी उठ गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। वो सोच रही थी अब तो मौसी भी घर में है, उनका पहला दिन है, नाश्ता भी ढंग का होना चाहिए। खटर पटर सुनकर मौसी उठकर किचन में आ गई और बोली, क्या कर रही हो बहू? आपके लिए चाय बना रही हूँ, आप नाश्ते में क्या लेंगी? अंतरा ने हंस कर पूछा। जो सब खाते हैं वही खा लूंगी, मौसी ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब मौसी, आपकी तरह तो हर आदमी समझदार नहीं होता ना। अंतरा ने थोड़ा मुंह बनाकर मौसी को चाय पकड़ाते हुए कहा, अब हमारे पिताजी को ही ले लो, बड़े तुनक मिजाज हैं, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ, ये भी नहीं देखते कि मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है, कभी कभी तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अंतरा बोली, अब बुजुर्ग हैं, मौसी ने समझाते हुए कहा, पत्नी के जाने के बाद उनका तुम लोग ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? अंतरा को हंसी आ गई, मौसी के सारे नखरे रानी ने पहले ही बता दिए थे। आपका कहना सच है मौसी, हमारी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते। अंतरा बोली, बस कभी कभी सहना मुश्किल हो जाता है, तनाव भरा जीवन है ना। सो तो है, मैं क्या नहीं जानती, मौसी ने कहा, अब मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बता देना, दिन भर बैठी बैठी करूंगी भी क्या। जरूर बता दूंगी मौसी, अभी तो जाकर आप आराम करिए, अंतरा ने कहा। मौसी को सुनकर अच्छा लगा। नाश्ते के समय मौसी की मौजूदगी का ख्याल करके अंतरा के ससुर निहाल चंद ने खुद पर काबू रखा और जो कुछ सामने रखा था चुपचाप खा लिया। अंतरा तो डर रही थी कि पिताजी कुछ कहकर माहौल ना खराब कर दें, मौसी क्या सोचेंगी। ऑफिस जाते समय अंतरा ने रोज की तरह कहा, पिताजी आपका और मौसी का खाना बनाकर हॉटकेस में रख दिया है, आज मैंने

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना अंतरा के घर मौसी जी रहने आई थी। वैसे तो अंतरा उनके स्वभाव से वाकिफ थी, लेकिन आज पहला ही दिन था और वो बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रही थी। उन्हीं की वजह से अंतरा के ससुर भी आज शांत थे। अब आगे, जब 11 बजे तो निहाल चंद को चाय की तलब लगी। ये उनकी रोज की आदत थी। थोड़ा झिझके पर कुछ सोचकर उठे और चाय बनाने लगे। किचन में आवाज सुनकर मौसी आ गईं। अरे हटिए, मैं चाय बना देती हूँ, मौसी ने अधिकार से कहा। नहीं नहीं मौसी, निहाल चंद के मुंह से निकला, मैं तो रोज ही बनाता हूँ और अच्छी भी। देखिए भाई साहब, मौसी ने मुंह सिकोड़ कर कहा, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ। ये तो सच है, 100% सच है, निहाल चंद ने चढ़ कर कहा, लेकिन मैं भी आपका भाई साहब नहीं हूँ। मौसी को हंसी आ गई। चलिए, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं बच्चों की मौसी हूँ तो आप इस रिश्ते से मेरे जीजा हो गए और आप मेरी साली, निहाल चंद खुल कर हंस पड़े। लीजिए, इसी बात पर मेरे हाथ की स्वादिष्ट चाय हाजिर है, दार्जिलिंग की शुद्ध पत्ती मंगवाता हूँ। दार्जिलिंग तो बहुत दूर है, मैं तो अब

की तुलसी की चाय बनाती हूँ, खुशबूदार और गुण संपन्न। मौसी ने चाय का घूंट लेकर कहा, क्या कहूँ, इस घर में ना तो इस समय बहू चाय बनाती है और ना ही बनाने देती है, मन मार कर रह जाती हूँ। मौसी बोली, अब जब तक आप यहाँ पर हमारी मेहमान हैं, रोज मैं आपको चाय पिलाऊंगा, मन मार कर नहीं, मन भर कर पीजिए। हंसते हुए निहालचंद उठे और जूठे प्याले उठाने लगे। अरे अरे, मौसी ने प्याला पकड़ते हुए कहा, अब कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ दीजिए। निहालचंद मुस्कुरा कर रह गए। दरअसल वे जूठे बर्तन रोजाना ऐसे ही छोड़ देते थे, जब अंतरा आती थी तो उठाती थी, और उससे उनकी इस आदत से बेहद चिढ़ होती थी। दो दिनों बाद मौसी ने कहा, बहू, तुम्हें सुबह बहुत काम रहते हैं, तुम अपना नाश्ता पानी कर लिया करो, मैं खाली बैठी रहती हूँ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी, ऐसे मेहमानों की तरह कब तक बैठी रहूंगी। नहीं मौसी, अंतरा ने विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप थोड़े दिनों के लिए तो आई हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे काम करने की आदत है। बहू, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, मौसी ने लगभग डांटते हुए कहा। अंतरा को मालूम था कि अपने घर में अगर उनसे कोई काम करने को कह दे तो मौसी अपनी बहू रानी की मुसीबत कर देती थी, यहाँ तक कि माँ भी दुखी हो जाती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना, अंतरा के घर मौसी रहने आई थीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपना काम करके ऑफिस चली जाया करे, बाकी काम वो कर लेंगी। उनमें और पिताजी में भी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, पर अंतरा को उनके स्वभाव के बारे में उनकी बहू से पता चल चुका था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उनसे कुछ भी काम कराए। अब आगे। ओह नहीं ना मौसी, आपको कुछ नहीं करना है, रानी मुझसे झगड़ा करेगी, अंतरा ने हट किया। कौन होती है रानी, मौसी ने गुस्से से कहा। मैं जानती हूँ उसने मेरी बड़ी बुराई की होगी, दरअसल वो मेरी लाचारी का फायदा उठाती है। कभी कभी तो सोचती हूँ मेरे सोनू मोनू की बहुएं ही क्या बुरी थीं। अरे क्या आपकी अपनी बहुएं आपकी सेवा नहीं करती, अंतरा ने ऊपरी सहानुभूति जताते हुए कहा। सच, कितने अरमानों से लोग बहू घर लाते हैं। मौसी की अपनी बहुओं से बिल्कुल नहीं बनती थी, ये सब जानते थे, लेकिन दूसरे के मुंह से उनकी बुराई सुनना मौसी को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं बहू, आजकल की हवा ही खराब है, वो इतनी बुरी भी नहीं है। तुम भी तो काम करती हो, इस बुढ़ापे में ससुर की पूरी सेवा करती हो, देखकर अच्छा लगता है, अगले जन्म में अच्छा ही फल मिलेगा। मौसी, अगला जन्म किसने देखा है, मैं तो पूरी स्वार्थी हूँ, सारे फल इसी जन्म में चाहती हूँ, अंतरा ने मुस्कुरा कर कहा। मौसी को भी हंसी आ गई, तो कितनी अच्छी बातें करती है। खैर असल मुद्दा ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तू घर की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, तेरे दफ्तर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतरा को डर लगा कि कहीं उसके ज्यादा मना करने से मौसी बुरा ना मान जाए, जल्दी से उनकी बात मान ली, संतोष की गहरी और ठंडी सांस ली। रसोई का काम हाथ में आते ही मौसी के ढीले शरीर में चुस्ती आ गई, अब वो बेरोक टोक मन पसंद खाना बना सकती थी और निहाल चंद के मुंह से अपनी तारीफ भी सुन सकती थी। वो कभी कभी निहाल चंद की पसंद के नए नए व्यंजन बनाती, निहाल चंद भी बस उन पर निहाल ही हो गए थे, उनका चिड़चिड़ापन छू मंतर हो गया था, खुश मिजाजी लौट आई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका साथ देने वाला कोई मिल गया था जो उनकी बातें पूरी सहानुभूति से सुनता भी था। अक्सर वो दोनों अपने सुख दुख की बातें कर लेते थे, उन्हें बहुत शांति मिलती थी, नजदीकी बढ़ने से एक दूसरे को जीजा साली कहकर थोड़ी छेड़खानी भी कर लेते थे। जीवन सुखमय हो रहा था। दोपहर का समय काटने के लिए निहाल चंद ने टाड़ पर से कैरम बोर्ड उतार लिया था, ताश भी ले आए थे, खेलना तो खास आता नहीं था, एक दूसरे के अनाड़ीपन पर हंस भी लेते थे। देखते देखते एक महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मौसी के जाने का समय आ गया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना, मौसी अंतरा के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। अंतरा के ऑफिस जाने के बाद के घर के कामों का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अंतरा के ससुर निहाल चंद और मौसी को एक दूसरे का साथ मिल गया था। दोनों का बुढ़ापे का वक्त अच्छा गुजरने लगा था। अब मौसी के जाने का समय आ गया। अब आगे, दरअसल मौसी किसी की भी सगी मौसी नहीं थी, बस सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी। अंतरा और मनु के घर रहने आने के पीछे एक लंबी कहानी थी। ये एक निष्कपट प्रयोग था। सपन अंतरा के पति मनु का सहयोगी, सहकर्मी और मित्र सब कुछ था। एक दिन सपन को बहुत दुखी देखकर मनु ने पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। यार, मेरी दूर के रिश्ते की एक मौसी है, मौसा जी की मृत्यु के बाद उसे कुछ ऐसा लगने लगा कि उसके दोनों बेटे और बहुएं उसकी अपेक्षा करते हैं। एक दिन रो धो कर माँ के पास अपनी कहानी सुनाने आ गई। तरस खाकर माँ ने उसे कुछ समय अपने पास आने और रहने का निमंत्रण दे दिया। वो तो मानो आने को तैयार बैठी थी, सो कुछ दिनों के बाद ही अपनी गठरी लेकर आ गई। सपन ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तो इसमें बुरा क्या हुआ, मनु ने पूछा। अरे, अब वो जाने का नाम ही नहीं लेती। माँ ने कहा भी कि जाओ बेटों के पास, तो कहती है मुझे जहर लाकर दे दो, किसी घर में नौकरानी की तरह रह लूंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। सपन ने दुखी होकर कहा, यार तू कुछ नहीं समझा, इतनी सी बात होती तो दुखड़ा क्यों रोता। सपन ने कहा, दरअसल मौसी बड़े टेढ़े स्वभाव की है, माँ से तो कुछ नहीं कहती, रानी से झगड़ती रहती है कि ये ऐसे क्यों कर दिया, तुझे सलीका नहीं आता, तुझे ढंग का खाना बनाने नहीं आता और ना जाने क्या क्या। अब हम समझ गए हैं कि क्यों मौसी की अपनी बहुओं से नहीं बनती थी, अब रानी झेल रही है। है तो ये विकट समस्या, मनु ने स्वीकारा। पर यार, हम भी कम नहीं झेल रहे हैं, मेरी समस्या कुछ हटकर है लेकिन है कुछ तेरी ही जैसी, तो भी अपनी कहानी कह डाल। सपन ने मुस्कुरा कर कहा, वो कहते हैं ना कि बांटने से दुख कम होता है और सुख बढ़ता है। मनु के पिता निहाल चंद अच्छे इंसान थे, अंतरा से कभी कोई शिकायत नहीं थी, उसके नौकरी करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेलापन हलने लगा था, उदास भी रहते थे। धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगी, जो कुछ घर के कामों में हाथ बटाते थे अब हाथ खींच लिया। खाली दिमाग तो होता ही है शैतान का घर। अंतरा के काम पर जाने से उन्हें बुरा लगने लगा, सुना सुना कर कहते थे घर में अकेले रहते हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता, अगर सुबह का नाश्ता जल्दी बना दिया तो शिकायत, नहीं बना पाई तो वो भी मुसीबत, चाय बनाकर सामने रख दी तो अखबार पढ़ने लगे और फिर चाय ठंडी हो गई तो डांट लगा दी। एक दिन तो हद कर दी पिताजी ने, अंतरा ने अंडा टोस्ट बनाकर और गरम दूध सामने रखते हुए कहा था, पिताजी नाश्ता रखा है, मैं दफ्तर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। काफी देर बाद ऊंची आवाज में बोले, बहू ये ठंडा नाश्ता क्या मेरे लिए था? पर पिताजी, मैंने तो गरम बनाकर रखा था और आपको बोलकर भी आई थी, अंतरा ने शालीनता से कहा था। तभी मनु सामने आकर बोला, मैंने खुद सुना था अंतरा ने आपको बताकर गरम नाश्ता रखा था, अब आप देर तक नहीं खाएंगे तो इसमें उसका क्या कसूर है? तू चुप कर,
क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अंतरा से ना रहा गया। वो बोली, आप क्यों झूठ बोलेंगे, हम ही झूठ कह रहे हैं। कुछ कहा तुमने? निहाल चंद ने अखबार नीचे फेंकते हुए कहा, जी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अंतरा दूध का गिलास उठाती हुई बोली, अभी टोस्ट भी और बना देती हूं। रहने दो बहू, तुम्हें दफ्तर के लिए देर हो जाएगी। देर होगी तो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा तो तुम रोते रोते मेरी बुराई करोगी। निहाल चंद ने कटुता से कहा, क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मनु ने अंतरा का हाथ खींचते हुए कहा, हम जा रहे हैं पिताजी, देर हो रही है, जब काम वाली आए तो उसी से गर्म करवा लेना, वैसे आप भी इतना तो कर ही सकते हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना, अंतरा और मनु अपने पिताजी से काफी परेशान थे। वो बुजुर्ग और अकेले थे और इसीलिए चिड़चिड़ करते रहते थे और बेवजह उन दोनों को गुस्सा करते रहते थे। उधर सपन और रानी भी अपनी मौसी से परेशान थे, जो अपना घर बार छोड़कर इन्हीं के घर आकर टिक गई थी और हर बात पे रानी को टोकती थी। अब आगे दुखी होकर मनु अंतरा से कह रहा था, क्या करूं, समझ नहीं आता, अचानक पिताजी को क्या हो जाता है, सारी झुंझलाहट तुम्हारे ऊपर ही उतारते हैं। चिंता मत करो, अंतरा ने मुस्कुरा कर कहा, झेलने के मामले में मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूं, ऐसा क्यों नहीं करती, मनु ने सुझाव दिया, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर पिताजी की सेवा करो, शायद खुश हो जाएं। ना बाबा, अंतरा ने सिहर कर कहा, ये तो मेरे लिए बड़ी सजा होगी। मनु और सपन बहुत देर तक अपनी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करते रहे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी दिखाते रहे। बहुत दूर तक कोई हल नहीं सूझ रहा था। तो पिताजी की समस्या है अकेलापन, सपन ने बहुत सोचकर कहा, अगर कोई साथी उन्हें मिल जाए तो शायद बात बन जाए। पर साथी कहां से लाऊं, क्या सौतेली मां ले आऊं? अरे नहीं, इतनी दूर सोचने की जरूरत नहीं है, सपन ने कुटल मुस्कान से कहा, मुझे एक एक्सपेरिमेंट सूझ रहा है, एक तीर से दो निशाने, बस तीर निशाने पर बैठना चाहिए। अब कुछ बग भी, मनु ने झुंझला कर कहा, ध्यान से सुन, तू हमारी मौसी को एक महीने के लिए अपने घर में रख ले, मौसी की आबो हवा बदल जाएगी और तेरे पिताजी को संग साथ मिल जाएगा। सपन ने कहा, हाँ अगर तू भी परेशान हो जाए तो मेरा सिक्का पहले भी वापस कर सकता है। मनु बहुत देर तक सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बात में दम तो है पर अंतरा से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम चारों मिलकर एक मीटिंग करते हैं। चारों ने मिलकर ये प्रयोग करने का निर्णय लिया। मौसी को बस इतना बताना था कि सपन रानी और माँ को लेकर एक महीने की छुट्टी के लिए बाहर जा रहा है, तब तक मौसी को अपने एक मित्र के यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया है। ये सुनकर पहले तो मौसी बहुत उखड़ी, पर उनके पास और कोई चारा नहीं था, अकेले घर में रह नहीं सकती थी और बेटों के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। योजना के अनुसार एक महीना पूरा हो गया था। मनु और सपन सोच सोच कर घबरा रहे थे कि मौसी और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया होगी। रानी डर रही थी कि कहीं मौसी पुराने डर्रे पर ना आ जाए, अब की तो वो उनका पूरा विरोध करेगी। अंतरा सोच रही थी कि मौसी के जाने के बाद अगर पिताजी फिर से नखरे दिखाने लगे तो वो क्या करेगी। चलो मौसी, सपन ने कहा, हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, सोनू मोनू भी आपको याद कर रहे थे, वो आपको ले जाना चाहते हैं। सच? मौसी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, नहीं तू झूठ कह रहा है, मैं बहुओं को जानती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सपन ने हंसकर कहा, वो तो शिकायत कर रहे थे कि मैंने आपको अगवा कर लिया है। नियाल चंद हंस पड़े, दरअसल तुम्हारी मौसी को तो मैं अगवा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी हैं, बड़ा मन लग गया इनसे। ये सुनते ही सब हंस पड़े, निहाल चंद और मौसी झेप गए। क्या बात है पिताजी, चलाएं कुछ चक्कर, मनु ने छेड़ा। तुम लोग बड़े शरारती हो, मौसी के गाल सुर्ख हो गए। मौसी, आप चली जाएंगी तो पिताजी आपको बहुत याद करेंगे, अंतरा बोली, आपके बनाए कढ़ी, बैगन का भरता, लौकी के कोफ्ते, मूंग की दाल का हलवा और सभी चीजों की इतनी तारीफ करते हैं कि बस पूछो ही मत, काश मैं भी आपसे सीख पाती।
अपनी तारीफ सुनकर मौसी का चेहरा खिल गया। अरे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, वैसे तुम नौकरी पर जाती हो, इतनी फुर्सत कहाँ। रानी ने मौसी के कमरे में झांकते हुए कहा, अरे मौसी आपका सामान सब वैसा का वैसा ही पड़ा है, क्या अभी चलने का इरादा नहीं है। चलना तो है पर सोच रही हूँ चलूं या नहीं, मौसी ने हिचकते हुए कहा। क्यों? रानी और सपन चौंक पड़े। बात यह है बहू कि अंतरा के पैर भारी हैं, अब उसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई घर में होना चाहिए ना, मौसी ने गंभीरता से कहा। अरे और हमें पता भी नहीं, सब एक साथ बोल पड़े। रानी ने अंतरा का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी आत्मीयता से कहा, तुम तो बड़ी छुपी रस्तम निकली, मुबारक हो, और मनु भैया आपको भी। तो मनु मुस्कुरा कर रह गया। रात को जब मनु और अंतरा अपने कमरे में सो रहे थे तो बाहर किसी बात पर मौसी और निहाल चंद खिलखिला कर हंस रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। शायद ये एक नए जीवन की शुरुआत थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सांझ की दुल्हन। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोहर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश,
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए
6: स्पेशल कस्टमाइज

0: आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
0: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहले।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।